नमस्कार। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज रविवार है। राष्ट्रीय शक संवत

1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 जुलाई 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:56 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: हिंदी में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क

0: निशन ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली ओएमआर ही जमा करें। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

नदियाँ, पर्वत, खेत और वन सब इसकी पहचान है। अनेकता में एकता जिसकी, यही भारत की शान है। आओ मिलकर प्रण ये लें, देश का मान बढ़ाएंगे, मेहनत, ईमान और प्रेम से भारत को आगे ले जाएंगे।

0: भक्ति चमत्कार मांगने का मार्ग नहीं, स्वयं को बदलने का अवसर है। ईश्वर परिस्थितियां हमेशा नहीं बदलते, लेकिन उनका स्मरण करने वाला मनुष्य परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति अवश्य पा लेता है।
1: मंगलम भगवन्।

जिस हृदय में क्षमा बसती है, जहाँ दूसरों के लिए शुभकामनाएं रहती हैं और जहाँ सेवा बिना किसी स्वार्थ के होती है, वहाँ भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं अपना स्थान बना लेते हैं।

आज एक क्षण रुककर अपने मन से पूछिए, क्या मैं केवल अपनी इच्छाएं लेकर प्रभु के पास जाता हूं या उनका आभार मानने भी जाता हूं? जिस दिन प्रार्थना में मांग कम और कृतज्ञता अधिक हो जाएगी, उसी दिन जीवन में शांति का नया सूर्योदय होगा।

जीवन में जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है तब धन्यवाद कहना आसान होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी हृदय से मुझे आप पर भरोसा है प्रभु निकल जाए, यहीं से सच्ची भक्ति आरंभ होती है।

0: भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन। असली जीत आलेख आदित्य सोनी का है, वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का।
1: जिंदगी में हर इंसान किसी ना किसी लड़ाई में उलझा हुआ है। कोई हालात से लड़ रहा है, कोई लोगों की बातों से, कोई गरीबी से, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के संघर्ष में। लेकिन एक लड़ाई ऐसी भी होती है जो सबसे कठिन होती है, और वो है खुद से लड़ाई। जी हाँ, जो इंसान दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद की कमजोरियों को हराने में विश्वास रखता है,

0: वही असली विजेता बनता है, क्योंकि दूसरों को हराना आसान है, लेकिन खुद के डर को हराना, अपने आलस को हराना, अपनी नकारात्मक सोच को हराना, अपने टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना, ये बहुत मुश्किल होता है। दुनिया आपको हर दिन परखेगी, लोग आपको रोकेंगे, आपकी गलतियां गिनाएंगे, आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, असली सवाल यह है कि आप खुद को कितना मजबूत मानते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं, हमारी अपनी सोच होती है। वो सोच जो कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम हार जाओगे, तुम्हारे पास कुछ खास नहीं है। और जिस दिन इंसान इन आवाजों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उसी दिन उसकी असली जीत शुरू हो जाती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है, हर सफल इंसान ने सबसे पहले खुद को बदला है। एक खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो वो सिर्फ सामने वाले खिलाड़ी से नहीं लड़ता, वो अपने डर से लड़ता है, अपनी थकान से लड़ता है, अपने हार मान लेने वाले विचारों से लड़ता है। एक विद्यार्थी जब रात रात भर पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ता, वो अपने आलस से लड़ रहा होता है, अपनी कमजोरियों से लड़ रहा होता है। एक गरीब इंसान जब मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करता है तो वो सिर्फ परिस्थितियों से नहीं, अपने अंदर बैठे उस डर से लड़ता है जो बार बार कहता है तू नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, जो इंसान अपने अंदर की इस आवाज को हरा देता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। याद रखिए, पहाड़ सामने नहीं होता, पहाड़ हमारे अंदर होता है। कभी डर के रूप में, कभी असफलता के रूप में, कभी आत्मविश्वास की कमी के रूप में। और जब इंसान खुद के अंदर बने उस पहाड़ को पार कर लेता है, तब बाहरी मुश्किलें छोटी लगने लगती है। किसी और से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए, बस कल वाले खुद से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर कल आप डरते थे तो आज थोड़ा साहस दिखाइए, अगर कल आप हार मान लेते थे तो आज एक कदम और आगे बढ़िए, अगर कल आप टूट जाते थे तो आज खुद को संभालना सीखिए, क्योंकि असली जीत ट्रॉफी में नहीं होती, असली जीत खुद को बेहतर बनाने में होती है। और सच है कि जिस दिन इंसान खुद पर विजय पा लेता है, उस दिन दुनिया की हर जीत छोटी लगने लगती है। आज खुद से एक वादा कीजिए कि आप दूसरों को गलत साबित करने के लिए नहीं, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करेंगे। आप हालात से भागेंगे नहीं, उनका सामना करेंगे। आप डरेंगे नहीं, खुद पर विश्वास करेंगे, और हर दिन खुद से कहेंगे कि मैं गिर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है, और मुझे ये लड़ाई जीतनी है। मुस्कुराते रहिए, संघर्ष करते रहिए, और याद रखिए, जो दूसरों से नहीं खुद से लड़ता है वही असली जीत हासिल करता है।
1: असली जीत, ये चिंतन अभी आपने सुना, आलेख आदित्य सोनी का था और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का। चिंतन का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। और आइए अब सुनते हैं भारती उपाध्याय के स्वर में खेती की बातें। आज वो हमें बताने जा रही हैं बरसात में किसान भाई क्या रखें सावधानियां।
2: किसान भाइयों के राम राम। किसान भाइयों, खेती की बात माए आज अपन बात करांगा कि इना बरसात का मौसम माए अपना किसान भाइयों कई किन बातों को ध्यान रखे जिका से उनकी फसल के कोई नुकसान नहीं होवे। तो इना बरसात का मौसम माए किसान भाइयों के खास करीने जल भराव से बचने सारू खेत में उचित जल निकासी को प्रबंध करना चाहिए। साथ ही साथ यो ध्यान रखनो चाहिए कि नमी से होने वाला फफूंद रोग और कीट हों जो ही जावे नहीं, ओ की टेम टेम पे अपना खेत में निगरानी रखनी है। साथ ही जल निकासी सारू अपनो जो है खेत में पानी को जमाव नहीं होने देना है, क्योंकि जल भराव से जो अपना फसल अपन ने लगाई है ओ की जड़ के ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फसल जो है अपनी गली जावेगी। इका सारू जल भराव नहीं होने देना है। खेत का एरे मेरे चारी तरफ पक्की नालियों बनाई दे दा जिका से कहीं हो कि बारिश को जो पानी है वो आसानी से बाहर निकली जावे। जिन साग भाजी इन फसल में जल भराव को अधिक खतरो होवे उनकी बुवाई हमेशा अपन ऊंची मेड़ पे करा जिका से कहीं होएगा कि जल भराव नहीं रहेगा।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

0: श्री रामचरितमानस गान के प्रसंग अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारे आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आज सुबह 7:20 पर लेकर आएंगे योग निरोग कार्यक्रम, विषय होगा मधुमेह और योग। जानकारी देंगे योगाचार्य नितिन राठौर। सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 7:35। कल के सितारे बच्चे हमारे, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। चर्चाओं के दौर में होंगी चर्चाएं मौसम में न बरते लापरवाही और असावधानी, और साथ ही साथ मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी की जन्मतिथि के बारे में भी बातें होंगी। बच्चों के मुख से सुनेंगे हम अनेकों बातें। आज शामिल होंगे हमारे साथ आरव, कुबेर, आदेश, हितार्थ, अदिति और अनिका।

लोक संगीत के अंतर्गत आप आज सुनेंगे अरुण कुमार गोयल को सुबह 9 बजे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 9:10 पर। इस कार्यक्रम को हम

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे नयनिका नंदी की द्वारा गाया गया राग बिलास खान तोड़ी। प्रसारण समय सुबह 9:30 पर। जिले की चिट्ठी लेकर आएंगे सुबह 10 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम सुनेंगे आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से सुबह 10:05 पर MH हॉटलाइन। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा फोन इन कार्यक्रम। फोन करें कि सुने सुबह 11:00।

संग्रहालय से। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और रिले कार्यक्रमों के अंतर्गत ही आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम दोपहर के 1:00।

शाम की सभाओं में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम युववाणी। सुगम संगीत में सुनेंगे आप नरेंद्र चंचल को शाम 6:30 पर। लोक संगीत के अंतर्गत अरुण कुमार गोयल को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा शाम 7:20 पर। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर बातचीत होगी और जानेंगे वृक्षारोपण के बारे में प्रगतिशील कृषक श्री कमलेश पारे से कुछ जानकारियां। वार्ताओं के क्रम में ही एक और वार्ता सुनेंगे आप अधिवक्ता पूर्वी पगारे से। विषय होगा किसानों के उपभोक्ता अधिकार और नकली बीज से कैसे बचे। और अब से कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: च न्यूनीकृता। सामाजिक माध्यम पटले भाजपा दलस्य सूचना प्रौद्योगिकी कोष प्रमुख अमित मालवीय अवदत् यत् E20 मिश्रण कार्यक्रम राजनैतिक बिंदु अंक निर्धारणेन चालिताया पक्षपात पूर्ण आलोचनाया अपेक्षया समग्र साक्ष्य आधारित मूल्यांकनाय योग्य अस्ति तथा च एतादृश परिणामस्य सार्वजनिक नीतेः मापनीय परिणामैः न्यायः करणीयः। 20% इथेनॉल मिश्रणस्य उपलब्धिम् भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीति सफलतासु अन्यतमम् इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषक कल्याणं ग्रामीण विकासः सहकारीय संस्थाः ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। NTA इति राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थं OMR पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। NTA इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि OMR पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। NTA इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमं अथवा AI जनितानि OMR पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिक परिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऐषमः दशम कक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजी लॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं CBSE संस्थया दशम कक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे निवेशे नवीनतायां प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः उद्योगनेतारः व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगताः सन्ति। जम्मूकश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरं एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभ्रात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई OMR शीट फर्जी पाई गई थीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का यह इंदौर केंद्र है।

श्रोताओं, आज है 19 जुलाई 2026 रविवार का दिन और आज का दिन थोड़ा सा खास है क्योंकि आज तीन प्रमुख बातें हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। आज ही के दिन 19 जुलाई के दिन ही 1969 के वर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और उन्हें सरकारी क्षेत्र में शामिल किया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम था। आज का दिन इसलिए भी विशेष है श्रोताओं, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1827 में 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी देने वाले अग्रणीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। और एक और खास बात है जो आज के दिन को और भी विशेष बनाती है, और वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती। 19 जुलाई वर्ष 1900 में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता, साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म भी आज के दिन हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि बात की जाए तो आज के विशेष दिन को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि इस दिन फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी की थी और आज ही के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल सेवा चलाई गई थी। तो आज का दिन इसलिए भी खास है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज सुबह 7:20 पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम योग निरोग, विषय होगा मधुमेह और योग। जानकारी देंगे योगाचार्य नितिन राठौर।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज भोपाल के पास ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10,54,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के

0: 1460 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और प्रदेश में एक बार फिर मानसून के गति पकड़ने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज राजधानी भोपाल से लगे हुए प्राचीन महल और स्मारक वाले गांव जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर कल दिनभर तैयारियां होती रहीं। भोपाल कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जगदीशपुर में डॉ मोहन सरकार की 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग हो रही है। इससे पहले जबलपुर के शक्ति भवन, दमोह के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष पर इंदौर के रजवाड़ा में, पचमढ़ी के राजभवन में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित मंत्रिपरिषद की बैठक हो चुकी है। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर और बड़वानी जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र भीलट बाबा देवस्थल नागलवाड़ी में भी बैठक हो चुकी है। ये भविष्य में पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वहीं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कैबिनेट प्रस्तावित है। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बड़ी योजना की घोषणा की जाएगी। ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पर चल रहा है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है।
1: ग्वालियर में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाले हैं और वो खुशखबरी ग्वालियर की जो लंबी श्रृंखला रही है विकास की, चाहे ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन जहां हम खड़े हुए हैं, एलिवेटेड रोड हो, अनेक योजनाएं 15,000 करोड़ की, ग्वालियर भिंड इटावा का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है, गडकरी साहब से मेरी चर्चा भी हो गई है, जल्द से जल्द वो भी तैयार हो जाएगा, पश्चिमी बाईपास भी है, ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पे चल रहा है।
0: जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल देवास फोरलेन पर फास्टैग के जरिए 3 XL बसों से अधिक टोल वसूली को अवैध ठहराया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डबल बेंच ने टोल कंपनी को करीब 11 करोड़ रुपए प्रभावित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मेसर्स देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 21 मई 2025 के आदेश को बरकरार रखा। कंपनी पर 25,000 रुपए की कास्ट भी लगाई गई, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2022 से जिन भी वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से अतिरिक्त राशि वसूली गई है, उन सभी को रिफंड दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। सीबीएसई के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त, स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में डिंडौरी में पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं झाबुआ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के चौथे दिन जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं उमरिया SDOP PS परस्ते ने लोगों से इस अभियान में जनभागीदारी की अपील की है।
3: मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन, युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराना है। वाकई में नशा एक व्यक्ति, उसका परिवार और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ की क्रय विक्रय की जानकारी

0: प्राप्त होती है, परिवहन की जानकारी प्राप्त होती है, तो संबंधित नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी जानकारी दें।
1: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक सूचना के अनुसार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं को धैर्य रखने और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस वर्ष वैष्णो देवी पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी कल से पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से रोक दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 3,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस साल की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। शिक्षा मंत्रालय ने भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 बीएड कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की टीवी जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल कार्रवाई की है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कुछ कॉलेज अपने घोषित स्थानों पर संचालित नहीं हो रहे थे और उनमें आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था। हालांकि ये संस्थान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त और विनियमित है, इसलिए मंत्रालय ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने कल चीन के विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीत लिया। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। फाइनल में आज सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलो भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का 3रा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन नर्मदापुरम ग्वालियर जबलपुर रीवा शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जिला प्रशासन ने ग्राम खजराना स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 80 करोड़ रूपये मूल्य की 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण को हटाया। महानिदेशक जेल वरुण कपूर ने जिला जेल शाजापुर में निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को देखा। खंडवा में एमएसएमई विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए बैतूल जिले से 260 यात्री आज से रवाना होंगे। मंदसौर के दलौदा में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा द्वारा किसान दिवस समारोह में किसानों को सम्मानित करने के साथ ही फलदार पौधों का वितरण किया गया। आगरमालवा जिले में विशेष 138 NH एक्ट के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 9,46,000 रूपये की चेक राशि मामलों का निराकरण किया गया। और डिंडौरी में राज्य आनंद संस्थान के मार्गदर्शन में जनजाति कार्य विभाग द्वारा अल्प विराम विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से पेश है कार्यक्रम योग निरोग।

नमस्कार श्रोताओं, योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में बातें मधुमेह से संबंधित, क्योंकि मधुमेह और योग, इन दोनों का तालमेल किस प्रकार से हो सकता है और

0: प्रकार से योग के माध्यम से हम मधुमेह को हरा सकते हैं, तो इसी विषय में आज हम जुड़ने जा रहे हैं और हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं नितिन राठौड़ साहब। आप योगाचार्य हैं और आप हमें जानकारी देंगे कि किस प्रकार से हम योग के द्वारा, आसनों के द्वारा मधुमेह से बच सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं।
1: आज विश्व भर में लगभग 44 करोड़ लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं, और अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 10 करोड़ लोग, जिसका हमें आंकड़ा पता है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि डायबिटीज उन्हें है भी, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन या जनरली अपने चेकअप नहीं कराते हैं। परंतु हम यह जानते हैं कि यह एक गंभीर समस्या है, तो इसे हम योग आसन से ठीक तो नहीं पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। उसे निरंतर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए हम योग अभ्यास करते हैं। अब कौन कौन से योग अभ्यास इसमें उपयोगी होंगे और किस तरीके से हम योग अभ्यास को करेंगे, इस विषय में हम आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे अभ्यास होंगे, आज बैठ के किए जाने वाले अभ्यास होंगे। आप आरामदायक स्थिति में, जिसे हम वज्रासन कहते हैं, बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को घुटने से बेंड करेंगे और अपने पैर के अंगूठे को आपस में टच करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अब इस बात को आप याद रखेंगे, जिन लोगों को घुटनों में समस्या है तो वह लोग इस अभ्यास को कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। बाकी अगर कुर्सी पे नहीं बैठना है, इसी स्थिति में बैठना है, तो आप कोई भी तकिया अपने नितंबों के नीचे लगा सकते हैं। चलिए इस अभ्यास को करते हैं। अभ्यास का नाम है मंडुकासन, मंडुक यानी कि मेंढक की स्थिति। चलिए करते हैं अभ्यास को। तो दोनों हाथों को आप अंगूठे को इस तरीके से लाएंगे, अपनी हथेली के क्लोज करेंगे और उंगलियों से अच्छी तरह बंद कर देंगे। अब श्वास भरेंगे अच्छी तरह और हाथों को अपने नाभि के पास लाएंगे, श्वास भरेंगे अच्छी तरह। श्वास भरते हुए पूर्ण रूप से श्वास को अब खाली करेंगे और अपने शरीर को, अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब इतना नीचे लेके जाना है कि आपकी छाती आपके घुटनों के पास लगी रहे। और अब इसमें याद रखना है कि आपका जो सिर है वो सामने की तरफ, आंखों से आपको सामने की तरफ देखना है। इसी स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड बने रहेंगे। जिन लोगों को हर्निया की बहुत ज्यादा समस्या है वह इस अभ्यास को नहीं करेंगे, या जिन्हें बहुत ज्यादा घुटनों में समस्या है वह इस अभ्यास को कुर्सी पे बैठ के करेंगे। धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे जिस तरीके से जाते हैं, श्वास भरते हुए और आराम स्थिति में रिलैक्स करेंगे। इस अभ्यास को आप कम से कम 2 से 3 बार दोहराते हैं। एक बार और करेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास पूर्ण रूप से छोड़ते हुए अंगूठे को उंगलियों से दबाएंगे, नाभि वाले भाग पर उंगलियों को रखते हुए अच्छी तरह प्रेस करेंगे। इससे होता क्या है, आपकी जठरग्नि एक्टिव होती है, जिससे आपका भोजन पाचन करने में बहुत ही उपयोगी होता है। धीरे धीरे वापस आएंगे। इसी श्रृंखला में हम अगला आसन करते हैं। दोनों पैरों को धीरे धीरे, एक एक पैर को खोलेंगे और सीधा करेंगे। चलिए अब हम जो अगला आसन कर रहे हैं वह है वक्रासन। तो वक्रासन करने के लिए आप अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने नितंब के पास लाएंगे। अब अपने सीधे पैर को घुटने से मोड़ेंगे व दूसरे पैर के घुटने के पास लाएंगे। अब याद रखें, जो आपका पैर सीधा है उस पैर की उंगलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। ये कुछ कुछ जो छोटे छोटे से पॉइंट है वो बड़ा याद रखने वाली चीजें हैं। अब दोनों हाथों को पहले एक बार सीधा उठाएंगे, दोनों हाथों को सीधा। अब देखिए इस स्थिति में भी आप थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। जो अभी शुरुआत कर रहे हैं पहले इन छोटी छोटी स्थिति को करेक्ट करें, सीधा करें। अब अपने अपोजिट हाथ को, यानी कि अपने उल्टे हाथ को अपने सीधे पैर के पास लेके आएंगे, अपनी कोहनी को बेंड करेंगे आराम से और दूसरे हाथ को अपने कमर के पीछे लेके जाएंगे। अब अपनी पूर्ण रूप से मेरुदंड को ट्विस्ट करेंगे, खींचेंगे और जो पीछे वाला शोल्डर है उसे भी पीछे की ओर लेके जाएंगे।

और आंखों से पीछे की तरफ देखना है। अब इस स्थिति को कम से कम 30 सेकंड रोकना है हमें। जैसा आप देख पा रहे हैं सभी, इसमें आपकी जठरग्नि इसमें भी एक्टिव होती है पूर्ण रूप से। अब कौन लोग इस अभ्यास को नहीं करेगा? जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेट में पेन रहता है या फिर बहुत ज्यादा अपच की प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, वो अवॉइड करेंगे उस समय के लिए, बाकी सभी करेंगे। धीरे धीरे से जिस स्थिति से जाते हैं उसी स्थिति से वापस आएंगे। पहले हाथों को उठाएंगे, फिर दूसरे हाथ को वापस लाएंगे और पैरों को सीधा करेंगे। इस अभ्यास को अब हम दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। अब उल्टे पैर को घुटने से मोड़ेंगे और सीधे पैर के घुटने के पास लाएंगे। पहले भी मैंने बताया है कि जो पैर आपका सीधा है उसकी उंगलियों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। बहुत सुंदर। अब दोनों हाथों को सीधा अपने कमर के साइड से उठाएंगे, दोनों हाथ। अब देखिए यहां पे आपको स्पाइन जो आपकी मेरुदंड से सीधा करना है, ये बहुत सुंदर। अब अपोजिट हाथ को अपने अपोजिट पैर के साइड लेके जाएंगे और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पंजे को निरंतर अपनी तरफ खींच के रखना है, दूसरे पैर के पंजे को। अब शोल्डर को, कंधे को पूर्ण रूप से खींचना है व गर्दन से एक स्थिति में निरंतर देखना है पीछे की तरफ। इस स्थिति में कम से कम आपको 20 से 30 सेकंड रहना है। धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले हाथों को, फिर पैरों को, और अब इस स्थिति में थोड़ी देर आराम करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, रिलैक्स, और अपने शोल्डरों को रिलैक्स छोड़ेंगे, नेक को बैक साइड, आरामदायक स्थिति। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। चलिए अभी इसी श्रृंखला में हम जो अगला आसन करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। चलिए किस प्रकार करते हैं आइए देखते हैं। अपने सीधे पैर को अपने उल्टे पैर के नीचे से लेके आएंगे, नीचे से आरामदायक स्थिति में, और दूसरे पैर को घुटने से बेंड करके मोड़कर अपने जो सीधा पैर है उसके साइड में लेके आएंगे। अब यह सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका घुटना है वो ज्यादा मुड़े नहीं, सीधा स्थिति में रहे। बहुत सुंदर। वही स्थिति अब दोनों हाथों को एक साथ उठाएंगे, जैसा हमने वक्रासन में जाना था। यह उसका थोड़ा सा एडवांस आसन हो जाता है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं वह वक्रासन भी 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं, उसके बाद आप अर्ध मत्स्येन्द्र आसन में आ सकते हैं। अब आप अपना दूसरा हाथ, यानी कि जो पैर आपका मुड़ा हुआ है उसका विपरीत हाथ दूसरी ओर लेके जाएंगे, घुटने के पास लेके जाएंगे, एल्बो से अच्छी तरह प्रेस करेंगे और अपने अपोजिट हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब गर्दन से पीछे की तरफ देखेंगे और इसी स्थिति में थोड़ी देर रोकेंगे। आपकी जो ऑर्गन्स हैं, जो आपकी मसल हैं, एब्डोमिनल मसल हैं, वो अच्छी तरह मसाज हो रही है उन मसलों की। इससे क्या होगा, आपके डाइजेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट आता है, साथ में आपकी स्पाइन ठीक होती है इस आसन से। थोड़ी देर निरंतर होल्ड करेंगे और धीरे धीरे आसन से वापस आएंगे। अब यही अभ्यास हम दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। पैर को आरामदायक स्थिति में लाके घुटने से मोड़ेंगे और अपने दूसरे नितंब के पास लेके आएंगे। अब अपने अपोजिट पैर को स्पर्श करेंगे अपनी एल्बो से, कोहनी से, और दूसरे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। अगला आसन जो है हमारा उसे हम करेंगे, उसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। आरामदायक स्थिति में आप कमर के बल लेट जाइए। आप निरंतर अभ्यास करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें इसी प्रकार। चलिए अगला जो अभ्यास है हमारा उसे हम कहते हैं अर्ध नौकासन। यह पूर्ण नौकासन भी होता है, परंतु आज अर्ध नौकासन के बारे में जानेंगे। तो इसे करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे,

हाथों को अपने थाई के पास लेके आएंगे, उंगलियों को सीधा खींचेंगे। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों शोल्डर को, कंधों को व नेक को उठाएंगे धीरे धीरे, व अपने सीधे पैर को उठाएंगे, सिर्फ सीधे पैर को। हाथ की स्थिति बिल्कुल सीधी रहेगी, ऊपर उठा के रखेंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो आपके घुटने के पास आएं। अब सुनिश्चित करेंगे कि आपको पैर को नहीं उठाना है। देखिए, यही हम चीजें बताते हैं आपको कि आपको कोशिश करनी है ये 30 डिग्री पे आपका एंगल बना रहे। बहुत अच्छा अभ्यास। आपको शोल्डर को खींच के रखना है, चेहरे पे मुस्कान रखनी है, मुस्कुराते हुए अभ्यास करना है। अब धीरे धीरे आप अभ्यास को वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर को, गर्दन को और हाथों को लेके आएंगे। यही अभ्यास आप दूसरे पैर से दोहराएंगे, निरंतर चेहरे पर मुस्कान रखेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले अपनी गर्दन को, शोल्डर को और उंगलियों को रिलैक्स करेंगे। इसी क्रम में हम दोनों पैरों से एक साथ नौकासन करेंगे। वही स्थिति जिनको घुटनों में व लोअर बैक पेन में, बहुत ज्यादा अभी लोअर बैक पेन है, वह इस अभ्यास को एक साथ नहीं करेंगे। किस तरीके से करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूं। जिनको लोअर बैक पेन है वह दोनों घुटनों को मोड़ेंगे एक साथ। अब आरामदायक स्थिति में अपने पैरों को भी उठाएंगे एक साथ, दोनों पैरों को उठाइए ऊपर। अब जो स्थिति हमने अर्ध नौकासन में की थी वही स्थिति करेंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे एक साथ और अपने नेक को उठाएंगे व शोल्डर को उठाएंगे। अब इसमें आपके नाभि वाले भाग पर फोकस करेंगे, सांसों को निरंतर धीरे धीरे लेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को कभी भी कंट्रोल नहीं करना है, यहां पे आरामदायक स्थिति में रहना है। और जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको पीठ में कोई समस्या नहीं है, वह इस आसन में पैरों को सीधा भी कर सकते हैं 30 डिग्री पे। इस स्थिति में बहुत सुंदर, रोके रखेंगे, बहुत सुंदर, धीरे धीरे आप वापस आएंगे। यह अभ्यास आप कम से कम 2 से 3 बार दोहराएं और कम से कम 30 सेकंड रोकें। देखिए, अभ्यास तो आप सभी करते हैं, परंतु इस अभ्यास को दीर्घ समय तक, यानी कि आपको कम से कम 30 सेकंड, फिर 35 सेकंड, 40 सेकंड ऐसे बढ़ाना है इस अभ्यास को। चलिए, इसी श्रृंखला में हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। अपने दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे लाएंगे। याद रखेंगे कि आपकी जो हथेलियां हैं वो जमीन की तरफ रहेंगी। कोशिश करेंगे जो आपकी एल्बो हैं, जो आपकी कोहनियां हैं वो सीधी हो जाएं। बहुत सुंदर। अपने कंधों को आरामदायक स्थिति में रखेंगे व श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाएंगे, उत्तान पादासन, एक साथ श्वास भरते हुए। अब इस स्थिति में निरंतर होल्ड करेंगे। वही, जैसा कि आपको पता है, जिनको पीठ दर्द होगा उनके लिए यह थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, इसलिए घुटने बेंड करके भी जिनको पीठ दर्द है वो कर सकते हैं। बहुत सुंदर अभ्यास, निरंतर रोकेंगे। गर्भवती महिलाएं इस अभ्यास को नहीं करते हैं। धीरे धीरे पैरों को सीधा करेंगे और वापस लेके आएंगे। थोड़ी देर शवासन में रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल आनंद, मृतक अवस्था, इसमें आपकी सांस तो चल रही है लेकिन जागरूक नहीं है। धीरे धीरे वापस आएंगे।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से लीजिए सुनिए सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत।

0: आनंद बख्शी की बोल, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म आपकी कसम।
1: जय जय शिव शंकर।

0: मुझको तो सुनते हैं।
1: ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं।
0: एक के दो, दो के चार मुझको तो दिखते हैं।
1: ऐसा ही होता है जब दो

0: रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे,
1: घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे,
0: रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे,
1: घर वाले

दुश्मन फिल्म का गीत है, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नौर केंद्र से। बाकी गीतों के साथ अभी हाजिर होते हैं।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत श्रोताओं आप सुन रहे हैं, बाकी गीतों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। कारवां फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर की आवाजें, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

अन्नास फिल्म का गीत। हजरत जयपुरी की लिखी रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

सुनहरे पल सदाबहार फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे। और अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी

0: एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार दसवीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
2: नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एट अंडर 1% टुडे।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय

0: ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित मार्गों पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी, एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग पार्किंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट।

0: रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था। पंजाब केसरी ने नागरिकता और चुनाव आयोग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है पिछले कई सालों में नागरिकता कानून में कई बार बदलाव किए गए हैं जिससे जन्म से नागरिकता देने वाले नियमों में बड़े बदलाव हुए। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है शिंदे गुट में उद्धव के सांसदों के विलय को मंजूरी। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या बढ़कर 298 हुई, बागी तृणमूल सांसद अलग बैठेंगे। दैनिक भास्कर के अनुसार सीबीएसई की 10वीं की दूसरी परीक्षा ने बदली तस्वीर, रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक, 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और ब्रह्मयुगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है नई पीढ़ी में गोल्ड की इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out

कारण आप प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, यदि आप सभी बच्चों को बारिश की बूंदों का मजा लेना है ना, तो थोड़ी सी सावधानी तो आप सभी बच्चों को भी अपनानी ही पड़ेगी। और ये सावधानियां कौन कौन सी हैं बच्चों, इन्हें हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन इस वक्त आप सभी के साथ हम भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

और इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में बच्चों आगे। बच्चों आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई 1827 को जन्म हुआ था एक ऐसे महान क्रांतिकारी का जिन्हें हम सभी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी के नाम से जानते हैं। बच्चों इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में हुआ था। मात्र 22 वर्ष की अल्पायु में ही आप ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हो गए थे। बच्चों स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे ने और क्या क्या काम किए, कैसे विद्रोह किया और उन्हें किस कारण फांसी की सजा सुनाई गई, ये सभी बातें

0: हमें बता रहे हैं आपके ही अपने दोस्त हर्ष। तो आइए जानते हैं हर्ष से।
1: नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष। कभी सोचा है कि एक इंसान का लिया हुआ एक फैसला पूरे देश की तकदीर बदल सकता है? आज की कहानी एक ऐसे ही वीर की है जिन्होंने सिर्फ अंग्रेजों का सामना ही नहीं किया बल्कि हर भारतीय के दिल में आजादी की पहली चिंगारी भी जगाई। ये कहानी है मंगल पांडे की। 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के नागवा गांव में जन्म लिए मंगल पांडे। ईस्ट इंडिया कंपनी के 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक सिपाही की नहीं थी, वो एक ऐसे देशभक्त थे जिनके लिए अपना धर्म, अपना स्वाभिमान और अपना भारत सबसे ऊपर था। उस समय अंग्रेज भारतीय सिपाहियों के साथ अन्य भेदभाव करते थे। फिर आया वो दिन का इतिहास जिसने रुख ही बदल दिया। सिपाहियों को इनफील्ड राइफल के कार्ट्रेजेस दिए गए जिन्हें दांतों से खोलना पड़ता था, और एक खबर फैली कि उन कार्ट्रेजेस के ऊपर लगी हुई एक लेयर वो सुअर की चर्बी की लगी हुई है। ये सिर्फ एक कार्ट्रेज नहीं था, ये भारत की आस्था और सम्मान को चुनौती थी। और फिर 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की धरती पर एक सिपाही खड़ा हुआ। न उसके पास कोई सेना थी, ना कोई बड़ा पद, लेकिन उसके पास था हिम्मत का वो जज्बा जो किसी भी तख्ता हिला सकता है। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और उन्हें खुलेआम उनके विरोध आवाज उठाई। उसी दिन उन्होंने आजादी की लड़ाई की पहली मजबूत शुरुआत कर दी। शायद उन्हें पता था कि इस कदम की कीमत जान होगी, लेकिन कुछ लोग अपनी जिंदगी से नहीं अपने बलिदान से अमर होते हैं। अंग्रेजों ने उनकी गिरफ्तार किया और 8 अप्रैल 1857 को सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी। लेकिन उस फांसी के साथ उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई, वहीं से भारत की आजादी की कहानी और तेज हो गई। दोस्तों, आज हम आजाद हैं, हम अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने तिरंगे को गर्व से लहरा सकते हैं। लेकिन हर बार जब तिरंगा आसमान में लहराता है, उसकी हर लहर हमें याद दिलाती है कि आजादी की बुनियाद किसी के बलिदान पर टिकी है, और उस बुनियाद का एक मजबूत स्तंभ था मंगल पांडे। तो आइए उनके बलिदान को सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित ना रखें, उनके साहस को अपनी सोच में, उनके देश प्रेम को अपने कर्म में, और उनके स्वाभिमान को अपनी पहचान बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।
0: तो बच्चों, पसंद आई ना क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के विषय में कुछ बातें और उनसे संबंधित कुछ रोचक जानकारी। और अब कार्यक्रम में आगे हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही होनहार और उत्साहित बच्चे जो कि अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं आपसे अपनी प्यारी मनचाही बातें शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले सुनते हैं आरव से बहुत ही प्यारी सी एक कहानी।
2: नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरव जैन है। मैं दस शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल के सातवीं कक्षा का एक छात्र हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका शीर्षक है धैर्य का फल। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल बहुत ही अधीर स्वभाव का था, उसे किसी भी काम का परिणाम तुरंत चाहिए होता था। उसकी यह आदत देखकर उसके दादाजी को चिंता होती थी। एक दिन दादाजी ने राहुल को अपने बगीचे में बुलाया और उसे एक आम का बीज दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस बीज को जमीन में बोकर हर दिन पानी दोगे और धैर्य से इसकी देखभाल करोगे तो एक दिन तुम्हें मीठे आम खाने को मिलेंगे। राहुल ने बीज बो दिया और पहले कुछ दिनों तक उसे पानी देता रहा, पर जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा तो उसका धैर्य टूटने लगा। एक सप्ताह बाद उसने गुस्से में आकर पानी देना बंद कर दिया। तभी दादाजी ने समझाया, बेटा, अच्छे फल पाने के लिए समय और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो यह बीज एक बड़ा पेड़ बनेगा और तुम्हें मीठे फल देगा। राहुल ने दादाजी की बात मानी और फिर से बीज की देखभाल शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद एक नन्हा पौधा उगाया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कई सालों बाद वह पौधा एक बड़ा आम का पेड़ बन गया जो मीठे आमों से लदा हुआ था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धैर्य रखने से ही अच्छे फल मिलते हैं।

0: सोच समझ कर पूरे विश्वास के साथ हर कार्य को करना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इसी बात के साथ बढ़ते हैं बच्चों कार्यक्रम में आगे। और बच्चों अब हमारे बीच हैं एक और आपके ही दोस्त कुबेर, जो कि आपके लिए लाए हैं एक और प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी।
1: मेरा नाम कुबेर है, मैं एमरल्ड हाइट्स वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है बड़ों का सम्मान। सम्मान का अर्थ है इज्जत या आदर करना जब हम किसी व्यक्ति को उसकी उम्र, ज्ञान या उसके अच्छे कामों के लिए इज्जत देते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं। अंशुल एक दिन अपने दादा दादी के साथ पार्क में गया। पार्क में हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे जिन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। वे सब एक बेंच पर बैठ गए। दादाजी ने अंशुल को बताया कि जब वह छोटे थे तो वह भी इसी पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बातें, सपने और कभी कभी अपने डर भी साझा करते थे। दादाजी ने कहा कि उन्हें भी कभी कभी डर लगता था, लेकिन उन्होंने सीखा कि डर से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दादी ने अंशुल को समझाया कि हमें हमेशा अपने दोस्तों और सब लोगों का सम्मान करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करनी चाहिए। अंशुल ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और कहा कि वह भी अब से सबका सम्मान करेगा और मदद करेगा। घर लौटते समय उसने सोचा कि वह स्कूल में एक छोटा सा सम्मान क्लब बनाएगा जहां सभी बच्चे मिलकर प्यार और आदर से रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। उनके अनुभवों से हम न केवल ज्ञान मिलता है बल्कि साहस और नैतिकता का पाठ भी सीखते हैं। सम्मान और सहयोग से हम सभी एक बेहतर समाज बना सकते हैं। धन्यवाद।
0: तो थी ना बच्चों बहुत ही प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनकी इज्जत करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए बच्चों, क्योंकि वो जो भी बात आपको बताते हैं या समझाते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ सीख छुपी होती है जो भविष्य में आपके काम आएगी और वो सीख आपको बेहतर इंसान बनाएगी। तो बच्चों इन दोनों प्यारे प्यारे दोस्तों की कहानी सुनने के बाद क्यों ना सुन लें इस समय एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: और इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं कार्यक्रम में बच्चों आगे। अब बच्चों सुनते हैं हमारे बीच में उपस्थित नन्हे नन्हे दोस्तों से प्यारी प्यारी कुछ कविताएं।
1: मेरा नाम आदिश है, मेरे स्कूल का नाम एमरल्ड हाइट्स वर्ल्ड स्कूल है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मन के भोले वाले बादल। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालों वाले लगे दौड़ में आसम, मैं झूम झूम कर काले बादल, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रहे, शेरों में मतवाले बादल, कुछ तो लगते है तूफानी, कुछ लहर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से छूके झर झर झर झर बरसाते पानी, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल, मन के भोले भाले बादल, के भोले भाले बादल। थैंक यू।
0: ये प्यारी सी कविता थी आदेश की, और अब सुनते हैं हितार्थ से उनकी अपनी कविता।
2: नमस्ते, मेरा नाम है हितार्थ जैन, मेरे स्कूल का नाम है DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैं कक्षा एक का छात्र हूँ और मेरी कविता का नाम है काला बादल आया। काला काला बादल आया, आसमान पर आकर छाया, छम छम जल बरसाया, सब और जल भर गया, मामा और नाना आए, राजा और राधा बाहर आए, राधा कागज लाई, नाव बनाई, नाव चलाई, नाव चला कर राजा नाचा, सबका मन चहक उठा, धन्यवाद, नमस्ते।
0: तो बच्चों तीनों बहुत ही शानदार कविताएं, और उससे भी ज्यादा शानदार थी उनकी अपनी भाषा में खूबसूरत प्रस्तुति। और बच्चों अब बारी है एक और प्यारी सी नन्ही सी दोस्त अदिति की, जो कि हमें सुना रही है एक और प्यारी सी कविता।
3: मेरा नाम अदिति जैन है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेंट अर्नोल्ड स्कूल लाला राम नगर इंदौर है। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है दुखी राम बन कभी न खाना। तो दोस्तों खाना खाते समय ध्यान रखना इन सभी बातों का। दुखी राम बन कभी न खाना, गंदा खाना कभी न खाना, झूठा भोजन कभी न खाना, बासा भोजन कभी न खाना, भारी भोजन कभी न खाना, रोते रोते कभी न खाना, गाते गाते कभी न खाना, लेटे लेटे कभी न खाना, खड़े खड़े

0: खाना, गिरा गिरा कर कभी न खाना, चुरा चुरा कर कभी न खाना, मचा मचा कर कभी न खाना, चप चप करके कभी न खाना, चलते फिरते कभी न खाना, पढ़ते पढ़ते कभी न खाना, चिड़ा चिड़ा कर कभी न खाना, झगड़ झगड़ कर कभी न खाना, बिना नहाए कभी न खाना, बक बक करके कभी न खाना, अंधकार में कभी न खाना, दुखी राम बन कभी न खाना, टीवी देखते कभी न खाना, मोबाइल सुनते कभी न खाना, अकेले भोजन कभी न करना, मिल बांट कर भोजन करना, दुखी राम बन कभी न खाना, दुखी राम बन कभी न खाना। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत बहुत ही शानदार कविता है ना बच्चों। वाकई बच्चों, हम सभी को दुखी राम बनकर खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गलत ढंग से खाया गया खाना हमारे शरीर पर जो है वो प्रभाव भी गलत ढंग से ही डालता है। इसलिए खाना हमेशा आराम से, धीरे धीरे, स्वस्थ मन से चबा चबा कर ही खाना चाहिए, असावधानी और लापरवाही से तो बिल्कुल भी नहीं। और बच्चों, इसी असावधानी और लापरवाही की बात तो हम कार्यक्रम की शुरुआत में भी कर रहे थे। हम बात कर रहे थे इस मौसम में अपनाई जाने वाली कुछ सावधानियों की, जैसे कि बच्चों इस मौसम में बाहर की खुली हुई चीजों को बिल्कुल भी ना खाएं, बासा भोजन के साथ ही फ्रिज में रखी हुई ठंडी चीजों को तुरंत ना खाएं, हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाएं, साफ स्वच्छ पानी पिएं, और हाँ, बारिश में यदि भीग जाएं, पहली बात तो आप भीगे ही नहीं, और यदि भीग जाए तो तुरंत कपड़े बदलें और बालों को पोंछ कर सूखने दें। जरा सी भी दिक्कत महसूस हो ना बच्चों तो मम्मी पापा को अवश्य बताएं। तो बच्चों, ये तो थी हमारी अपनी बात, और अब समय है जिज्ञासा का। बच्चों, बाल मन जो होता है वो हमेशा जिज्ञासु होता है। कुछ भी नई चीज देखी नहीं, तुरंत दिमाग में प्रश्न आने लगते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ये कब होता है, कितनी देर तक रहेगा, वगैरह वगैरह। तो बच्चों, इन्हीं जिज्ञासाओं को पूरा करता है हमारा ये क्रम जिज्ञासा समाधान। तो चलिए जानते हैं आज आपकी नन्ही दोस्त किस जिज्ञासा का समाधान लेकर हमारे बीच आई है, और ये नन्ही दोस्त है अनिका।
2: मेरा नाम अनिका जैन है, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि पेड़ ऑक्सीजन कैसे देते हैं। पौधे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसके बिना इंसान और जानवर जीवित नहीं रह सकते। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि पेड़ ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सूरज की रोशनी पत्तियों पे पड़ती है, पत्तियाँ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं। ये मौजूद पदार्थ क्लोरोफिल, सूरज की रोशनी की मदद से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर पेड़ का भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने के बाद पेड़ हवा में ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि हमारे लिए ऑक्सीजन क्यों जरूरी है। हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है और हमें स्वस्थ और ऊर्जावान रखती है। इंसान, जानवर और पक्षी सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या पेड़ केवल ऑक्सीजन ही देते हैं? नहीं नहीं, पेड़ तो हमें बहुत कुछ देते हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, हमें छाया देते हैं, फल फूल और लकड़ी देते हैं, पर्यावरण को ठंडा और स्वच्छ रखते हैं, पक्षियों और जानवरों को रहने का घर भी देते हैं। पेड़ है तो जीवन है, इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।
1: जाना बच्चों आपने कि पेड़ ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ प्रकृति का अनमोल उपहार है, और ये पेड़ पृथ्वी पर ही हमारे जीवन का आधार है। ये न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को भी ग्रहण करते हैं। इसी तरह बच्चों, गर्मी के बाद हम सभी के बीच बारिश लाने में भी तो पेड़

0: ही सहायक होते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, वन्य जीवों को आश्रय देते हैं और हम सभी को फल फूल व औषधियां भी तो पेड़ ही प्रदान करते हैं। तो जाना बच्चों आपने कितने जरूरी हैं हम सभी के लिए ये पेड़ पौधे। तो फिर इस बारिश में अपने बड़ों के साथ आप भी लगाइए बच्चों एक एक पेड़, और हाँ थोड़ा बड़ा होने तक उसकी सुरक्षा व देखभाल भी कीजिए एक अच्छे दोस्त की तरह। तो बच्चों ये तो था आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम कल के सितारे बच्चे हमारे। उम्मीद है आप सभी को अपने रेडियो दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, यानी आज का कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगा होगा। और अब हम आपको चलते चलते बता दें कि इस अच्छे से कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही करते रहिए अच्छे अच्छे ढेर सारे काम। इसी बात के साथ फिर मिलने का वादा करते हुए बच्चों अनुमति दीजिए अपनी आराधना दीदी को। जय हिंद,
1: जय हिंद,
0: टाटा बाय बाय, नमस्कार।
2: कल के सितारे बच्चे हमारे, कल के सितारे बच्चे हमारे,
3: कल के सितारे बच्चे हमारे। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं लीजिए सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरुण कुमार गोयल और साथियों की आवाज में ये कुछ लोकगीत। आइए सुने, आनंद लीजिए।

अरुण कुमार गोयल और साथियों को भी आप सुन रहे थे लोक संगीत के अंतर्गत। लोक संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। और आइए अगले कार्यक्रम के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
1: नमस्कार। कभी एले पैदे की मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमेद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
2: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
1: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है मुझे?
2: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं कलाकार हूं और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सिलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहां तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूं मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
1: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
2: हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ही ले लीजिए जहाँ पे अजीत दोवाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजीत दोवाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
1: ये माधवन की खासियत है ना, हर
2: किरदार
1: में
2: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा, अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे। तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
1: और आपने एक्सेप्ट किया ये भी?
2: वही कह रहा हूँ, जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होके मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
1: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
2: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर्स हैं, तो वहां के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे जो चीज जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हैं। इट्स अ फैबुलस मूव, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है।
1: आप एफटीआई से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देख रहे हैं?
2: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था। जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था। और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ही टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज करना शुरू किया। मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है, जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज कंसर्न। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए। वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए। मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ। सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है। एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा।
1: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी द नाम इफेक्ट। कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग भी थी। साथ में आपने फिल्म बनाई, लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
2: बहुत अच्छा सवाल। इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबी नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे। ये हमारी खासियत है इंडियन की, नो अपनी अचीवमेंट के बारे में बात

0: नहीं करना उनको ठीक लगता है। वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे थे। उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज पे लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है। रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। मैंने ना आएं दिखा या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना जरूरी है, इस इंसान के बारे में बताना जरूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हम अपने हीरोज को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाए। तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया, उस सेट पे जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ नहीं एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था। तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं। बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए। मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था।
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है। सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा। आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही। किस तरह से इतने युवाओं पर इसका इफेक्ट?
0: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहां पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अंदलाव नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं। और आज जब भी हम कोई कंपटीशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कंपटीशन शुरू हो गए। आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है, इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर। और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी, पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरी दुनिया पे, फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुन्द्र को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा, फिर कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते, इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नम्बी नारायण एंड ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने, हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है, ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं, एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है, तो वो मैडी इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो इसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड है। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में, उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती, 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं, जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें ये तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आए, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहां पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहां पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इम्पोर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, उसके बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनु वर्ड्स मनु, तो वो एक प्रोग्रेसर नहीं था, मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला। हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ज बनू, पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग है। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला कड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे टू में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा, क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
1: क्राफ्ट
0: नहीं, सबकी नीयत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को। पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है। तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरेंद्र हो जाए, चाहे वो रणदीप बसंती हो जाए, सबको पता था कि हमें करना क्या है। कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकम्पेरेबल। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
0: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम। और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली, अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा, जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
1: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेपिटेशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहां पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नीयत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो या मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
0: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरेंद्र, एक और फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारी इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ न कुछ मुझमें छोड़ जाते हैं।
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ, या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल, इट वॉज दैट वेरी गुड। इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट, और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ। उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी।

0: और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
1: रियल लाइफ हीरोज की आप बात करें, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है। किस तरह से देखते हैं
0: ये? बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकालकर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलोसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है, और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है। क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पर हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी।
1: बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें, और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी, और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही थी जया सिन्हा। ये प्रसारण DD न्यूज के सहयोग से किया गया।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नैनिका नंदी के द्वारा गाया राग बिलास खान तोड़ी। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है, मध्यलय 3 ताल में है, और तबले पर संगत कलाकार हैं शरद सूर्यवंशी।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नैनिका नंदी का गाया राग बिलास खान तोड़ी। शास्त्रीय संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से किया गया। और अब जिले की चिट्ठी के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र।

0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, ये आकाशवाणी है। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। झाबुआ जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हजारों हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों सिंगल क्लिक के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की, जिसके तहत झाबुआ जिले के 23,000 से अधिक वृद्धजन, दिव्यांगजन और कल्याणी पेंशन के हितग्राहियों के खातों में लगभग 1,38,00,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर बीते दिनों झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। कलाकारों ने भीली भाषा में गीत, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ लेकर स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। झाबुआ जिले में आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 17 जुलाई को आयोजित विशेष जनसुनवाई में जिले की सभी तहसीलों से कुल 220 आवेदन प्राप्त हुए। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लगभग 2,75,00,000 रुपए की लागत से निर्मित 50 सीटर वीरांगना रानी दुर्गावती अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न निर्माण और जनहितकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वर्षा ऋतु के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए झाबुआ जिले में स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान जारी है। इस वर्ष जनवरी से जून तक जिले में 1,06,000 से अधिक घरों और लगभग 4,00,000 पानी संग्रहित करने के पात्रों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन अपने घर और आसपास पानी जमा होने वाले सभी स्थानों की जांच अवश्य करें। झाबुआ जिले में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने मेघनगर और थानला विकासखंड के कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं का संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। झाबुआ जिले में शिशुओं और छोटे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत हो गई है। 31 अगस्त तक इस अभियान के दौरान ANM, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम घर घर जाकर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। झाबुआ जिले ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च स्थान दिया गया है। झाबुआ में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की परंपरा पर आधारित इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। झाबुआ में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बीते दिन उत्साह के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। वहीं कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने योग को स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन की आधारशिला बताया। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भी झाबुआ जिले ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले ने 102.8% कवरेज के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 28 से 30 जून तक चले इस अभियान में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 2,19,550 बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई गई। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों जिले में पदस्थापित 20 नवनियुक्त मेडिकल ऑफिसर से संवाद किया। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन जनभागीदारी और जल संरक्षण के संकल्प के साथ हुआ। आजीविका भवन में बीते दिनों आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। झाबुआ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: झाबुआ ज़िले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था हरीश यादव का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने। ये आकाशवाणी है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, बस लेकर हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम MH Hotline।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को, श्रोताओं को मनीष कुमार सोनी का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हैं लेकर हम आपका पसंदीदा सजी फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, और लेते हैं आज के इस दिन का पहला विशेष कॉल। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो सर।
0: जी हेलो।
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कौन से स्थान से बोल रही हैं, पहले बताइए।
1: मैं रानू बात कर रही हूँ देवास से।
0: जी जी रानू जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए सबसे पहले कि कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगी।
1: मूवी का नाम है हम तुम। का नाम है दिल तो पागल है।
0: अच्छा, दिल तो आपका रेडियो सेट जो है वो आपसे थोड़ा सा।
1: हाँ सर, रेडियो सेट नहीं है, मैं तो मोबाइल ऐप पर सुनती हूँ। वो ना आपके मतलब जो नंबर है ना,
0: जी जी,
1: इस नंबर में इशू आता है मतलब।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: 24 वाले में।
0: तो दिल तो पागल है मूवी का आप गाना सुनना चाहती है, कौन सा गाना आप पसंद करेंगी?
1: चांद ने कुछ कहा।
0: चांद ने कुछ कहा, ये गाना आपने क्यों पसंद किया, और इस समय जो बारिश नहीं हो रही उसको लेकर आपके फिलहाल क्या विचार है?
1: बारिश तो हम दुआ कर सकते हैं कि जल्दी से आ जाए
0: जी।
1: और बाकी तो मेरे यहाँ देखो खेती है नहीं तो मैं ज्यादा जानती नहीं, लेकिन हाँ पानी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अभी तो आना।
0: अच्छा,
1: क्योंकि बहुत सारी फसल खराब हो जाएगी।
0: सही सही बात है।
1: और ना ये सॉन्ग आपको डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: और आप... मेरी बहन नंदनी और एक तृप्ति मैम लटपटी है, वो उनसे बात करना मुझे बहुत पसंद है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारे साथियों से बात करना अच्छा लगता है।
1: जी, और एक हमारे जगत भाई साहब हैं और योगेश है
0: जी,
1: और एक है केसरी सिंह जी।
0: अच्छा अच्छा, तो आप इन

0: सभी को सॉन्ग डेडिकेट कर रही हैं।
1: हाँ मैंने आज बहुत सारे नाम लिए, बट मैं लेती नहीं हूँ, एक ही नाम लेती हूँ। मेरी बहन का आज संडे और मेरा दिल बोला तो मैंने सोचा ले लेती हूँ।
0: नहीं नहीं बिल्कुल है, और सभी के नाम लेना चाहिए भाई, सभी श्रोताओं के वजह से हमारा आकाशवाणी जो है इतना पॉपुलर है, इतना पसंदीदा है आज भी, और उतना ही ज़्यादा
1: जी
0: प्रस्तावित है। बताइए और आप क्या करती हैं इसके अलावा?
1: सर मैं हाउस में करूँ
0: जी
1: और बस मेरा मायका गुलाम है और यहाँ ससुराल है देवासी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपके पसंद का जो गीत है वो हम आपके लिए यहाँ से
1: में।
0: जारी कर
1: ओके
0: रहे हैं,
1: नमस्ते।
0: सुनिएगा। जी नमस्कार।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो, मैं सर, नमस्ते।
0: जी नमस्कार, आपका नाम बताइए।
2: अरे सर जी, नाम अनोखे सिंह।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में।
2: और आज जैसे ये लाइव चला रहे हो, ऐसे कोई लाइव नहीं चलाता है सर जी।
0: जी नहीं, MH हॉटलाइन जो है वो सजीव फोन इन कार्यक्रम ही होता है और इसमें आपके फोन कॉल्स पर आधारित कुछ गीत
2: सर
0: संगीत
2: जी,
0: हम आपको
2: इसमें
0: सुनवाते
2: क्या
0: हैं।
2: है कि धोखा होता है सर। दूसरे अनाउंसर आते हैं, 2-3 मिनट हमको वो लगते हैं लाइन पे, तो और श्रोता के साथ धोखा होता है सर जी।
0: जी
2: जैसे
0: जी
2: आज
0: ऐसा
2: चल रहा है कार्यक्रम,
0: जी जी ऐसा कुछ
2: ऐसा
0: भी नहीं
2: अगर
0: है।
2: चले तो
0: अब
2: किसी श्रोता के साथ धोखा नहीं
0: नहीं
2: होगा।
0: नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सभी जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो लगभग ऐसा कुछ नहीं करते। खैर, आप ये बात होती रहेगी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
2: रिम झिम बरसता सावन होगा, झिल मिल शीतल
0: अच्छा, कौन सी
2: आंगन
0: फिल्म का गीत है
2: होगा,
0: ये भी बताइए।
2: ये तो सर हम जानते नहीं।
0: अच्छा, ये आप नहीं जानते। मेरे ख्याल से आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम,
2: नहीं, रेडियो है सर जी।
0: तो आपका रेडियो थोड़ा सा दूर रखिए क्योंकि वहाँ से फीड मिल रही है हमें यहाँ पर।
2: रेडियो दूर रख दिया सर जी, बाकी ये मेन रोड है
0: अच्छा,
2: तो जो ये वाहन वगैरह चलते रहते
0: जी जी कौन से स्थान से बात कर रहे हैं आप।
2: हैं, बाग पुलिस थाने के सामने से। बाग
0: नहीं, ये बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप कौन से शहर या कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं।
2: बाग,
0: बाघ, कुक्षी बाघ वाले बाघ से बात कर रहे हैं आप।
2: आप कौन सा।
0: जी, मैं आपका रेडियो दोस्त हूँ, मनीष कुमार सोनी। और बताइए, इस समय आपकी वहाँ बारिश की क्या हालचाल है।
2: ये बारिश के लिए तो गाना मंग रहे हैं सर जी,
0: अच्छा,
2: झिम झिम बरस होता।
0: सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
2: हाँ, और सर जी, आप
0: जी बताइए।
2: एंट्री नहीं करते हो क्या कि कौन से सोता है ना आज बात करी। केले सोता का आप फोन उठाते हो जिनका लगा हुआ
0: नहीं,
2: रहता है
0: ऐसा
2: सर
0: कुछ भी नहीं
2: जी।
0: है। देखिए, जितने फोन कॉल्स
2: ऐसा कुछ भी नहीं
0: कोशिश
2: कि
0: होती
2: अभी
0: है।
2: आपने पहला फोन उठाया, कल फोन उठाया पहला, ऐसा चलता है सर जी।
0: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने श्रोताओं को बिल्कुल एक सार रखते हैं और एक
2: देखो,
0: जैसे ही
2: आप
0: रखते हैं।
2: अपने ऐलान सर के ही पक्ष ले रहे हो, हमारा तो पक्ष ही नहीं ले रहे हो। हम श्रोताओं का तो, आप
0: अच्छा, ये बताइए,
2: श्रोता
0: ये
2: कोई भी
0: जो
2: राय देता है तो उसको और अनजान कर देते हो। राजू भाई पागल होता है देवास वाला।
0: अच्छा सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए कि आपको ये गाना क्यों पसंद आया इतना ज्यादा बारिश को लेकर।
2: भाई हम तो काश्तकार के जमाई है सर जी, हमारी फसल है, अभी सब नर्वस हो रही।
0: अच्छा, नर्वस हो रही है।
2: हाँ,
0: तो इसलिए आप
2: तो
0: चाहते हैं कि
2: उसको कुछ
0: अब
2: थोड़ा
0: फटाफट
2: बहुत ये गाने
0: रिमझिम।
2: के साथ में ही अगर बरस जाए तो हमारी और आपकी दोनों की विनती अच्छा ही है।
0: जी बिल्कुल, अब हम आपके लिए पानी बरसाने के लिए ये झिलमिल
2: और
0: सितारों का
2: आज
0: आंगन जो है ये गाना
2: हमारे
0: प्ले कर रहे
2: गांव
0: हैं।
2: में तो आज वो उज्जैव नहीं बोलते, बाहर खाना बनाओ
0: अच्छा,
2: लगी
0: चलिए बहुत
2: तो
0: अच्छी बात है, आपसे बात करके अच्छा
2: ऐसा।
0: लगा। लीजिए सुनिए गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं और कौन से क्षेत्र से बात कर रहे हैं?
1: मैं आकाशवाणी इंदौर का वरिष्ठ श्रोता बोल रहा हूँ, पुराना
0: जी,
1: सुदामा नगर का अनिल भंडारी बोल रहा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, लाइव में सजीव
1: आपका
0: फोन इन
1: आपका
0: कार्यक्रम में।
1: पहली बार बात हो रही मेरी आपसे।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। मैं अगर आपसे पहली बार मुखातिब हूँ तो मैं बहुत बहुत नमस्कार भी एक बार फिर आप

0: ओ बताइए कौन सा गीत आप पसंद करेंगे सुनना?
1: कवि नीरज का याद कर रहे हैं।
0: अच्छा, ठीक है।
1: उनके पिक्चर से नई उम्र की नई फसल।
0: जी, फिल्म का नाम एक बार फिर बताइए।
1: नई उम्र की नई फसल।
0: नई उम्र की
1: नई फसल।
0: अच्छा, ये गीत हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए ढूंढ पाए। इसके अलावा भी अगर कोई गीत हो तो आप जरूर बताइए, कोई और फिल्म का।
1: एक कन्यादान का गाना सुना।
0: कन्यादान?
1: कन्यादान का
0: जी।
1: लिखे जो घर तुम्हें,
0: ये तो बड़ा ही सुंदर गीत है।
1: हाँ, ये बता देगा।
0: अच्छा, ये गीत आपको क्यों पसंद है? और आज जो संडे है, आज रविवार भी है, तो
1: छुट्टी का दिन है और
0: जी
1: हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं
0: जी,
1: लेकिन बारिश हमसे वो रूठ गए हैं।
0: हाँ, कभी कभी जो बारिश है या बादल देवता वो हमसे रूठ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है मौसमी परिवर्तनों में।
1: हम बहुत मना रहे हैं उनको।
0: जी,
1: लेकिन वो मान नहीं रहे।
0: अच्छा, आपके क्षेत्र में हरियाली किस तरीके की है? मतलब पेड़ पौधे ज्यादा हैं या कम हैं, कैसे हैं?
1: नहीं, हमारा आसपास बहुत पेड़ पौधे हैं।
0: अच्छा,
1: पानी इनको अब मिल नहीं रहा है तो थोड़ा मुरझा गए।
0: जी, और ऐसा नहीं लगता आपको कि पानी जो नहीं आ रहा है, बरस नहीं रहा है, बारिश नहीं हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम भी एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि पेड़ों की लगातार कटाई भी होती है और नए पौधे जो है वो कई बार हमारे द्वारा नहीं लगाए जाते, तो बादल जो है वो आच्छादित नहीं होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। कन्यादान फिल्म का ये जो गीत आपने पसंद किया है, मोहम्मद रफी की आवाज में ये है। जी, बिल्कुल बात है। और शंकर जय किशन ने इसका संगीत दिया है। और ये क्या गीत आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: कवि नीरज को।
0: कवि नीरज साहब को आप ये समर्पित करते हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए
1: एक बात और कहना आपसे।
0: जी बोलिए।
1: आप फरमाइशी कार्यक्रम में हमारे फरमाइश कर लाइए।
0: देखिए साहब, ऐसा है, होता है कि कई बार बहुत से पत्र होते हैं, कुछ पत्र छूट भी जाते हैं।
1: हमारे पत्र पहुँचते बराबर।
0: अच्छा, चलिए ठीक है। हम जो हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी हैं, उनके उनसे हम इस बारे में चर्चा जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका अगला कभी भी फरमाइशी पत्र हम शामिल कर पाए।
1: आप भी प्रयास करना थोड़ा।
0: जी, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा और आपके लिए हम सभी प्रयास करेंगे। आकाशवाणी हमेशा आपके लिए ही है और श्रोताओं के लिए ही है हमेशा। जी बिल्कुल है, ये बड़ी अच्छी बात है।
1: 70 साल से सुन रहे कार्यक्रम को।
0: कितनी सुंदर बात है। और अभी हाल ही में हमने अपनी एक बहुत ही शानदार जयंती का आयोजन भी किया था आकाशवाणी इंदौर केंद्र में।
1: 71 साल हो गया।
0: बिल्कुल 71 साल हमने बनाए। और बड़ी सुंदर बात है। आपके लिए आपकी पसंद का ये गीत हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। आनंद पूर्वक सुनिए।

0: एमएच हॉटलाइन सजी फोन इन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर भी। सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: मैं सर बागनाथपुर गांव हूँ मेरा, और शिवपुरी जिला है
0: जी।
1: अभी मैं सबलगढ़ जिला मुरैना में सब जेल सबलगढ़ पर पदस्थ हूँ, पहली पद पर।
0: अच्छा अच्छा
1: जी, शिवम सिंह यादव नाम है मेरा।
0: जी शिवम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी सर,
0: तो बताइए आप सबसे पहले कि
1: कॉल कर रहा था सर, बड़ी मुश्किल से मिला है।
0: जी हाँ जी हाँ, बहुत सारे फोन कॉल्स होते हैं तो कई बार फोन नहीं लग पाते हैं और देर से भी फोन लगते हैं। तो बताइए सबसे पहले कि आप कौन से फिल्म का कौन सा गीत पसंद करेंगे?
1: जी सर, आप सुनवा दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का फिल्म का गाना है, रोते हुए आते
0: हैं। अच्छा अच्छा, इस गीत की फरमाइश के लिए कोई विशेष कारण या कोई ऐसा रीजन या कोई ऐसा ओकेजन या किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है?
1: सर इस फिल्म, इस जो गाना है ये, इसका जो है मैसेज बहुत अच्छा है इस गाने में, अगर कोई इसको ध्यान से सुने
0: जी
1: तो इसमें जो है बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है इस गाने में, और गाना तो अच्छा है।
0: बिल्कुल बात है, ये तो बात जरूर है कि किशोर कुमार के द्वारा गाया हुआ ये गीत है और अनजान ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी का संगीत भी इसमें दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा बताइए कि आप और आपके उस क्षेत्र में इस समय बारिश के क्या हाल है?
1: जी सर, बारिश तो थोड़ी सी हुई थी, एक दो बार हुई है, बारिश नहीं है अभी।
0: हाँ, बारिश को लेकर अभी
1: सूखा सा पड़ा हुआ।
0: सही बात है, हम बादलों से यही बार बार इंतजार करते हैं, उनसे प्रार्थनाएं करते हैं कि जल्दी बरस जाओ तो धरती को भी थोड़ा सुकून मिले।
1: जी
0: जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और
1: मैं थोड़ा सा एक मैसेज और देना चाहूँगा।
0: जी बताएं।
1: क्योंकि मैं जेल विभाग में सर्विस करता हूँ तो छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ, अपराध में लिप्त हो जाते हैं कम उम्र में, ना समझी में।
0: जी हाँ जी हाँ,
1: गलत संगत पकड़ लेते हैं, तो मेरा ये सभी श्रोताओं से भी निवेदन।

0: साधन है कि नशे से और गलत संगत से दूर रहें,
1: बिल्कुल,
0: और अच्छे जो है अपने विचार रखें।
1: जी हाँ, और इस संदर्भ में हम हाँ, क्योंकि इस संदर्भ में हम आकाशवाणी के माध्यम से भी कई बार ऐसे कई कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं जो नशा मुक्ति अभियान से जुड़े होते हैं और समाज को, देश को इनसे मुक्त कराने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके लिए हम जारी कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, हेलो, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, हम विनय मंडी प्रायसन एमपी भोपाल से बोल रहे हैं सर।
0: जी, आपका शुभ नाम तो बताइए।
1: सर विनय कुमार बेनवंशी।
0: जी विनय जी, तो इस समय आप रायसेन से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो जुड़ने के लिए
1: जी
0: आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े इस कार्यक्रम के माध्यम से। और बताइए कि आप कौन सा गीत, कौन से फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी सर, सनम मूवी का गाना है, उसमें तेरे लबों पे हमेशा सनम का नाम रहे। जी
0: सनम फिल्म का गीत है।
1: सर,
0: अच्छा, और ये बताइए कि ये गीत आपको क्यों पसंद है और इस समय आप क्या मतलब करते क्या हैं, आपका प्रोफेशन क्या है?
1: हम इधर हाथी कंपनी है जॉब करते हैं, और रैपिडो ओला गाड़ी भी चला लेते हैं।
0: अच्छा,
1: जी
0: तो ओला गाड़ी पे चला रहे थे। इस समय रायसेन में जो मौसम है वो किस प्रकार का है, कैसा है?
1: सर, अभी कल बारिश हुई थी, आज तो मौसम साफ है।
0: आज तो मौसम साफ है। अच्छा,
1: जी
0: सनम फिल्म के गाने के अलावा भी ऐसी कोई फिल्म है जो आपको पसंद हो?
1: हाँ, दूसरे मूवी का सुना दीजिए सर,
0: जी बताइए।
1: ये जान तेरे नाम का।
0: जान तेरे नाम, ये बड़ी ही सुंदर फिल्म थी और इसके गीत भी काफ़ी अच्छे थे। बताएंगे आप कि ये फिल्म, इस फिल्म में कौन कौन से किरदार थे या कौन अभिनेता अभिनेत्री थे?
1: सर ये तो आइडिया नहीं सर।
0: अच्छा, ये आपको पता नहीं है। इस फिल्म का कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे?
1: जी कल कॉलेज बंद हो जाएगा।
0: अच्छा, कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तो आप भी कॉलेज जाते हैं?
1: नहीं सर, कॉलेज तो अब नहीं जाते।
0: कॉलेज अब नहीं जाते हैं आप?
1: हाँ
0: अच्छा, तो ये जो गीत है ये उदित नारायण के द्वारा गाया हुआ गीत है और नवाब आरजू की इसमें बोल हैं। आपकी पसंद का ये जो गीत है हम आपको ज़रूर सुनवाते हैं। इसके अलावा आप कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो सुनते हैं हमारे आकाशवाणी से?
1: जैसे टाइम मिलता है सर, तो यही मॉर्निंग वाला मेरे को ज्यादा पसंद आता है सर।
0: अच्छा, इसके अलावा ऐसे कोई कार्यक्रम आप नहीं सुनते जिसमें थोड़ा सा ज्ञान विज्ञान और कुछ और भी जानकारियाँ शामिल होती हैं?
1: जी थोड़ा टाइम कम मिल पाता है सर।
0: थोड़ा टाइम आपको कम मिल पाता है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन आप हमारे कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं जैसे कि हम साइबर क्राइम को लेकर के कार्यक्रम करते हैं और सावधानियों को लेकर कार्यक्रम करते हैं, अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं, तो उन्हें भी सुनना करें और उनमें भी आप अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दिया करें, है ना? चलिए ठीक है, आपकी पसंद का ये गीत सुनिए।

0: हेलो
1: मनीष जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, जी जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: और मनीष जी, आपके इस नंबर पे इशू आ रहा है, मेरा रेडियो बंद है फिर भी मुझे डिस्टरबेंस मिल रहा है।
0: क्या आप इस समय मोबाइल एप्लीकेशन पर सुन रहे हैं हमारा रेडियो?
1: नहीं नहीं सर, मैं तो रेडियो पर सुनता हूँ, मऊ में तो आसानी से रेडियो पर आ जाता है।
0: जी जी,
1: तो रेडियो पर सुन रहा हूँ, ये नंबर में ही कुछ इशू है मनीष जी।
0: हो सकता है ऐसा, कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। जी
1: तो सर कल 18 तारीख थी और राज खन्ना जी का मतलब पुण्यतिथि थी उनकी।
0: जी,
1: और भूपेंद्र जी की भी पुण्यतिथि थी, तो दोनों को श्रद्धांजलि देते हुए
0: जी
1: मुझे आप सुनवा दें फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की एक गजल है, निदा फाजिल साहब ने लिखी है और गाने है भूपेंद्र जी की आवाज है, गाने के बोल है
0: जी।
1: कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता,
0: यानी फिल्म का नाम ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्म है
1: जी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छे गिटारिस्ट थे और काफी इन्होंने फिल्मी गीतों में गिटार बजाई है, जैसे छुरा लिया है तुमने दिल को और चिंगारी को, ये सर के दम मारो दम बॉस ऐसे गाने हैं जिनमें इन्होंने गिटार बजाया।
0: जी जी बिल्कुल है, बड़ी अच्छी बात है कि आप, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप संगीत की काफी अच्छी आपको समझ भी है और काफी अच्छा ज्ञान भी है, काफी अध्ययन है आपका।
1: मैंने संगीत सीखा हुआ है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ गुनगुना के सुनाइए हमारे तमाम श्रोताओं को।

0: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता,
1: बहुत बड़ी बहुत सुंदर बात है। हमने आपका जो ये गज़ल है, निदा फाजली साहब के लिखे हुए कलाम है, नज़में हैं, ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता का है, भूपिंदर जी की आवाज़ है।
2: जी मनीष जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और पहली बार आपसे बात हुई है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी होती रहेगी।
1: जी बिल्कुल, हम आकाशवाणी के माध्यम से हमेशा अपने श्रोताओं से, आप सभी से जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आपका प्रतिसाद मिलता है।
2: आप बहुत कमाते हैं इस प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके लिए हम यहाँ से जारी करते हैं आपका ये गीत, ये गजल सुनिएगा।
2: धन्यवाद, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी। हेलो
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: जी। नंदिनी जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: हम सागर से जी,
0: सागर से बात कर रहे हैं? उतरे से बात कर रहे हैं आप?
1: हम भी यहाँ इधर से बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, इधर से बात कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। नंदिनी जी, क्या कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगी?
1: आज सॉन्ग सुनूंगी मैं, उसी का नाम है गब्बर इज बैक।
0: गब्बर इज बैक।
1: जी
0: ओके,
1: जी
0: चलिए अच्छी बात है। ये हम कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए गीत आपको सुनवा पाएं। इसके अलावा यदि कोई और भी फिल्म हो तो वो भी बताइए।
1: जी तो फिर भारत
0: भारत।
1: जी। वैसे
0: अच्छा
1: मेरी दीदी का कॉल आया था कॉल करने के लिए, इसलिए मैंने कॉल किया है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा आपकी दीदी का कॉल था इसलिए आपने कॉल किया। भारत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगी?
1: स्लो मोशन सॉन्ग है और जिनका फर्स्ट कॉल लगा था वही मेरी दीदी है।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी श्रोताओं हमें याद करते हैं और कॉल करते हैं समय की, क्योंकि हमारे पास आज अब तो पाबंदी हो चली है और समय हो चला है, तो हम ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये
1: जी
0: गीत।
1: सर, गाना डेडिकेट चांदी को रात को।
0: अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इसी तरह
1: जी,
0: जुड़ते रहिए आप हमेशा आकाशवाणी इंदौर से, और भी
1: आपका
0: प्रोग्राम्स
1: नाम
0: आप
1: क्या है?
0: सुने। आपके रेडियो दोस्त का नाम है मनीष कुमार सोनी
1: ओके ओके, थैंक यू।
0: जी। सुनिए गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। अब इजाजत दीजिए आपके रेडियो दोस्त मनीष कुमार सोनी को, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

एमएच हॉटलाइन, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। और कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। हर बात होती है अधूरी, हर ख्याल होता है अधूरा। जब हम बैठते हैं आपको ख्याल करके, शायद अब बात हो पूरी और मुकम्मल हो हर ख्याल। इतने में ही मुलाकात हो जाती है आपसे। चलिए इसी सिलसिले को शुरू करते हैं। आज हम कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में, मैं हूं आपकी रेडियो मित्र श्वेता। तो सभी को मेरा नमस्कार। आप अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं हमें इन नंबरों पर फोन करके। हमारा नंबर है 2660902। भोपाल के बाहर श्रोता साथी एसटीडी कोड 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपसे, आपके फोन कॉल का। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार।
2: जी दीदी नमस्ते।
1: हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी हम तक बहुत कम में, लो साउंड में पहुंच रही है। थोड़ा सा आप नेटवर्क में आकर बोलिए प्रॉपर रूप से।
2: जी एक मिनट। हेलो। जी दीदी नमस्ते।
1: जी नमस्ते
2: दीदी, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, आपका नाम फिर से बताएंगे। बेटा सिंह यादव।
2: वही दीदी, वो तो फिलहाल नेटवर्क तो मेरे गांव में ही गड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नेटवर्क नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा चलिए, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: जी दीदी राजा फिल्म का सुनना चाह रहे हैं। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा।
1: जी बड़ा प्यारा सा गीत है ये। बताइए आप क्या करते हैं?
2: जी दीदी वैसे तो फिलहाल खेती किसानी का काम करता हूँ, धान की फसल लग रही है।
1: अच्छा जी, और ये जो मौसम चल रहा है आपको लगता है अनुकूल है अभी आप जो फसल लगाएंगे उसके लिए?
2: सही है मौसम जो भी है, थोड़ा उमस भरी, जब बारिश निकल जाती है तो गर्मी थोड़ा उमस भरी जाती
1: है। वही वही वही बिल्कुल। अभी कौन सी फसल आप लगा रहे हैं? अभी कौन सी फसल आप लगाएंगे खेत में?
2: देखो धान की फसल तो लग रही है और जी, उसके बाद में तिली बोते हैं, बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं और
1: जी,
2: अरहर की जो भी है वो भी लगाते हैं।
1: जी जी जी बहुत बढ़िया है ना। और हम यही कामना करेंगे कि बारिश अच्छी हो और मौसम अनुकूल रहे जो आप अपनी फसल उगा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हम सभी देशवासियों के लिए, है ना?
2: बिल्कुल
1: जी, इसके लिए हम आभार

रहेंगे आपके, क्योंकि आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं हम सभी के लिए। तो आपने फ़ोन किया इस कार्यक्रम में, हमें खुशी हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते

0: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। हेलो
1: जी नमस्ते,
0: बताएं।
1: मैं मंदसौर से बोल रही हूँ, अंजुम परवीन।
0: अंजुम परवीन, आप बात कर रही हैं मंदसौर से।
1: जी
0: जी, तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्मों का नाम है सूर्या,
0: हाँ
1: मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी फता नहीं, ये वाला।
0: अच्छा। और एक और मूवी का नाम बता दीजिए आप, जो आपकी पसंद की हो।
1: जी एक और है, वक्त की आवाज है ना,
0: हाँ जी
1: वक्त की आवाज।
0: हाँ।
1: तुझी बेकरार, वे भी बेकरार।
0: कौन सी फिल्म का गाना है ये? अच्छा, वक्त की आवाज। तो बताइए
1: जी
0: आप क्या देखती हैं? फिल्मों का शौक है, गीत संगीत का शौक है आपको?
1: फिल्मों का भी है, गाने सुनने का भी है। जी
0: आप गा रही हैं उसी से मुझे लग रहा
1: नहीं,
0: है। हाँ। और मतलब पुरानी फिल्मों का शौक है या नई फिल्में भी देखती हैं?
1: नई का तो नहीं, पुरानी देखती। जी
0: अच्छा, अच्छी लगती है आपको? हाँ
1: टीवी
0: चलिए।
1: में आती रहती है, देख लेती हूँ।
0: हाँ चलिए, तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं
1: जी
0: आपकी पसंद
1: शुक्रिया।
0: का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो।
0: हाँ, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। नमस्ते।
1: जी, नमस्कार बहन जी, नमस्कार।
0: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
1: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: मांगीलाल चंदेल जी, है ना?
1: जी
0: आप हमारे,
1: हाँ बहन जी, आपका शुभ नाम।
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ। और
1: अच्छा,
0: जी
1: श्वेता
0: जी जी और
1: जी
0: आप तो
1: जी
0: हमारे जाने पहचाने श्रोता हैं।
1: हाँ बहन जी, बिल्कुल, मैंने अभी आपको पहचान
0: जी,
1: लिया
0: आपकी जगह का
1: जी।
0: नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना,
0: जी
1: मध्य प्रदेश से हमारी का भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन
0: जी
1: जी।
0: तो स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन से फिल्म का गीत
1: जी
0: सुनना चाहेंगे?
1: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा फागुन,
0: फागुन का जी।
1: और गाने के बोल रहेंगे बरसो रे बैरी बदरवा बरसो रे।
0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपने पसंद किया है। ये पुरानी फिल्म
1: जी
0: फागुन का गीत है ना?
1: हाँ, पुरानी।

0: क्या करते हैं आप?
1: बहन जी, हम किसान हैं, तो अभी हमने मक्का, सोयाबीन, मतलब खरीफ की फसल है लगाई हुई है, और 10-12 रोज से बारिश नहीं हो रही, तो ये मान लीजिए हमारी फसलें बिल्कुल मुरझा रही है राम के मारे। बारिश का इंतजार है हमको, ना फसल को और हमको क्या, वो तो सभी को है बारिश का
0: सभी को
1: इंतजार तो।
0: इंतजार, सही बात है, क्योंकि
1: जी
0: अभी अगर भरपूर पानी बरसेगा तो फसल भी अच्छी
1: जी
0: होगी, और फसल अच्छी
1: अच्छी होगी
0: होगी
1: बहन जी,
0: तो
1: जी
0: जाहिर सी बात है,
1: सही बात
0: हम जो खाना
1: है।
0: खाते हैं हम अपनी थाली में, तो हमें अच्छा खाना मिलेगा, भरपूर खाना मिलेगा।
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: तो ये तो बहुत ज़रूरी है, और हम आशा यही करते हैं भक्से भी कि बहुत अच्छे से पानी बरसे।
1: सभी
0: हाँ
1: को आशा लगी हुई है कि कब
0: जी जी
1: बारिश हो जाए।
0: हाँ, जी। तो खेती किसानी के साथ साथ आप हमारे गाने भी सुनते हैं?
1: हाँ बहन जी, खेती किसानी के साथ साथ मैं रेडियो भी सुनता हूँ, और आप जी मान लीजिए मैं रेडियो को कब से सुन रहा हूँ, सन 1980 से सुनता आ रहा हूँ, बहुत
0: जी
1: पुराना लिसनर हूँ। और
0: हाँ
1: मुझे सबसे ज्यादा ये तो प्रोग्राम क्या है, ठीक है फोन इन
0: जी
1: है ही, इसमें क्या है कि अपने सुन हमको अपने मन पसंद गाने सुनने को मिल जाते हैं, और दूसरी बात क्या है कि मैं खेती किसानी से यो आकाश अपनी भोपाल भाई, इंदौर, जबलपुर, कहीं से भी मैं उसको बहुत ज्यादा सुनता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं
0: बहुत,
1: उसी आधार से खेती
0: हाँ
1: करता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो आपने
1: जी
0: फोन किया और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा
1: बहन
0: लगा।
1: जी, कुछ दो चार मित्रों को याद कर सकता हूँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल बताएं।
1: मनकारी से हमारे मित्र फूलचंद पाल जी, दिनकर सिंह जी है चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी है, प्रेमदास बाबा जी हैं,
0: जी
1: और हमारे मित्र केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम
0: जी
1: बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, गजराज सिंह लोधी जी हैं, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा बहन जी।
0: जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने फोन किया और अपने सारे मित्रों का नाम भी बताया, है ना?
1: जी
0: तो उन सभी को मेरा नमस्कार, और
1: जी
0: आपने
1: जी
0: फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद आपको।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका। नमस्कार, बताएं नाम आपका।
1: मैं रानू बोल रही हूँ।
0: हाँ जी,
1: हाँ रानू बात कर रही हूँ, देवास से।
0: देवास से आप गुप्ता, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और
1: आपने गाना सुना है, मूवी का नाम है,
0: बताएं।
1: मूवी का नाम है मुस्कान और गाने के बोल हैं जाने वन
0: सितारे। मुस्कान ना,
1: वाला सॉन्ग चलाइएगा आप। मिल गया हम सॉन्ग चुपके चुपके।
0: हाँ ठीक है। और रानू जी, आप हमारी पुरानी श्रोता हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके।
1: आप
0: और
1: कौन
0: बहुत
1: बोल
0: सारे, सुनिए ना, बहुत सारे श्रोता हैं, उनसे भी बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए। बस हम आपसे ये कहेंगे कि थोड़ा सा 10 दिनों का अंतराल रखें फोन कॉल करने में, तो हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करके, है ना। आप ही नहीं, बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए आपने फोन किया आज, हमें बहुत अच्छा लगा, हमें, है ना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी, नमस्कार।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके, तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में स्वागत है आपका। नमस्कार।
1: जी नमस्कार मैडम जी, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: जी तो आपका स्वागत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में।
1: मैंने
0: तो
1: एक छोटी सी एक निवेदन करना चाहता हूँ, मतलब
0: जी
1: बोलना चाहता हूँ कि
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: अभी 15-20 दिन पहले लगाया था, उसके बाद मैंने गुरुवार को लगाया था तो मेरे आधार कार्ड, ऐसा क्यों? अगर नहीं करना हो तो मना कर दिया करो, का नहीं
0: जी
1: करो।
0: जी जी मतलब क्या क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाई। आपने फोन लगाया था
1: जी, बिल्कुल
0: फिर
1: बिल्कुल।
0: आपका फोन शामिल नहीं हो पाया।
1: नहीं, कल शामिल नहीं हुआ था, मैंने परसों के दिन यानी कि गुरुवार को लगाया था।
0: अच्छा, कई बार क्या हो जाता है ना जी। देखिए,
1: जी
0: हम सारे कॉल आप हमारे लिए बहुत खास हैं, सभी श्रोता साथी, है ना।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: कई
1: बिल्कुल
0: बार क्या
1: बिल्कुल
0: हो जाता है कि जैसे कि हमने 8 कॉल ले लिए या 8 गाने हो गए, तो हमारी एक
1: जी।
0: समय सीमा रहती है
1: हाँ
0: इस
1: जी,
0: वजह से।
1: हाँ
0: लेकिन देखिए, आज तो आपका कॉल भी शामिल हो गया और बिल्कुल कल आप सुनेंगे इस, है
1: जी।
0: ना।
1: और आप कैसे हो मैम, और आकाशवाणी टीम कैसी, क्या है?
0: बहुत अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं बताएं।
1: बस एकदम बढ़िया है, बस अब तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से एक बारिश हो जाए, अब तो बहुत दिन हो गए,
0: हाँ
1: एक
0: सही,
1: हफ्ता हो जाएगा लगभग अब तो, है ना?
0: हाँ, काफी
1: जी
0: थोड़ी उमस भी बढ़ रही है ना।
1: बिल्कुल, वही तो किसान भाइयों के लिए अभी वो मतलब नुकसान है ना, अभी फसल
0: हाँ
1: उगी हुई है, वो मुरझा रही है अभी, मतलब है ना
0: बिल्कुल,
1: पानी के
0: हाँ
1: बिना फसल।
0: सही। कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे।
1: जी फिल्म में वो मिल जाएगी, सब कुशल मंगल है।
0: हाँ जी सब,
1: फिल्म है
0: हाँ
1: कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है।
0: अच्छा, एक और मूवी का नाम बता दीजिए जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ
1: माशुक मिल जाएगी, माशुक
0: हाँ जी मिल जाएगी।
1: माशुक।
0: बिल्कुल, तो आपने देखिए फोन किया, हमें बात करके अच्छा लगा, और कल दिन में 11 बजे से आप
1: जी,
0: सुनेंगे
1: इसी का
0: हमारा।
1: एक गाना गाना तो बता सकता हूँ
0: हाँ
1: मैं,
0: बिल्कुल, माशूक फिल्म का गाना बताएं।
1: कौन है जो दिल में समाया जाता है, पहली नजर में अपना बनाया जाता है, इसमें का एक गाना है उसी में, माशूक में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाएंगे हम आपको, है ना।
1: जी
0: तो
1: जी
0: आपने फोन किया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत
0: नमस्कार
1: धन्यवाद जी
0: नमस्कार।
1: मैम।

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने में स्वागत है आपका। नाम बताएं।
1: बिल्कुल, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन से फिल्म का
1: बहुत
0: गीत?
1: बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम।
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि श्वेता सिंह बोल रही हूँ।
0: जी, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल श्वेता जी, कैसा है, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताएं?
1: हम बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपका मौसम भोपाल में कैसा है? पानी यानी गिर रहा कि नहीं?
0: नहीं, गिर रहा है यहाँ पर पानी।
1: हाँ, हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में पानी गिर रहा है, अभी कल गिरा
0: अच्छा
1: है, आज भी गिर रहा है।
0: अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छा है, वो बारिश इधर भी आ जाए।
1: जी जी जी जी
0: बिल्कुल। और कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: श्वेता जी, फिल्म का नाम है प्यार भरा दिल, और गीत
0: और
1: के बोल हैं कि बन के किताब तेरी तेरे। जी
0: आप ऐसे ही हमें फोन करते रहिए,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी जी बिल्कुल,
0: नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने। मैं
1: हेलो,
0: स्वागत है आपका। जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम गुरजी कला से राजकुमार नखेरा बोल रहा हूँ।
0: राजकुमार,
1: जी,
0: पूरा नाम बताएं। राजकुमार नखेरा।
1: राजकुमार लखेरा, गुरजी कला।
0: जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी ठीक
0: कैसे हैं आप?
1: है दीदी।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे बताएं।
1: फिल्म
0: हाँ जी,
1: आया सावन झूम के। मैं
0: क्या करते हैं आप?
1: सिलाई काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो काम के साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं?
1: जी मैडम जी, रेडियो तो सुनते ही रहते, अब लगा ही रहता है दिन भर।
0: अच्छा, तो इसमें कौन सा गाना सुनना है आपको, आया सावन झूम के में?
1: इसमें कोई जो सावन से संबंधित हो
0: हाँ
1: उसी को।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: और इसी तरह आप हमारी कार्यक्रमों को सुनते रहिए। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। तो अब मुझे दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त श्वेता को। नमस्कार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संग्रहालय से कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे 12:30 पर। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम होगा, 1:30 पर लोक संगीत, सुगम संगीत आप तक पहुंचाएंगे 1:45 तक। सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज भोपाल के जगदीशपुर में हो रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का त्याग और राष्ट्र प्रेम प्रत्येक भारतीय को मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वाभिमान का संदेश देता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चयन प्रक्रिया में बदलाव की मांग करते हुए आग्रह किया है कि परीक्षा केंद्र चयन के लिए राज्य के बजाय पसंदीदा शहर चुनने का विकल्प पुनः उपलब्ध कराया जाए। मौसम विभाग की तरफ से जारी खराब मौसम की चेतावनी के बीच अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ और श्री माता वैष्णो देवी यात्राओं को कुछ समय

0: के लिए रोक दिया है। और फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज रात 12:30 से अर्जेंटीना और स्पेन के न्यूयॉर्क के बीच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इंग्लैंड ने तीसरे स्थान के मुकाबले में फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी पसंद के फिल्मी गाने लेकर हम आप हाजिर हैं और सबसे पहले इन श्रोताओं की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। आंबेडकर चौक खुरई से हमारे श्रोता हैं राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन, छोटू, डुंडन और उनके परिवार के सदस्य। सिंहपुर बड़ा के हमारे श्रोता हैं राजेश नेमा। इसके साथ ही एक और श्रोता की चिट्ठी हमारे पास है और ये हैं राजपुर से घिसू दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अजिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। इन सब की पसंद पर हम आप तक पहुंचाते हैं उदित नारायण और चित्रा की मिलीजुली आवाज़ों में रंगीला फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत ए आर रहमान का है।

ए आर रहमान का संगीतबद्ध किया हुआ एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म का नाम है बॉम्बे, आवाज़ें हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत को सुनना चाहते हैं भड़भूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश के श्रोता रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, आयुष और ओम प्रकाश, योगेश कुमार चौरसिया, श्रीमती संगीता चौरसिया। आप हमें पत्र लिखते हैं इसी गीत को सुनने के लिए गोटेगांव से, और गौरीनगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हम आप तक पहुंचाते हैं बॉम्बे फिल्म का ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। नवाब आरजू ने इसे लिखा है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, फिल्म का नाम हम सब चोर हैं। गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, बेरडी से हमारे श्रोता हैं हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें चिट्ठी लिखी है हरदेव मीका, बलविंदर बिरख, जयतेग बिरख और मीका बिरख ने, और इसी गीत को पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा के हमारे श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आपकी फरमाइश पर यह गीत आप तक पहुंचाते हैं, फिल्म का नाम हम सब चोर हैं।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम पेश कर रहे हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली, संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नया बाजार बिछिया से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं साजन की बाहों में फिल्म का गीत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत।

साजन की बाहों में फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का चौथा भाग।

0: अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं। वृक वन में एक अपरिचित उनसे उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर चला जाता है। नीलमणि घायल अवस्था में आचार्य नागदत्त के सेवाश्रम में पहुंच जाता है, जहां उसका उपचार होने लगता है। राजा गांव पैठार पहुंचते हैं, जहां के भोले भाले ग्रामीण उनसे महादेव शंकर के किरात रूप की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं।
1: अवंती की कड़वी मीठी स्मृतियों के साथ राजा भर्तृहरि अभी राजधानी से 30 कोस दूर वनांचल के उसी गांव में हैं, जहां वो भटकते हुए पिछली रात पहुंचे थे। कोई भी ये नहीं चिन्हता कि वो अवंती नरेश राजा भर्तृहरि हैं। वनवासियों ने पहले उन्हें प्रेत समझा, और जब ये जाना कि वो एक रात भयानक वृकवन में व्यतीत करके यहां तक पहुंचे हैं, तो भोले भाले ग्रामीण जनों ने उन्हें एक दिव्य पुरुष देवता की प्रतिष्ठा दे दी। गूढ़ छद्मवेशी नरेश ग्रामीणों के आराध्य बन गए थे। वही मान सम्मान, उसी तरह उनसे शुभ की अपेक्षा और उनकी अभ्यर्थना। बालक वृंद गांव में मुनादी करता है कि देवता किरात कथा कहेंगे। तभी वृंदा वीरभद्र का परिचय कराती हैं कि ये वीरभद्र हैं, इस ग्राम के ग्रामीणी और सभी के पितृतुल्य, संरक्षक और अभिभावक।
2: प्रणाम करता हूं देव।
3: महाकाल आपकी रक्षा करे।
2: हमारे पूर्वजों का पुण्य उदय हुआ महाराज, कि आपने अपनी चरण धूलि से इस गांव को पवित्र किया है। हम वनवासी आपके सत्कार के योग्य नहीं है महाराज, अकिंचन भला क्या कर पाएंगे आपकी सेवा।
3: मैं इसका पात्र नहीं हूं भद्र।
2: ऐसा न कहें आर्य, आपके शुभागमन से पूर्व अंचल में धाराधार वृष्टि हुई है, क्या ये आपके पधारने का संकेत नहीं था? समृद्धि और सुख का प्राकृतिक संकेत है प्रभु।
3: निष्कलुष भावनाएं अपनी मूर्तियां सहज ही गढ़ लेती हैं वीरभद्र।
2: वृंदा बहू ने बताया है कि आप महादेव शंकर के किरात रूप की कथा सुनाएंगे, हम इसीलिए यहाँ एकत्र हुए हैं। कथा श्रवण के पश्चात ही हम लोग आहार ग्रहण करेंगे। देव हमें कथा प्रसाद देने की कृपा करें।
1: भर्तृहरि असहाय से किसी अदृश्य के इंगित पर एक नई काया, नई भूमिका में प्रवेश करते जा रहे थे। पीछे कहीं छूट गई राजधानी अवंतिका के दैनिक क्रम में ये उनके आमोद प्रमोद का समय है। वो इसे काव्यशास्त्र के विनोद या नृत्य संगीत में व्यतीत करते हैं। कभी कभार इस क्रम में राजकीय कारणों से ही परिवर्तन होता है, जैसे किसी सामान्य अतिथि का आगमन, राज्य दायित्व के लिए उत्पन्न कोई आकस्मिक परिस्थिति, दस्यु दल का उत्पात या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में नरेश की उपस्थिति। महामात्य वो प्राचीर हैं ही जो किसी भी झंझावात को नरेश तक पहुंचने के पूर्व रोक लें। भर्तृहरि ने नेत्र बंद कर देवाधिदेव का ध्यान किया।

0: चतवर पर स्तब्धता छा जाती है। मात्र लौ बनाए रखने के लिए जलती हुई वसा की चटपटाहट और वटपत्रों की पटपट ही मुखर हो रही है। भर्तृहरि की वाणी में जाने कहां से कोई पवित्र गंभीरता आ जाती है। वो कहते हैं,
1: देवियों और सज्जनों, भगवान भूत भावन के प्रसाद से मैं उस कथा को कहने का साहस कर रहा हूं जिसमें यथोचित गति नहीं है मेरी। देवी वृंदा का आग्रह, आप सभी की उत्सुकता, अनुग्रह, तपस्थली सा ये वन प्रांतर और तीर्थ जैसा ये पवित्र चत्वर, सभी कुछ पुण्य कथा कहने और सुनने का संयोग उपस्थित करता है। कृपया श्रवण करें। ये उस समय की बात है जब पराक्रमी पांडव गंधमादन पर्वत पर स्वाध्याय में समय बिताते हुए श्वेत वाहन अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो इंद्र के आमंत्रण पर कई दिनों पूर्व इंद्रलोक गए हुए थे। तभी इंद्र के सारथी मातली द्वारा संचालित हरे रंग के अश्वों से जुता देवराज इंद्र का रथ प्रकट हुआ, जिसमें किरीटधारी अर्जुन स्पष्ट दिखाई दे रहे। अर्जुन को उतारकर अभिनंदित मातली स्वर्गलोक वापस हो गए। दूसरे दिवस प्रातःकाल अंतरिक्ष में देवों के वाद्यों की तुमल ध्वनि

0: उस समय रथ के पहियों की घरघराहट, घंटानाद, सूर्प मृग और पक्षियों के कोलाहल सब पृथक पृथक सुनाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर में हरे रंगों के घोड़ों से जुते मेघ गर्जन करने वाले रथ पर आरूढ़ इंद्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने विनयावनत खड़े युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से कहा कि अर्जुन ने उनका अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न किया है, इसलिए देवराज ने प्रसन्न होकर वर दिया कि पांडव अपने प्राप्य का उपयोग करते हुए पृथ्वी पर शासन करेंगे। देवराज इंद्र के जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमने देवराज का कौन सा प्रिय कार्य किया है? तो अर्जुन ने जो बताया वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। इंद्र की प्रेरणा से दिव्यास्त्र प्राप्त करने की कामना में अर्जुन तप करने के लिए काम्यक वन से चलकर भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे। मार्ग में उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने पूछा, कुंती नंदन सच सच बताओ, तुम्हारे गमन का उद्देश्य क्या है?
1: अर्जुन ने बताया कि महादेव शिव से पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है।
0: ब्राह्मण ने अर्जुन को तपस्या का आश्रय लेने का मार्ग बताया। मनोरथ सिद्ध करने का यही उचित मार्ग है। इस प्रकार विप्र के निर्देश को शिरोधार्य करके अर्जुन हिमालय पर्वत पर चढ़कर तपस्या में लीन हो गए। दिन पर दिन व्यतीत होने लगे। इस प्रकार 5 महीने निकल गए। एक दिन अर्जुन के निकट एक वन्य शूकर प्रकट हुआ, जो अपने थूथन से पृथ्वी पर प्रहार करता और पैरों और दांतों से उसे खोद रहा था। शूकर के पीछे पीछे एक किरात वेशी महान दर्शनीय पुरुष भी आ रहा था, जो शूकर पर लक्ष्य साधने की मुद्रा में था। उसके साथ अनेक स्त्रियां भी थीं। अर्जुन ने आक्रमण के लिए उद्यत पशु पर बाण से प्रहार किया, साथ ही किरात ने भी अपना तीर शूकर पर छोड़ा, जो उसे भेद गया। किरात ने कहा,
2: बस यह शूकर मेरा लक्ष्य बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियमों को तोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया? मुझे तुम्हारा दर्प तोड़ना ही पड़ेगा। बस
0: ये कहते हुए किरात ने बाणों की वर्षा करके अर्जुन को ढक दिया। अर्जुन ने भी अग्निमुखी अभिमंत्रित बाणों से सटीक प्रत्युत्तर दिया। किरात शस्त्र रूपों में प्रकट हुआ। अर्जुन ने सभी रूपों पर बाण बरसाए। फिर किरात के शस्त्र रूप मिलकर एक हो गए। अर्जुन ने उस पर भी बाण चलाए। अब किरात ने माया युद्ध आरंभ कर दिया। कभी उसका शरीर छोटा हो जाता, कभी विशाल, कभी लुप्त होकर प्रकट होता, तो कभी यहां वहां दृष्टिगोचर होने लगता। अर्जुन ने अपने प्रहार नहीं रोके। अंत में किरात अपने सहज शरीर में सामने था। तब कुंती पुत्र ने महान वायव्यास्त्र का संधान किया।
2: देखा बस, यह भी मुझ पर निष्प्रभावी रहा है।
0: अर्जुन ने क्षुब्ध होकर अपने सभी सुविख्यात शस्त्रों, तारुणास्त्र, शालभास्त्र, वर्षास्त्र आदि का भीषण प्रहार किरात पर किया।
2: हे अर्जुन, तेरे ये सभी शस्त्र मुझ पर अप्रभावित हैं।
0: अर्जुन का आत्माभिमान और दर्प छार छार हो रहा था। उनकी युक्तियां और अस्त्र दोनों ही उस अज्ञात किरात के सम्मुख व्यर्थ हो रहे थे। तब झुंझलाए हुए अर्जुन ने अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अपने तेज से दिशाओं को विदग्ध करता हुआ वो अस्त्र अत्यंत तीव्रता से प्रभु विष्णु किरात की ओर चला। आकाश प्रज्वलित हो उठा, हवाएं ठहर गई।
2: किंतु अर्जुन देख, मैंने तेरे इस महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया है।
0: अब उद्भट अर्जुन और किरात में मल्ल युद्ध होने लगा। कुंती पुत्र विवश था, थकान से निश्चेष्ट होकर वो गिर पड़ा और वो प्रबल किरात हंसकर देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गया।

0: देवियों और सज्जनों, वास्तव में वो भगवान शंकर थे। माहेश्वर ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप ग्रहण किया था। नमोस्तु काल रुद्राय काल रूपाय ते नमः। अर्जुन ने जब चैतन्य होकर शीश उठाया तो उमा सहित साक्षात वृषभध्वज को सामने पाया। आश्चर्यचकित अर्जुन से वे कह रहे थे,
1: हे परमता, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हुआ। वास्तव में तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करने के पात्र हो। अपनी इच्छा प्रकट करो बस। अमरत्व के अतिरिक्त जो भी चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा।
0: अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं देवों के दिव्यास्त्रों का ज्ञान पाने का अभिलाषी हूं।
1: हे पांडुपुत्र, मैं तुम्हें अपना महान पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूं। यह ऐसा विराट अस्त्र है

0: अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन ने उस दिशा में उन्हें नमन करके उनको विदाई दी। देवियों और सज्जनों, किरात कथा का यहां समापन होता है। बोलो भगवान महाकाल की जय।
1: महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अनुमति है?
2: भर्तृहरि ने आंखें खोल प्रश्नकर्ता को देखा। भर्तृहरि ने शांत स्वर में पूछा,
0: बंधु वीरभद्र, क्या तुम मुझे सर्वज्ञाता मान बैठे हो? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर मेरे पास भी नहीं।
1: आप तो देवता हैं महाराज।
0: मेरी ही भांति आप भी देवता हैं वीरभद्र। अच्छा, प्रश्न पूछो, यदि उत्तर जानता होऊंगा तो अवश्य अपना उत्तर दूंगा।
1: देवता, आपने अभी अभी बताया कि पाशुपत अस्त्र प्रदान करते समय किरात भगवान ने अर्जुन को वर्जित किया था कि वो इसका प्रयोग मनुष्यों पर ना करे, ठीक है ना देव?
0: वीरभद्र, कथा तो इसी प्रकार है।
1: हाँ देवता, ये अनिरुद्ध है, इस सांवले सलोने बालक को माता पिता ने यही नाम दिया था। तरुण होते होते ये गदा मुग्धर तीर कमान में प्रवीण होता गया। कथा में दुर्दांत शूकर की चर्चा हुई है। अनिरुद्ध उस तरह के शूकर को एक ही प्रहार में धराशायी कर सकता है।
3: काका, अब मुझे ही अपनी बात कहने दो। मैं ही हूं अनिरुद्ध। मैं कह रहा हूं कि हमारे ग्रामीण भी परंपरा से प्रबल धनुर्धर होते आए हैं, किंतु हमारी भी एक वर्जना है। एक ही तीर से शूकर या किसी हिंसक वृक या व्याघ्र को हम धराशायी कर देते हैं।
1: ये हमारी सामाजिक आन है प्रभु। पांडव ने तपस्या करके अस्त्र प्राप्त किए थे, उसी तप की परंपरा से हमें भी अपने शस्त्रास्त्र मिले थे। भील कोल किरात शबर हैं हम, वनवासी। ये धरती, ये खेत, ये वनस्पतियां हमें प्रकृति ने दी हैं। किसी नरेश महानरेश की कृपा से नहीं मिली हैं ये। किसी से कुछ मांगते नहीं हम।
3: राजा भर्तृहरि से भी नहीं। कभी कभी अचानक खेतों पर असंख्य टिड्डी दल उतर आता है। जीभ लप लपाते रक्त पिपासु भेड़िए हमें घेर लेते हैं। राजा के भट्ट और सैनिक आते हैं और गांव का सभी कुछ जीत जाता है। कुक्कुट मृणभांड गंदम छाछ लुट जाता है, भंडार रीत जाते हैं। क्या हमारे ग्रामजनों को अपने अस्त्र का प्रयोग हिंस्र पशुओं की तरह हिंस्र मनुष्यों पर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर के पाशुपत का विवेक और न्याय क्या कहता है देवता?
2: भर्तृहरि असहज हो रहे थे।
0: ओह, कितना कटु और दारुण है ये यथार्थ। भर्तृहरि, एक ओर राजधानी कनक श्रृंगा की सुरक्षा, सुविधा, व्यवस्था, व्यवसाय, ऐश्वर्य पूर्ण उत्सव, काव्य संगीत नृत्य के रंजन मनोरंजन, और इन दूरस्थ अंचलों में राजन्य राजकर्मियों की मर्यादा विहीन वंचकता, दुष्टता। किंतु राज्य तो व्यवस्था के लिए इन्हीं पर निर्भर है। जन असंगठित है, विभाजित, बिखरे हुए। तुम्हारा प्रश्न विचारणीय है अनिरुद्ध। मैं तुम्हारे क्षोभ का अनुभव कर पा रहा हूं। शास्त्र के साथ साथ लोकसम्मत निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, समस्या का भी और समाधान का भी।
3: उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है? नहीं है ना, या फिर है तो किंतु उसे व्यक्त करने से डरते हो, करना नहीं चाहते। अनिरुद्ध, तू व्यर्थ ही भटक रहा है, जबकि तू जानता है कि तुझे क्या करना चाहिए। मैं

0: ये कहकर नशे में डूबा अनिरुद्ध चला जाता है। सभा समाप्त हो जाती है। राजा भर्तृहरि चिंता में डूब जाते हैं। भोजन के पश्चात भर्तृहरि के शयन के लिए खटोलना बिछा दिया जाता है। वीरभद्र विनम्र स्वर में निवेदन करता है,
1: देव अनिरुद्ध की उद्दंडता से मन को बोझिल न होने दें। उसकी दृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूं।
2: नहीं नहीं वीरभद्र, ऐसा कुछ नहीं है। उसका व्यवहार तो सहज ही था, उसकी प्रश्नाकुलता का आक्रोश था जो अवसर पाकर फूट पड़ा। समाधान तो होना ही चाहिए।
1: उचित ही सोच रहे हैं आप। यथा समय मार्गदर्शन ना मिले तो शक्ति की कुंठा विध्वंसक अथवा आत्मविध्वंसक हो जाती है। उसमें नकारने और ध्वस्त करने का अंकुर जड़ पकड़ रहा है।
2: इसके लिए वो अकेला उत्तरदायी नहीं, परिवेश और परिस्थिति भी तो उन जड़ों को सींच रही है वीरभद्र। समय रहते यदि उपचार न हुआ तो ये अंकुर विषवृक्ष बनकर जीवन को आच्छादित कर लेगा।
1: हाँ, संतोष ही आक्रोश को जन्म देता है और ये आक्रोश मुक्ति के मार्ग में यहां वहां भटकता है। यथार्थ और वस्तु स्थिति से पलायन। महात्मन, आपने अभी देखा कि अनिरुद्ध सामान्य नहीं था। ये वो नहीं, उसके मुंह से मदिरा बोल रही थी।
2: किंतु ये तो हृदय में जमे हुए धुएं के निकालने का एक मार्ग था वीरभद्र।
1: मद सेवन हमारे समाज में वर्जित नहीं है देव, ये स्त्रियों में भी प्रचलन में है, किंतु पवित्र स्थलों और अनुष्ठानों में ये वर्जित है। अनिरुद्ध इस अनुशासन को तोड़ रहा था, अनजाने नहीं जानबूझकर। वस्तुतः वो विद्रोही है।
2: वीरभद्र, अनिरुद्ध ने कहा कि राज्य के सैनिक यहां आकर लूटपाट करते हैं।
1: हाँ।
2: तुम ग्राम प्रमुख हो, ये बात राजा तक पहुंचा सकते हो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया?
1: अवंती बहुत दूर है हम वनवासियों के लिए देवता।
2: इतनी दूर भी नहीं, 30 कोस ही तो है।
1: आप जैसे तपस्वियों की बात और है, आप करने की ठान ले तो राज्य क्या धरा उलट पुलट हो जाए। हमें तो भोगना है जैसे हमारे पूर्वजों ने भोगा, हमने भोगा, वृंदा और अनिरुद्ध ने भोगा।
2: क्या भोगा, क्या भोगा उन्होंने वीरभद्र, विस्तार से बताओ हमें।
1: महाराज, बीते वर्ष का वैशाख था देव, मेरे ही गांव पर दस्यु दल ने अन्न पशु के लिए आक्रमण किया। उसके प्रतिरोध में हमारे 2 युवक घायल हुए थे। तब यही अनिरुद्ध था जिसकी गदा का प्रहार न दस्यु झेल पा रहे थे ना उनके अश्व। अनिरुद्ध के कारण ही हम चौपाए बचावाने में सफल रहे थे महाराज।
2: निस्संदेह अनिरुद्ध की वीरता सराहने योग्य है।
1: हाँ महाराज, आहत दस्यु दल लौट तो गया, किंतु वो कभी भी अधिक वेग और अधिक क्रूरता पूर्वक टूट सकता था। हमने ग्राम त्यागने का विचार किया। घास, कांस, बांस की झोपड़ी, मिट्टी की मड़ियों और सूखे खेतों के सिवा हमारे पास था ही क्या आज छोड़ जाने को। किंतु इस सब के पश्चात भी ये राय बनी के पलायन से प्रतिरोध अधिक श्रेयस्कर है। प्रतिरोध कम से कम अगली पीढ़ियां हमें अपने पूर्वजों को कायर तो नहीं कहेंगी ना।
0: वीरभद्र का मुखमंडल आत्मदर्प से आलोकित हो रहा था।
2: हाँ हाँ मुखिया, कहते जाओ कहते जाओ, ताकि जान सकूं कि राजा भर्तृहरि किस किस संघर्ष पर असफल है।
1: नहीं महाराज, नहीं, राजा भर्तृहरि तो ये मान रहे हैं कि अवंती का पुण्य समृद्ध है, राजन्य राजसेवक संतुष्ट हैं। तो मैं अपने ग्राम के बारे में कह रहा था महाराज। दस्यु दल तो नहीं, तीसरे चौथे दिवस राज्य कर उगाने अश्वारोही राजकर्मी आ पहुंचे। हमने उन्हें राज प्रतिनिधि मानते हुए दुर्दिनों के लिए सहज कर रखा अन्न उनके सत्कार में लगाया, मदपान की इच्छा पूरी की और निवेदन किया कि अकाल की साल में जीवन बचाए रखना ही कठिन है, राज्य बलि भरने की सामर्थ्य ही कहाँ बचती है। मैंने अपने श्रम से और अपनी धरती माता के प्रसाद से घास तृण बांस मिट्टी पत्थर आदि लेकर यह ग्रह बनाया, तो इस पर कर दूं क्यों? क्या राजा इतने विशाल महलों व उसके राजन्य इतने बड़े सुविधापूर्ण भवनों का कर देते हैं?
0: वनवासियों से कभी अंबर सारी नहीं उगाही गई थी। वीरभद्र की असमर्थता जानकर भी राज्य दल अगले दिन के लिए गांव में रुक गया।
1: हम सब इस बड़े दल का आतिथ्य भार उठाने में भी असमर्थ थे। मैंने स्वयं ही उनसे अपनी विवशता व्यक्त की थी, तो कुछ अश्वरोही मृगादि के आखेट हेतु हाँका लगाने गांव के युवकों को साथ ले वन की ओर चले गए। बस तभी राज सेवकों की अधमता प्रकट हुई। गर्भवती वृंदा के साथ कुछ किशोरियां शौच स्नान आदि के लिए पयस्विनी की ओर गई हुई थी कि कुछ अश्वारोहियों ने उन्हें घेर लिया। देव, वृंदा सात माह का गर्भ लिए कोस भर भागी महाराज, उसका गर्भ खंडित हो गया।
2: ओह, क्या क्या घटता है मेरे राज्य में। महेश्वर सब ठीक करेंगे वीरभद्र, और जो संभव होगा मैं भी प्रयास करूंगा। आप भी विश्राम करें वीरभद्र।
1: जी महाराज।
3: आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम कामिनी काये कांतारे का चौथा भाग। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 होने को हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
4: पेशे इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि आधार ऐप को 4 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से 11 लाख से अधिक पते और 39 लाख मोबाइल नंबर लोग अपडेट कर चुके हैं। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलने से गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर गाड़ियों के खराब होने की खबरें सही नहीं हैं। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 BEd कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज भारतीय समयानुसार 2:30 से लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुन रही सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी वंदना का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, सुनेंगे गीत संगीत और खाना खजाना में जामुन के फायदे और कुछ व्यंजन बनाना सीखेंगे। बहनों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती उसके वित्तीय तंत्र पर निर्भर करती है। बैंक इस वित्तीय तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वे लोगों की बचत को सुरक्षित रखते हैं और उसी धन को कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य विकास कार्यों के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार बैंक बचत को निवेश में बदलकर आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह दिन हमें उस ऐतिहासिक निर्णय की याद दिलाता है जब वर्ष 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना था। राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकिंग सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों और उद्योगों तक सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, छोटे व्यापारी और सामान्य नागरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह जाते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में हजारों नई बैंक शाखाएं खुली और गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इससे किसानों को फसल ऋण मिलने लगा, छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता मिली और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हुए। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। बैंक किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, सिंचाई और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे कृषि उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उद्योग और व्यापार के विकास में भी बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए उद्योगों को स्थापना, छोटे और मध्यम उद्यमों के विस्तार तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बहनों, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को ऋण देकर बैंक उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करते हैं। राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करे, नियमित बचत की आदत अपनाए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे और वित्तीय साक्षरता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सखियों, अब बात करते हैं उनकी जो हमारे आंगन को महकाते हैं। बरसात की रिमझिम फुहारे जब धरती को भिगोती हैं, तो घर का छोटा सा आंगन भी नई हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से मुस्कुरा उठता है। खिले हुए फूल मन को सुकून देते हैं, वातावरण को महकाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। उसी तरह हमारे बच्चे भी हमारे घर आंगन के सबसे सुंदर और सबसे अनमोल फूल हैं। एक माली अपने पौधों की प्रतिदिन देखभाल करता है। वह समय पर पानी देता है, खाद डालता है, सूखी टहनियां हटाता है और पौधों को कीटों से बचाता है। उसकी मेहनत का परिणाम तब दिखाई देता है जब पौधे फूलों से लद जाते हैं। ठीक यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। बच्चे जन्म से ही अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि उनका व्यक्तित्व परिवार के संस्कारों, माता पिता के व्यवहार और वातावरण से आकार लेता है। यदि उन्हें प्यार, अनुशासन, सम्मान और सही मार्गदर्शन मिले तो वे जीवन में सफल और संवेदनशील नागरिक बनते हैं। बरसात का मौसम बगिया के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बच्चों के लिए भी। इस मौसम में पौधों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। जल भराव से बचाना, समय पर खाद देना और पौधों को सहारा देना आवश्यक होता है। उसी प्रकार बच्चों की सेहत, स्वच्छता, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बहनों, आज के समय में बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोबाइल और टीवी का बढ़ता आकर्षण। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रकृति से जुड़े, तो हमें उन्हें बगिया से जोड़ना होगा। उन्हें
पौधे लगाने दें, पानी देने दें और फूल खिलते हुए देखने का आनंद लेने दें। इससे उनके भीतर धैर्य, जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति प्रेम का विकास होगा। एक माँ अपने बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। उसकी बोली, उसका व्यवहार और उसके संस्कार बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनते हैं। जिस घर में प्रेम, सम्मान, सहयोग और अच्छे संस्कारों का वातावरण होता है, वहाँ बच्चे भी सुगंधित फूलों की तरह खिलते हैं और अपने गुणों से पूरे समाज को महकाते हैं। बहनों, इस वर्षा ऋतु में हम एक संकल्प लें, अपने आंगन की बगिया को भी सहेजेंगे और अपने बच्चों के व्यक्तित्व रूपी बगीचे को भी प्रेम, समय और संस्कारों से सींचेंगे। क्योंकि जब आंगन में फूल खिलते हैं और घर में मुस्कुराते बच्चे होते हैं, तभी जीवन सचमुच सुंदर और आनंदमय बनता है।

सखियों, अब बात करते हैं घरेलू कार्यों में नवाचारों की भूमिका। बहनों, हमारा घर केवल रहने का स्थान नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। घर की सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुख शांति बनाए रखने में घरेलू कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बदलते समय के साथ इन कार्यों को आसान, सुरक्षित और समय की बचत करने वाला बनाने के लिए अनेक नवाचार हुए हैं। हम बात करने जा रहे हैं घरेलू कार्यों में नवाचारों की भूमिका। पहले घर के अधिकांश काम हाथों से किए जाते थे। कपड़े धोने से लेकर मसाले पीसने, अनाज साफ करने और भोजन बनाने तक हर काम में बहुत समय लगता था और मेहनत भी लगती थी। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने घरेलू जीवन को काफी सरल बना दिया है। आज मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, प्रेशर कुकर जैसे अनेक उपकरण घर के कामों को तेज और सुविधाजनक बना रहे हैं। इनकी मदद से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, जिससे परिवार के सदस्य अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए अधिक समय निकाल पाते हैं। बहनों, नवाचार केवल मशीनों तक ही सीमित नहीं है। रसोई में भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के नए तरीके, कम तेल में स्वादिष्ट भोजन बनाने की तकनीक, वर्षा जल संचयन, रसोई के जैविक कचरे से खाद तैयार करना भी उपयोगी नवाचार है। ये उपाय न केवल खर्च कम करते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देते हैं। सखियों, आज डिजिटल तकनीक ने भी घरेलू जीवन को नई दिशा दी है। मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली, पानी और गैस के बिल जमा करना, ऑनलाइन राशन मंगाना, डिजिटल भुगतान करना और घरेलू बजट का हिसाब रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। हालांकि नवाचार तभी सार्थक हैं जब उनका उपयोग समझदारी से किया जाए। बिजली और पानी की बचत, उपकरणों का सुरक्षित उपयोग और बच्चों को भी संसाधनों के सही उपयोग की आदत सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। सखियों, छोटे छोटे नवाचार हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी पारंपरिक समझ और संसाधनों का संतुलित उपयोग करें तो घर का काम बोझ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और आनंददायक अनुभव बन सकता है। तो घरेलू कार्यों में उपयोगी नवाचारों को अपनाएं, समय और संसाधनों की बचत करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और अपने घर को अधिक सुंदर, सुव्यवस्थित तथा खुशहाल बनाना यह हमारी ही जिम्मेदारी है। सखियों, नवाचार केवल सुविधा तक सीमित नहीं है बल्कि आय का माध्यम भी बन रहे हैं। अनेक महिलाएं घर से ही ऑनलाइन कुकिंग क्लास, सिलाई, हस्तशिल्प, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने गृहिणियों को आत्मनिर्भर बनने का नया अवसर दिया है। आने वाले समय में स्मार्ट होम तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, वॉइस कंट्रोल उपकरण और ऊर्जा बचाने वाली मशीनें घरेलू कार्यों को और अधिक सरल बनाएंगी। लेकिन यह भी आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग समझदारी, आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ही किया जाए। सखियों, अब बात उसकी जहां हमारा सबसे ज्यादा समय निकलता है, वो है हमारी किचन। सखियों, बरसात की फुहार के साथ मन आनंद से भर उठता है। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवाएं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को मनमोहक बना देती हैं। लेकिन यह मौसम अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है। रसोई में नमी बढ़ जाती है, खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने लगते हैं और कीट पतंगों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। ऐसे में यदि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो हम पूरे परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। कहा भी गया है कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत स्वच्छ रसोई से होती है, इसलिए बरसात के दिनों में रसोई की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले रसोई को सूखा और हवादार रखें। सिंक, गैस चूल्हा और रसोई का प्लेटफॉर्म प्रतिदिन अच्छी तरह साफ करें। जहां नमी रहती है वहां फफूंदी और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं, इसलिए सफाई के बाद सूखे कपड़े से सतहों को पोंछना भी अच्छी आदत है। अनाज, दालें, मसाले और आटा
हमेशा साफ और एयरटाइट डिब्बों में रखें। बरसात में इनमें नमी आ सकती है जिससे उनमें कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। समय समय पर डिब्बों की जांच करें। पुराने समय में हमारी दादी नानी नीम की सूखी पत्तियां, तेज पत्ता या साबुत लाल मिर्च अनाज के डिब्बों में रखती थीं। ये पारंपरिक उपाय आज भी उतने ही उपयोगी हैं। सखियों, फल और सब्जियां ताजी ही खरीदें, उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोकर ही उपयोग करें। पत्तेदार सब्जियों को विशेष सावधानी से साफ करें क्योंकि बरसात में उन पर मिट्टी और सूक्ष्म जीव अधिक हो सकते हैं। रसोई घर के कूड़ेदान को प्रतिदिन खाली करें और हमेशा ढक्कन लगाकर रखें। बरसात में स्वच्छ पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। पानी को उबालकर या शुद्ध करके पीना बेहतर होता है। यदि घर में वाटर फिल्टर है तो उसकी नियमित सफाई भी आवश्यक है। बहनों, फ्रिज की नियमित सफाई करें। सप्ताह में एक बार फ्रिज साफ करें और खराब या बासी खाद्य पदार्थ तुरंत निकाल दें। दूध और दूध से बने पदार्थ लंबे समय तक बाहर न रखें। उपयोग के बाद तुरंत फ्रिज में रख दें। सब्जी काटने वाले बोर्ड और चाकू हर इस्तेमाल के बाद गर्म पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाएं। किचन टॉवल को धूप या खुली हवा में सुखाएं। गीले कपड़ों में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। बर्तनों को धोने के बाद पूरी तरह सुखाकर ही अलमारी में रखें ताकि उनमें सीलन न लगे। मच्छरों और मक्खियों से बचाव के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। बहनों, रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, यह परिवार के स्वास्थ्य, प्रेम और अपनत्व का केंद्र है। जब रसोई स्वच्छ होती है, भोजन पौष्टिक होता है और उसमें स्नेह का स्वाद होता है, तब परिवार भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। तो इस बारिश इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर आप अपने रसोई घर को स्वच्छ और सुरक्षित रखें।

सखियों अब बात करते हैं मानसून का सुपर फूड। सुपर फूड है जामुन। बरसात का मौसम आते ही बाजार में जामुन की बहार आ जाती है। गहरे बैंगनी रंग का यह छोटा सा फल स्वाद के साथ साथ पोषण का भी खजाना है। आयुर्वेद में जामुन को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। वहीं आधुनिक शोध भी इसके कई स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करते हैं। जामुन में विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करते हैं और कई प्रकार की सूजन को कम करने में भी सहायक होते हैं। जामुन रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायक है। मधुमेह के मरीजों के लिए यह रामबाण से कम नहीं है। पाचन को बेहतर बनाता है, दिल की सेहत के लिए अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो सखियों, जब तक यह फल आता है तब तक सभी को इसका सेवन करना चाहिए। सखियों, जामुन से बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। आज खाना खजाना में हम आपको बता रहे हैं जामुन के व्यंजन। तो पहले बनाते हैं जामुन का खट्टा मीठा शरबत। इसके लिए हमें चाहिए पके हुए जामुन 1 कप,

चीनी 2 छोटी चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। जामुन का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले जामुन को अच्छे से धो लें। अब जामुन से गुठलियां निकाल लें और सिर्फ पल्प रख लें। जामुन के पल्प में चीनी, काला नमक, नींबू का रस और थोड़े से पानी को मिक्सी के जार में डालें। इसे अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लें और बचे हुए पानी को भी इसमें मिला लें और फिर इसको छान लें। ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा ठंडा जामुन का खट्टा मीठा शरबत सर्व करें। सखियों, अब बनाते हैं चटपटी जामुन की चाट। अगर आपको तीखा और खट्टा स्वाद पसंद है तो यह बहुत अच्छी लगेगी। तो हमें चाहिए जामुन 1 कप, काला नमक स्वाद अनुसार, भुना जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी, नींबू का रस 1/2 चम्मच। जामुन को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कटोरे में जामुन डालें। इसके अंदर काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और नींबू का रस मिला लें। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, जामुन की चटपटी चाट तैयार है। सखियों, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए 100 से 150 ग्राम जामुन प्रतिदिन पर्याप्त हैं। तो जब तक इस मौसम में जामुन आ रहे हैं तब तक आप उनका भरपूर स्वाद लें और जामुन की व्यंजन विधियां बनाएं। और अब कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो चुका है, तो अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी, इनके गाए लोकगीत आपको सुनवाते हैं।
1: अरे दो दो न धरियो गगरिया, दो दो न धरियो

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मोहन सिंह यादव के गाए बुंदेली गीत।
1: कुल उजियारा कुल बगिया को और फूल

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए बुंदेली गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थी कल्पना झोकरकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा,

कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड

0: जेन जी भी है, है ऑल्सो जेन ओल्ड नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये प्रसारण आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह और एकलव्य की आवाज़ में अभी आपने मनोज मुंतशिर का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे रोचक कोहली। फिल्म का नाम था थैंक गॉड। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाज़ें हैं देव नेगी, श्रुति राणे और साथियों की। कुमार ने लिखा है, गौरव दास गुप्ता का संगीत है और फिल्म का नाम निकम्मा।

कविता सेठ और कनिष्क सेठ की मिली जुली आवाज़ों में हम आपको जुग जुग जियो फिल्म का गीत सुनवाते हैं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव रहा है।
1: ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जगदीशपुर में बैठक के दौरान 10.54 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि 1460 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सानू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा,
2: पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 से हराया। इससे पहले उन्होंने 2024 में सैयद मोरी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे की टीम को शामिल किया गया है। भारत ने साउथहैम्पटन में श्रृंखला का पहला मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड के कार्डिफ में 2रा मैच जीतकर श्रृंखला बराबर कर ली। भारतीय टीम आज का मैच जीतकर 1 दिवसीय मैचों की श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के आसपास 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 टर्फ सिस्टम सक्रिय है। इसी कारण शनिवार को भोपाल, नर्मदापुरम सहित कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग का अनुमान है कि आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन भी उपस्थित रहे।
1: बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल करने को लेकर विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने विरोध स्वरूप बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई संसद की मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, परंतु विरोध दर्ज कराने के बाद विपक्षी दलों के सदस्य बैठक में शामिल हो गए। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये वॉकआउट एनसीपीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को

0: सुरक्षित निकालने में जुटी रही। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01991295681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसिडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसिडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसिडोनिया के राष्ट्रपति सिलिया नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
1: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने दो वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: मुस्कान एक ऐसी जादुई चाबी है जो हर ताले को आसानी से खोल सकती है, इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों, हम प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1927 में इस दिन भारतीय प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। ये शुरुआत से ही अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अनुसरण कर रहा है। बाल साथियों, 24 दिसंबर वर्ष 1906 की शाम कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंडेसन ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना, वो दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले बालमित्रों, जगदीश चंद्र बसु ने भारत तथा मार्कोनी ने वर्ष 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी, किंतु एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मैसेज भेजने की शुरुआत वर्ष 1906 में ही हुई। भारत में बाल साथियों, रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम वर्ष 1923 को मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद वर्ष 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटरों से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। वर्ष 1930 में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इसे परिचालित करना शुरू कर दिया। वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और वर्ष 1957 में आकाशवाणी नाम से इसे पुकारा जाने लगा। आपको पता है बाल मित्रों, वर्ष 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था। स्वतंत्रता के समय भारत में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, लेकिन 80 के दशक तक रेडियो का नेटवर्क पूरे भारत में फैल चुका था और इसका प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में होता है। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो की सबसे अच्छी सेवाओं में से एक है। इसे व्यावसायिक सेवा भी कहा जाता है। ये समाचार, फिल्म संगीत और कॉमेडी कार्यक्रमों सहित कई कार्यक्रमों की पेशकश करती है। हम ये कह सकते हैं बाल मित्रों कि रेडियो के आगमन के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आज के समय भी रेडियो लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इसके चलते मन की बात कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के वचनों को सुनते हैं। बाल मित्रों, आकाशवाणी आज भी एक बड़े नेटवर्क के रूप में पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है। ये तो थी बाल साथियों एक छोटी सी चर्चा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर, और अब चलते हैं बाल मन से क्रम की ओर। बाल मन से क्रम के अंतर्गत अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत। बाल मन से क्रम के अंतर्गत बाल साथियों, आज हमारे स्टूडियो में एक प्यारा सा बालक आया हुआ है, तो चलिए करते हैं उससे थोड़ी सी बातचीत और देखते हैं कि आज वो हमारे बाल साथियों को क्या क्या सुनाने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अयान रजक है।
0: अयान, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ।
0: थर्ड क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: यस।
0: आप आज हमारे बाल साथियों को क्या सुनाएंगे?
1: मैं कविता सुनाने वाला हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: पिता तुल्य है देश हमारा, हम सबका यह पालनहार, सुख हर देता दुख हर लेता, अमन देश को सत सत बार, पकड़ो उंगलियां चाल सिखाए, पग पग पर है देता साथ, विघ्न कभी जो डगमग कर दे, तुरंत बढ़ाए अपना हाथ, चुन चुन कलियां बरसाता है, दिखलाता है मंजिल का द्वार, अपने हर सुत को देता है जीवन जीने का आधार, नन्हे पग चढ़ जाए पर्वत, निश्चिंत देता है आशीष, आओ हम भी मान बढ़ाकर ऊंचा कर दें इसका शीश।
0: पिता तुल्य ये देश हमारा, बहुत ही प्यारी देशभक्ति पूर्ण कविता आपने हमारे बाल साथियों को

0: सुनाई। अच्छा आयान, ये बताओ आपको कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप?
1: यस।
0: कौन कौन से गेम्स खेलना आपको पसंद है?
1: टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल।
0: इतने सारे गेम्स खेलते हो आप, और किस चीज का शौक है आपको?
1: गिटार बजाना।
0: गिटार बजाते आप? आपको गिटार बजाने का शौक है? गिटार में आप क्या बजाते हो?
1: धुन बजाते हैं।
0: अच्छा, कोई भी धुन बजाते हैं आप गिटार से? Yes. आप लाए नहीं अपनी गिटार? नहीं लाए? चलिए कोई बात नहीं। आप हमारे बाल साथियों को और क्या सुनाएंगे?
1: मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: जब की आंखों का तारा था वो नीसू भाई हमारा था, यारो का भी वो यार था पर किस्मत का थोड़ा मारा था। डारी गी छब्बीसू कली जब हम सबको तू छोड़ गया, हाँ भी रोवे तेरा भाई भी सबसे क्यों मोड़ गया। करीब घर का बालक था कुछ इच्छा थी गढ़ करने की, प्यारा उसका जोंडियर था उस मोटी भाई करने की। सबका तूने भूत उतारा जिसने फंसाया तो दूसरे सिंह टोचन कर इस दुनिया में होया कर पर तू क्या लाया टोचन किंग। गरीब घर का बालक था ट्रैक्टरों से तू करता था प्यार, भोलेनाथ का भगत पड़ा था अमर ले जय है हरिद्वार। जिस उम्र में बच्चे खेला करते मिट्टी और खिलौनों से, उस उम्र में छोटा ट्रैक्टर लावे मेले और दुकानों से। बच्चे से भी पूछ लो किसका ट्रैक्टर है सबका किंग, यीशु भाई का नाम लेवे और ट्रैक्टर बोले टोचन किंग। ट्रैक्टर में डाले कार के टायर अब उसको कौन चलाएगा, यीशु तो था हम सब की जान पर रोहित उसे चलाएगा। छोटी सी उम्र में तूने ऐसा नाम बनाया था, ट्रैक्टर तो 40 भगा करे तूने 110 भगाया था। टोचन किंग को जब देखे हैं तेरी याद हमेशा आती है, स्टंड तुम्हारा करता था उस पब्लिक देख नचाती है।
0: बहुत ही प्यारा गीत आयान आपने हमारे बाल साथियों को सुनाया। अच्छा आयान, ये बताइए आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: आर्मी में कर्नल ऑफिसर।
0: आप आर्मी में कर्नल ऑफिसर बनना चाहते हैं?
1: यस।
0: इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप करेंगे इतनी मेहनत?
1: Yes.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। हम तो यही चाहेंगे कि आप बड़े होकर अपना लक्ष्य पूरा करें, एक सफल कर्नल ऑफिसर बने, है ना?
1: Yes.
0: आयान, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतना प्यारा गीत सुनाया, इतनी देशभक्ति पूर्ण रचना सुनाई। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: बाल साथियों, बाल मन से क्रम के अंतर्गत अभी आपने हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत को सुना। बाल मित्रों, इसी हफ्ते 23 जुलाई के दिन हम एक नहीं बल्कि दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती मनाएंगे। एक हैं चंद्रशेखर आजाद तो दूसरे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की। बाल साथियों, चंद्रशेखर जी के नाम से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में एक अमर नाम है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। उनकी वीरता, साहस और त्याग की कहानी आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाल मित्रों, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई वर्ष 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगदानी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वामी भक्त, साहसी और वचन के पक्के थे और यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। वे बेहद कम उम्र में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का हिस्सा बने थे। बाल साथियों, जब वर्ष 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो चंद्रशेखर का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वे वर्ष 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और वर्ष 1925 में उन्होंने पहली बार रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद बाल मित्रों, चंद्रशेखर ने वर्ष 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर SP सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका ये मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। आपको पता है बाल मित्रों कि चंद्रशेखर जी को आजाद क्यों बुलाया जाता है? तो इसके पीछे भी एक खास वजह है। वे जब मात्र 15 वर्ष के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरे घर का पता जेल है। ये सुनने के बाद जज भड़क गए और उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। बस यहीं से उनका नाम आजाद पड़ा। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने नाम को आजाद रखना चाहते थे। बाल मित्रों, अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आगामी योजना बना रहे थे। ये जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और वे अकेले अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में वे बुरी तरह घायल हो गए, किंतु उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बाल साथियों अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। तो बाल साथियों, ऐसे थे महान देशभक्त चंद्रशेखर आजाद। और बाल साथियों, अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन है बाल साथियों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सिपाहियों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। ये वाक्य जब तक देश की स्वतंत्रता का इतिहास रहेगा तब तक स्वर्णिम अक्षरों में तिलक जी के साथ जुड़ा रहेगा। तिलक जी का जन्म बाल साथियों 23 जुलाई वर्ष 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनका बचपन का नाम केशव बाल गंगाधर तिलक था। बचपन से ही उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। प्रारंभिक शिक्षा मराठी में प्राप्त करने के बाद गंगाधर को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए पूना भेजा गया। इसके बाद केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र उनकी आवाज के पर्याय बन गए। तिलक जी को भारतीय क्रांति का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया। बाल साथियों, तिलक जी लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल की टिकड़ी का हिस्सा बने। वे एक विद्वान, लेखक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा लोकमान्य अर्थात प्रिय नेता की उपाधि दी गई। बाल मित्रों, गणेश उत्सव की शुरुआत तिलक जी ने राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए और लोगों को एकत्रित करने के उद्देश्य से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। तिलक जी का व्यक्तित्व, उनका काम, उनके विचार और उनके द्वारा शुरू की गई परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुआयामी था। ढेर सारी उपलब्धियों के बावजूद भी कोई व्यक्ति जमीन से कैसे जुड़ा रह सकता है, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक जी के जीवन से ही हम देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उनको हमारा शत शत नमन। इस चर्चा के बाद बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सन ऑफ इंडिया से। आवाजें हैं शांति माथुर और साथियों की। शकील बदायूनी के गीत को संगीत से सवारा है नौशाद ने।

कदम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।

0: नगर भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद।
1: और बाल मित्रों देखिए, बारिश का मौसम है और ये मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। बरसात का ये मौसम जहां एक ओर चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है तो वहीं दूसरी ओर वातावरण को भी खुशनुमा बनाता है। बारिश के पानी से सूखी धरती, पेड़ पौधे और घास फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इस मौसम में चारों ओर हरियाली और मिट्टी की मनमोहक खुशबू फैल जाती है जो हम सभी के मन को बड़ा सुकून देती है। बाल साथियों, बारिश का ये मौसम हमें आनंद से भर देता है। इस मौसम में मौज मस्ती के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आइए जानते हैं कि कैसे हम फिट और सेहतमंद रह सकते हैं। सबसे पहले तो बाल साथियों, गीले कपड़ों से बचें। बारिश में यदि आप भीग गए हैं तो तुरंत नहा लें और अपने शरीर को सूखा करें, क्योंकि गीले कपड़े पहनने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, घर में कुछ भी खाने से पहले या बाहर से आने पर साबुन से हाथ जरूर धोएं। इस मौसम में बाहर का तला भुना और खुला खाना खाने से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। हमेशा ही घर का बना ताजा और सुपाच्य भोजन करें। बाल साथियों, बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों में कीड़े और मिट्टी छिपी हुई होती है जो हमें बीमार कर सकती है। ऐसा नहीं है बाल मित्रों कि बारिश का मौसम है तो हमें प्यास कम लगती है और पानी न पिएं। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खूब पानी पिएं, लेकिन ध्यान रखें कि पानी शुद्ध हो। इस मौसम में यदि हम उबला हुआ पानी ठंडा करके पिएंगे तो बीमार होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इस मौसम में बाल मित्रों मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो मच्छरों से बचने के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। शाम के समय खिड़की दरवाजे बंद रखें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। बाल साथियों, मॉनसून का मौसम प्रकृति से पुनः जुड़ने और शरीर की प्राकृतिक लय को बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है, तो आप भी सेहत से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों को अपना कर मॉनसून का पूरा मजा ले सकते हैं। इसी के साथ बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को।

बच्चों के लिए अभी बाल सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम था राजहट। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की मिली जुली आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीतकार हेमंत कुमार और फिल्म का नाम एक ही रास्ता।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर इसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। फिल्म का नाम है न्यू दिल्ली।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल के जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 1460 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 देश मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली यात्रा होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के लिए बाद विपक्ष के कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। यह खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 से हराया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। आकाशवाणी भोपाल से मीडियम वेव पर हमारा प्रसारण अब कुछ समय के लिए बंद होता है। शाम 5 बजे से आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर सुना जा सकता है। इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण लगातार जारी है।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा का आरंभ कर रहे हैं युवा श्रोताओं, एक कार्यक्रम युव वाणी से।

0: तो नमस्कार साथियों, मैं आपकी रेडियो दोस्त अनुष्का
1: और मैं अनुभूति, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा

0: कार्यक्रम युववाणी में।
1: तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन है रविवार का और रविवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं खास हमारा युवा तरंग कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं बहुत सारे हमारे साथियों से। तो वो तो हम आपको करवाएंगे ही उससे रूबरू, पर उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आज के हमारे प्रश्न क्या है। तो अनुभूति, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है?
0: हमारा पहला प्रश्न है कि हैदराबाद के किस स्पेस स्टार्टअप ने अपने पहले ही प्रयास में ऑर्बिट क्लास रॉकेट विक्रम 1 का सफल लॉन्च किया है।
1: और साथियों, हमारा दूसरा सवाल ये है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि अभी 2 दिन पहले ही शुरू हुई है, जिसको हरी झंडी दिखाई गई है, वो किस राज्य से चलना शुरू हुई है?
0: तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खोज कर रखिए। कार्यक्रम के अंत में आप अपने उत्तर हमारे साथ जरूर मिलाइएगा। तब तक आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा,
1: हाँ। और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
1: हर लेन देन अब है आसान।
4: तो साथियों, बात करें आज के दिन के बारे में, तो आज मनाया जाता है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, जो हर साल आज के दिन मनाया जाता है। तो साथियों, बात करें आज के दिन के बारे में, तो आज मनाया जाता है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। इस दिन की शुरुआत सन 1969 में सरकार ने 14 बड़े निजी यानी कि प्राइवेट बैंक्स को अपने कंट्रोल में लेने के साथ की थी, ताकि बैंकिंग का लाभ जो है अमीर व्यापारियों के साथ साथ आम जनता और ग्रामीण जो लोग हैं उन्हें भी मिल सके।
5: और श्रोताओं, बैंक राष्ट्रीयकरण क्या है ये हम सभी को जानना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आखिर ये है क्या। तो इसका आसान मतलब है निजी बैंकों को सरकारी बैंक बनाना। पुरानी व्यवस्था ये कहती है कि 1969 से पहले बैंक केवल बड़े कारोबारियों के मालिकाना हक में थे,
4: और समस्या ये थी कि ये निजी बैंक केवल बड़े शहरों के बड़े उद्योगों को ही लोन देते थे। सरकार ने इन बैंकों को अपने हाथ में ले लिया, ताकि हर कोई इनका उपयोग कर सके और लाभ उठा सके।
5: और श्रोताओं, बैंकों ने किसानों और छोटे दुकानदारों को सस्ते ब्याज पर लोन देना भी शुरू किया। गांवों में शाखाएं, देश के छोटे छोटे गांवों में हजारों नई बैंक की शाखाएं, जिन्हें हम ब्रांचेस भी कह सकते हैं, वो भी खुली।
4: साथ ही ये भी सुनिश्चित हुआ कि आम जनता को सरकारी बैंकों पर अधिक भरोसा करने को मिला, और साथ ही जिससे लोगों ने पैसा बचाना भी शुरू किया।
5: बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस इस ऐतिहासिक कदम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को आम जनता, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना था। साथियों,
4: इससे पहले बैंक केवल गिने चुने बिजनेसमैन तक सीमित थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण होने के बाद आम आदमी के लिए भी बैंकों के दरवाजे खुल गए, जिससे देश में एक बड़ी वित्तीय क्रांति आई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को मजबूती मिली। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस दिवस के बारे में आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अनुष्का, हमारे कई सारे ऐसे साथी हैं जिनको इस दिवस के बारे में कुछ और भी पता होगा।
5: बिल्कुल। तो साथियों, अगर आपको इसके बारे में और भी पता है, या फिर जो भी ऐसे युवा हैं जो अपना करियर बैंकिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिन्हें आप ग्रैब कर सकते हैं और अपनी बैंकिंग फील्ड को एक नई दिशा दे सकते हैं।

0: साथियों, आज की शुरुआत करते हैं युवा तरंग के साथ। और चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले साथी की ओर। तो बताइए, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अनिकेत जैन है।
0: ओके, और आप कहाँ से हैं अनिकेत?
1: मैं इंदौर से हूँ।
0: क्या बात है, इंदौर से हैं। तो अनिकेत, आज वीकेंड है, तो आज क्या प्लान कर रहे हैं आप वीकेंड के लिए?
1: आज वीकेंड पे कुछ नहीं, दोस्तों के साथ चिल करने जाएंगे। फुल डे
0: अच्छा,
1: ऑफिस वर्क में बिजी रहते हैं
0: ओके।
1: तो।
0: तो अभी आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है, तो आप इंदौर में ही कर रहे हैं वर्क या फिर कहीं और आपने लोकेट किया है?
1: अभी मैंने रिसेंटली रिलोकेट किया है मुंबई में।
0: ओके, नाइस। तो बॉम्बे तो आपके लिए काफी न्यू एक्सपीरियंस रहा होगा, मतलब सारी चीजें एकदम। तो
1: यस यस
0: कैसा लग रहा है आपको वहां पे, कुछ भी सारी चीजें जो इंदौर से, कुछ डिफरेंस है भी या नहीं?
1: इंदौर से डिफरेंट है।
0: ओके, तो अभी आपने कुछ एक्सप्लोर किया कि नहीं फिर वहां पे?
1: अभी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अभी लास्ट वीक ही आया हूँ तो।
0: हाँ, जैसे सुनने में आता है कि बॉम्बे में मॉनसून भी काफी खूबसूरत होते हैं, तो ऐसा सच में भी है या फिर एक ही मिथ है?
1: नहीं, सच में है, अच्छा
0: तो
1: है, बहुत अच्छा मानसून है यहाँ पे।
0: मॉनसून की बात तो हम कर रहे हैं अनुष्का, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने अनिकेत, कि वैसे भी बारिश का मौसम है तो मुंबई मॉनसून्स तो काफी फेमस है, हर जगह हर किसी के लिए एक ड्रीम लगता है ना अनुष्का?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अनिकेत, ये बताइए कि इंदौर से आप हैं, तो इंदौर के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो कहीं और जाके आपको नहीं लगती?
1: इंदौर में ट्रैवलिंग टाइम कम है और पीस ऑफ माइंड अच्छा है इंदौर में। खाना
0: ये तो सही बात। खाने से रिलेटेड आप क्या बोलना चाहेंगे?
1: तो फॉर श्योर सबको ही पता है, अच्छा है ही इंदौर का।
0: तो अगर आपको, जैसे हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, और वो अगर इंदौर से नहीं है और इंदौर आना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बताएंगे? कुछ ऐसी दो तीन चीजें या चार पांच बातें आप बताना चाहें इंदौर के खाने से रिलेटेड, या कोई जगह आप बताना चाहें कि वो उन्हें मस्ट ट्राई करनी चाहिए, कुछ सजेस्ट करेंगे आप?
1: छप्पन तो है ही, जो भी आता है उसको छप्पन तो जाना ही चाहिए। और नाइट नाइट सराफा मार्केट भी जाना ही चाहिए। जीके जा सकते हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, ये सब गुड प्लेसेस हैं।
0: तो इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी अनिकेत, कि इंदौर में आपका रेसिडेंस कहाँ पर है?
1: बंगाली स्क्वायर साइड रहता हूँ।
0: तो बंगाली स्क्वायर साइड आप रहते हैं, वहां से तो
1: जी
0: 140 भी मतलब काफी नजदीक में पड़ता है। तो वहां पे भी आजकल सुनने में आ रहा है कि काफी सारे न्यू फूड आउटलेट्स खुल रहे हैं और काफी सारे मतलब इनोवेशंस हो रहे हैं, तो ऐसा मतलब क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में?
1: 140 रियली ग्रेट प्लेस है हैंग आउट के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और न्यू न्यू न्यू चीजें खुलती ही जा रही है फूड के लिए, सो बहुत अच्छा स्पॉट है।
0: तो ऐसा कुछ अभी आपको बॉम्बे में देखने को मिला या नहीं, मतलब फूड
1: अभी मैं
0: को
1: ज्यादा
0: लेके?
1: एक्सप्लोर नहीं कर पाया, बट हाँ यहाँ पर भी ग्रेट प्लेसेस हैं बॉम्बे में भी तो।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: खाने पीने की तो बहुत बातें हमने कर ली अनिकेत। तो मुझे ये बताइए कि आपकी हॉबीज क्या है, आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है?
1: बिंज वॉचिंग करता हूँ और चेस वगैरह खेलता हूँ मैं।
0: तो चेस वगैरह आप खेलते हैं, इसके साथ
1: हाँ,
0: आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं जान सकती हूँ?
1: एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर्स में।
0: तो आईटी में भी आपका फिर इंटरेस्ट रहता होगा काफी ज्यादा, राइट?
1: यस यस यस
0: तो अभी जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, मतलब वहां पे आपने कैसे क्या क्वालिफाई किया, आप कुछ दो तीन आप टिप्स देंगे जो हमारे युवा साथियों के लिए काफी हेल्पफुल हो जो अभी ट्राई कर रहे हैं आईटी में जाने का?
1: आईटी में अपना डोमेन स्पेसिफिक ना रहे ज्यादा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और एआई के बारे में पढ़े, थोड़ा एजेंटिक एआई के बारे में और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना चाहिए।
0: तो एआई का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हम सबको दिख रहा है, तो आईटी में आप इसको कैसे देखते हैं कि सच

0: में क्या AI रिप्लेस कर पाएगा चीजों को?
1: नॉट कम्प्लीटली, लाइक जैसे कंप्यूटर आया था तो बोला था कैलकुलेटर चला जाएगा, तो लेकिन रिप्लेस नहीं कर पाया वो। हाँ,
0: ट्रू,
1: कहीं कहीं पर ऐसा है कि कन्वीनियंट हो जाता है वो, बट अपन कंप्लीटली उसको नहीं कर सकते रिप्लेस।
0: तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि AI ट्रांसफॉर्म कर सकता है बट रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट? बहुत अच्छा लगा निकेत आपसे बात करके, और काफी सारी इनसाइट्स हमें जानने को मिली। तो मुझे ये बताइए कि अब इसी के साथ आप आज कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे आकाशवाणी की तरफ से?
1: कोई भी बारिश से रिलेटेड सॉन्ग यहाँ पर,
0: बारिश
1: क्योंकि मुंबई
0: से
1: में बारिश बहुत
0: रिलेटेड?
1: जरूरी है।
0: तो वो वाइब को भी मैच करेगा, है
1: या
0: ना?
1: या या
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हैव अ ग्रेट वीकेंड।
1: थैंक यू।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले साथी की ओर। तो बताइए, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम निशांत शर्मा है।
3: निशांत, जैसा कि हमने देखा, आप 56 पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी आपने क्या क्या एक्सप्लोर किया, लाइक कुछ फूड आइटम्स वगैरह, या फिर आप सिर्फ अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं?
4: जैसे कि आज संडे है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ 56 पे आया हूँ, और 56 पर हमने अभी ट्राई करा है एक चॉकलेट ब्राउनी वॉफल।
3: अच्छा, तो इसके पहले भी आपने कुछ कुछ ट्राई किया है, या फिर ये मतलब आपने सबसे पहले वॉफल ट्राई किया है, इसके पहले कुछ बाकी चीजें भी ट्राई की है, मुझे ये बताइए।
4: वॉफल मेरा पहली बार है, ये मैंने पहली बार ट्राई करा है, और मुझे लगा नहीं था कि ये इतना अच्छा होगा, बट ये बहुत ही अच्छा है।
3: तो मुझे लग रहा है कि आप डेजर्ट्स में काफी आपको अच्छा लगता है, मतलब बहुत आप डेजर्ट लवर, मुझे ऐसा लग रहा है आप हैं, तो आपने और भी काफी सारे डेजर्ट्स ट्राई किए होंगे, है ना?
4: जी हाँ, बचपन से डेजर्ट्स का बहुत शौक रहा है, लेकिन हमारी फैमिली में हमें हमेशा मिठाइयाँ और बहुत सारी चीजें, ऐसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ऐसी चीजें डेजर्ट्स में खाना सिखाया, और अब जो नए डेजर्ट्स आ रहे हैं, जैसे वॉफल है, कुफा है, तो ये सब ट्राई करने में मजा भी आता है और एक नया टेस्ट भी मिलता है, जिससे और अच्छा लगता है हमें।
3: तो वॉफल में क्या अलग लगा आपको?
4: इसका बनावट तो मुझे नहीं पता कि कैसा होता है, बट स्टिल इट इज लाइक गुड केक, और एक लेयर होती है ब्रेड की, और फिर उसके बीच में ब्राउनी रखते हैं, उसके साथ हम उसे चॉकलेट से कवर करते हैं, फिर कुछ नट्स रखते हैं, जिससे उसका मजा में बहुत सारे टेस्ट में मिल जाता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट है, तो उससे काफी ये अच्छा लगता है और सबको ट्राई करना चाहिए।
3: और मतलब चॉकलेट से तो आपके मूड पे भी, मैंने सुना है, काफी ज्यादा अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होता है, लाइक वो मूड को ना एक बहुत अच्छा एंथुसियाज्म देती है, तो आप भी ऐसा मानते हैं क्या? आपको कभी ऐसा फील हुआ है ये खाके?
4: जी हाँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, डार्क चॉकलेट कहीं ना कहीं हमारे डेली लाइफ में हमें कंज्यूम करना चाहिए। मैंने एक जगह पढ़ा था जिस पर डार्क चॉकलेट खाना बहुत अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, हमें एक मिनिमम अमाउंट में डार्क चॉकलेट को हर कंज्यूम करना चाहिए।
3: ओके, तो निशांत, मुझे ये जानना है कि डार्क चॉकलेट तो जो है वो अधिकतर मतलब एक जो बिटर टेस्ट होता है उसका, लाइक तो मतलब वो एक माना जाता है कि फिटनेस में भी काफी अच्छी रहती है, जो लोग अपनी फिटनेस जर्नी पर हैं तो वो भी डार्क चॉकलेट को कुछ अच्छी चीजों का सोर्स मानते हैं, मतलब क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करती है, तो क्या आपने ऐसा कभी फील किया है?
4: मैंने कई बार ऐसा डार्क चॉकलेट खाकर जिम तो गया हूँ मैं, बट मुझे कभी ऐसा एनर्जी जैसा तो इतना फील नहीं हुआ, या शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बट हाँ, कहते हैं कि डार्क चॉकलेट अगर प्योर है, मतलब कहीं प्रोसेस्ड डार्क चॉकलेट नहीं है, और आप एक अच्छी जगह से डार्क चॉकलेट लेकर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो शायद डार्क चॉकलेट के इफेक्ट्स दिखते हैं हमारे लाइफ में।
3: बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसा कि आपने अभी बताया, आप फिटनेस एंथुसियास्ट है, तो जिम का भी आप काफी शौक रखते हैं, है ना?
4: हाँ जी, मुझे 8 से 9 महीने हो चुके हैं जिम जाते हुए, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं डेली कंसिस्टेंट रहूँ अपने जिम जर्नी पे।

0: जिम जर्नी की बात हो रही है तो मैं ये जानना चाहूंगी, जिम का तो जैसे फिजिकल बॉडी पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, बट क्या इसका मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही असर पड़ता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा सही होती है जिम जाने से। मुझे ऐसा लगता है कि जिम में भी आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सिर्फ एक फिजिकली रेडी होकर जा रहे हैं और फिजिकली तैयार होकर जा रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फिजिकल बॉडी को पूरा ट्रेन करना है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको जिम जाकर अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और वहां पर एक एक बॉडी को पार्ट्स ट्रेन करने के लिए आपके मेंटल हेल्थ भी उतना ही साथ देती है जितना आपकी फिजिकल हेल्थ देती है।
2: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, और अब हमें ऐसा लगता है कि खाने से भी रिलेटेड बातें हो गई अनुष्का, जिम की भी बातें हो गई, तो अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, जो युवा हमें सुन रहे हैं, वो ऑब्वियसली इन बातों से तो कुछ ना कुछ समझ ही रहे होंगे, लेकिन ये बताइए कि आप करते क्या हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं?
1: अभी अभी फिलहाल मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है और मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। तो
2: अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ नया सुनने में लग रहा है अनुष्का, तो हमारे कई सारे श्रोताओं को पता होगा और कई को नहीं भी पता होगा, तो निशांत आपसे ही हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग असल में होता क्या है और कैसा क्या ये कोर्स है।
1: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स होता है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को काफी विस्तार से समझते हैं और उन पर वर्क करते हैं। आप हमेशा देखते हैं कि हमारे घर, सिटीज और हमारे शहरों में जो लाइट्स वगैरह और इतनी सारी चीजें जो ग्लो करती है, उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे का जो सर्किट सिस्टम रहता है, उसके पीछे की जो वर्किंग सिस्टम रहता है, आप जिस तरह से उसे इंस्टॉल है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमें सबसे ज्यादा फील्ड वर्क करना पड़ता है। ये एक जगह बैठकर करने वाली जॉब नहीं होती है, इसमें हमें एक जगह से दूसरी जगह फील्ड वर्क में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। प्लस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कुछ भी फिजिकली स्ट्रक्चर या फिजिकली चीजें, आपको जब आप उस पर पढ़ाई करते हैं तब वो आपको नहीं दिखती है। आपको सबसे ज्यादा अपनी इमेजिनेशन का काम करना पड़ता है, क्योंकि करंट, वोल्टेज और ऐसी चीजें हमारी लाइफ में कभी भी हमें दिखाई नहीं देती। तो उस चीज को लेकर हमें हमारे मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, उस पर काफी वर्क करना पड़ता है किसी चीज को इमेजिन करने के लिए, क्योंकि ये सब सिर्फ सेकेंड्स का खेल होता है और इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जरा सी गलती में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो उसमें डेंजर भी रहता है। बट स्टिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है आज की हमारी दुनिया के लिए, और ये फील्ड हमेशा बढ़ते ही रहेगी।
2: अच्छा निशांत, आप बता रहे हैं और ये हम समझ पा रहे हैं कि एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें यंगस्टर्स आगे बढ़ सकते हैं और एक नेवर एंडिंग फील्ड है ना अनुष्का?
0: बिल्कुल,
2: तो निशांत, ये आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट ये कोर्स करता है तो उसके बाद की जॉब किस तरीके की रहती है, जॉब पोजीशंस क्या क्या रहती हैं और कहाँ किस सेक्टर में जॉब मिलती है लोगों को?
1: तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो एकदम स्टार्टिंग में आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक बहुत क्रूशल और बहुत ज्यादा सेंसिटिव वर्क होता है। तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि आपकी आपके साथ कुछ गलत हो या आपकी फिजिकल हेल्थ को कुछ हो, प्लस उनकी भी कंपनी को कुछ हो आपकी छोटी सी गलती से। इसलिए वो एक एज अ ट्रेनिंग, सारी कंपनीज हमें एज अ ट्रेनी हायर करती है। उसके बाद हम सीखते हैं 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने, और उस सीख के कारण हम सुपरविजन के सेक्टर में जाते हैं, और उधर फिर हम सुपरवाइज्ड करते हैं लोगों को और हमारे कंपनीज के मेंबर्स को, जिसमें हम सारी चीजें क्रॉस चेक करते हैं, हम उस पर वर्क करते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर वर्क करते हैं। इफ अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना खुद का बिजनेस हो, तो आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद कहीं से अच्छा एक्सपीरियंस लेके आप खुद का कॉन्ट्रैक्टर का वर्क शुरू कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना खुद का एक बिजनेस डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में, जहाँ पर आप बड़े बड़े टेंडर्स ले सकते हैं, उधर से प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और फिर आप उस पर वर्क कर सकते हैं।
2: क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात ये तो आपने बताई, और मेरे ख्याल से ये काफी एक डाइवर्स फील्ड भी है, और निश्चित तौर पे हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो साथी सुन रहे हैं, उन्हें अगर किसी अच्छे करियर ऑप्शन की तलाश है तो जाहिर है कि वो ऐसा करियर भी चूज कर सकते हैं जिसमें काफी नेवर एंडिंग अपॉर्चुनिटी

0: अपॉर्चुनिटीज हैं, स्टार्टअप के भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो
1: हाँ जी,
0: निशांत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब हम जानना चाहेंगे कि आज आकाशवाणी इंदौर के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: तो अभी इंदौर में मानसून का मौसम काफी हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस टाइम एक मानसून बारिश का गाना अगर चल जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच निशांत फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।
1: ओके ओके, थैंक यू।

0: तो साथियों, ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम।
1: और श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे दो प्रश्न पूछे थे, तो अब वक्त हो गया है उनका उत्तर बताने का। तो अनुभूति, हमारा पहला प्रश्न क्या था और साथ ही उसका उत्तर भी क्या था, ये मैं जानना चाहूंगी, और साथ ही हमारे युवा साथी भी ये जानने में काफी उत्सुक होंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो थे अनुष्का, ये अभी करंट अफेयर्स के दोनों क्वेश्चंस हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इनके उत्तर जरूर मिले होंगे। फिर भी हम आपको बता देते हैं, आज का पहला प्रश्न था कि हैदराबाद के किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने अपने पहले ही प्रयास में ऑर्बिट क्लास रॉकेट विक्रम 1 का सफल लॉन्च किया, जिसका उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस।
1: और साथियों, हमारा दूसरा प्रश्न था कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य से चलना शुरू हुई है, तो जिसका उत्तर है हरियाणा।
0: हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर मिले होंगे। इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाजत अनुभूति
1: और अनुष्का को।
0: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जहर फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने।

कुमार सानू और साधना सरगम को भी आपने सुना फिल्म दीवाना में। गीत रचना समीर की थी और संगीत नदीम श्रवण का। मुझसे शादी करोगी, जी हाँ श्रोताओ, यही है फिल्म का नाम, जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। युगल स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक के हैं।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म मुझसे शादी करोगी में।
1: मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत,
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
0: श्रोताओ करीब फिल्म का गीत सुनिए जिसे गाया है कुमार सानू और संजीवनी ने। गीत रचना राहत इंदौरी की है।
3: क्या

कुमार सानू और संजीवनी को अभी आपने सुना फिल्म करीब में। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गीत। जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण का संगीत।

0: जोकर।
1: समीर की शब्द रचना, नदीम श्रवण का संगीत, उदित नारायण और अलका याग्निक को भी आपने सुना फिल्म, जी हां, राजा हिंदुस्तानी में।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुनाह फिल्म का गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो ने। बोल प्रवीण भरद्वाज के हैं और संगीत आनंद राज आनंद का।

0: अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को अभी आपने सुना फिल्म गुनाह में। गीत रचना प्रवीण भरद्वाज की थी और संगीत आनंद राज आनंद का।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाश।

0: आकाशवाणी इंदौर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रिफ्यूजी फिल्म का गीत, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। गीत रचना जावेद अख्तर की है और संगीत अनु मलिक का।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए रिफ्यूजी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: इस समय आप है हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: आकाशवाणी इंदौर से प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल की गाई भक्ति रचनाएं।

बलबीर निर्दोष की शब्द रचना भी आपने सुनी, जिसे गाया था नरेंद्र चंचल और साथियों ने। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र चंचल की गाई भक्ति रचनाओं को।

0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे थे नरेंद्र चंचल की गाई भक्ति रचनाओं को। इस भक्ति गीत के साथ ही अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
0: प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अरुण कुमार गोयल और साथियों के गाए लोक गीतों को।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अरुण कुमार गोयल और साथियों की गाई लोकगीतों को। लीजिए सुनिए इन्हीं के युगल स्वर में अगली लोक रचना।

0: श्रोताओं, लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे अरुण कुमार गोयल और साथियों के गाए लोकगीतों को। अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों और कल के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे देवें। संध्या 7:20 पर कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। आज बात होगी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना पर, साथ ही वृक्षारोपण विषय पर प्रगतिशील कृषक कमलेश पारे की बातचीत भी हम आपको सुनवाएंगे। पूरी पगारे अधिवक्ता से जानेंगे किसानों के उपभोक्ता अधिकार और नकली बीज से कैसे बचें, इस विषय पर जानकारी। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 8 बजे। भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम डगर विकास की, अनुप्रसारण समय होगा 8:15। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8:30 पर और सदाबहार गीतों के कार्यक्रम चित्रगीत में रात 9:15 पर। संसद के समक्ष मुद्दे, यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 9:30 पर और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारण होगा रात्रि 10 बजे। यह था विवरण हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का। अब हम आपको जानकारी दे दें कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल सुबह 7:20 पर कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग इंदौर। कल के कार्यक्रम के आकर्षण रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस पर, साथ ही समाज सेवी और शतरंज प्रेमी धर्मेंद्र सिंह मौर्य से बातचीत हम आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 पर। मराठी कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9 बजे से और सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में रवि गरुड़ का बांसुरी पर बजाया राग यमुनी बिलावल हम आपको सुनवाएंगे। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल के दिशा अनुप्रसारित होगी सुबह 10 बजे। फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का प्रसारण होगा सुबह 10:05 पर। श्रोताओं, अब जानकारी दे दे हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कल सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का अनुप्रसारण होगा 11 बजे से। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12 बजे से। संग्रहालय से यह कार्यक्रम अनुप्रसारित होगा कल दोपहर 12:30।

मिनट पर स्वास्थ्य दर्पण का प्रसारण होगा दिन में 1 बजे, लोक संगीत होगा 1:30 पर और सुगम संगीत का अनुप्रसारण होगा 1:45 पर। संध्याकालीन सभा में आकाशवाणी इंदौर से युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी होगा, संध्या 5 बजे आरंभिक चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस पर, साथ ही विश्व शतरंज दिवस पर भी आरंभिक चर्चा होगी। साथ ही आज के क्रम में कुछ बातें कुछ गीत हम आपको सुनवाएंगे। श्रोताओं फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा संध्या 6 बजे। सुगम संगीत में सुरेश वाडकर की गाई रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे 6:30 पर। और प्रादेशिक समाचार दर्पण दर्शन आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा संध्या 6:45 पर। ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होगा संध्या 7:20 पर। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगी रात 8 बजे। और सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा 8:15 पर। यह था विवरण कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। आकाशवाणी का इंदौर केंद्र, प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह विधेयक कल से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने से पहले 2 महीने तक जनता से प्रतिक्रिया ली गई, 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और समाज के सभी वर्गों से राय ली गई। डॉक्टर यादव ने बताया कि कुल 9,58,000 सुझाव प्राप्त हुए और 93% से अधिक लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी समान कानून की मांग की है। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के तहत राज्य में किसी व्यक्ति के एक से अधिक विवाह वैध नहीं होंगे। तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। महिलाओं और पुरुषों को समान वंशानुगत अधिकार प्राप्त होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण 1 महीने के भीतर कराना होगा। ग्राम स्तर तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। मंत्रिपरिषद ने 8 अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया। एक अन्य निर्णय में प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 898,96,00,000 रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। इन संस्थाओं में 1600 नियमित कर्मचारी और 71 संविदा कर्मचारी और 560 आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैठक के दौरान प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1460 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की।

0: मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से आरंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधानसभा भवन का अवलोकन किया। इस 5 दिवसीय सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप सहित अन्य मसौदे पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्षा जल की हर बूंद बचाने और देश भर में जल संरक्षण के अभियान को निरंतर गति देने के आह्वान के अनुरूप कैच द रेन अभियान 4 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों के पुनर्जीवन और जल के कुशल उपयोग के लिए निरंतर प्रयास, कृषि को सशक्त बनाने, ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
1: इसलिए मैं टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट, सॉस और केचप वगैरह बनाने के लिए भी और इसी के साथ साथ सोलर ड्रायर यूनिट के माध्यम से भी टमाटर को सुखाकर मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। झाबुआ का टमाटर आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कई क्षेत्रों में जा रहा है। 19,000 से अधिक हेक्टेयर में फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, औषधि फसलों का उत्पादन भी किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल किए जाने पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। संसद का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17, 21-17 से हराया। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की यह जीत देश भर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। श्रीहरिकोटा से 18 जुलाई को किए गए विक्रम-1 यान के प्रक्षेपण में बालाघाट जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रक्षेपण के दौरान वे मिशन टीम के साथ मौजूद रहे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एवं उनकी टीम के साथ इसरो में कार्यरत बालाघाट के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले की मौजूदगी जिले के साथ प्रदेश भर के लिए गर्व का विषय बन गई। डॉक्टर सौरभ पटले की इस उपलब्धि से जिले के युवाओं में विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति नई प्रेरणा का संचार हुआ है। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आसपास 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते जबलपुर, ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश की 4 दिवसीय तीर्थयात्रा

के लिए विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। शिवपुरी में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छोटे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से विद्यालय से जोड़ने को लेकर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। कृषि विभाग ने छतरपुर जिले के सभी किसानों से समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। नर्मदापुरम जिले में शनिवार को आयोजित वर्ष की प्रथम विशेष लोक अदालत में 143 लंबित प्रकरणों में से 120 की आपसी सहमति से निराकरण किया गया। झाबुआ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने पेटलावाद में सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। आगरमालवा जिले के ग्राम मोड़ी स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर 95 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 2.0 के अंतर्गत ग्राम अलहेड़ में पशुपालकों से संवाद किया गया। शिवपुरी जिले के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय करेरा में युवा संगम कार्यक्रम 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। खंडवा जिले में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय नींव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

अपना सुंदर मालवाना निमाड़ की तो वात ज निराली छे, नर्मदा छे जीवन रेखा ना निर्मल एको पाणी छे। सौंदर्य से लेने न संजा तक हमारा किसान भाई बहन की खेती किसानी छे, न खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सभी भाई बहन की मेजवानी छे। तो खेती गृहस्थी कार्यक्रम ख सुनना वाला सभी भाई बहनों को स्वागत छे, न आज आपका साथ में छे कार्यक्रम में प्रेरणा पहारे, तो स्वीकार करो हमारी राम राम। भाई बहनों आज अपन कार्यक्रम में वार्ता सुनांगा वृक्षारोपण विषय पर, न साथ जानांगा किसान भाई बहन का उपभोक्ता अधिकार काई छे, न नकली बीज सी किना प्रकार सी बची सकज, इना विषय पर भी जानकारी सुनांगा, न मनोरंजन का लेना अपन मालवा निमाड़ी न मालवी लोकगीत भी सुनांगा। भाई बहनों अपन अपना हर कार्यक्रम की शुरुआत दोंद दोंदाल्या न सोंड सोंडाल्या गणपति जी की पूजा न आराधना का साथ में करांज, तो अपन भी अपना कार्यक्रम की शुरुआत करांज न सुनांज ई लोकगीत जेख गाई रयाज फतेह सिंह परमार राही न साथी।

बेबनून अभी अपन लोकगीत सुनी रहा था जिका गाई रहा था फतेह सिंह परमार राही न साथी। बेबनून भारत का केंद्र सरकार न राज्य सरकार का द्वारा समय समय पर किसान भाई बहन का हित का लेना कई सारी योजना न चलाई जाए जैसे हमारा किसान भाई बहन का आर्थिक रूप से सहायता मिली सका न कई सारी योजना न असी भी छे जैसे खेती का साथ कई सारा उद्योग धंधा न भी हमारा जो किसान भाई छे उनका मदद मिला। तो असी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की किसान भाई बहन का लेना एक महत्वपूर्ण योजना छे। तो आज अपन

0: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से जुड़े बात करांगा। एक ही शुरुआत 25 सितंबर 2020 में हुई थी न एको संचालन मध्य प्रदेश का राजस्व विभाग द्वारा कियो जाई रहे हो। बेबन हुन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जैसी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी छे। किसान भाई बहन का आर्थिक रूप से सहायता देने का लेना मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। एकम प्रतिवर्ष 6000 रुपया की धन राशि 2000 रुपया में 3 किश्त का रूप में किसान भाई बहन का दी जाए। पीएम किसान योजना का साथ इन्हीं योजना को लाभ भी किसान भाई बहन उठाई सकज। बेबनहोन मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मुख्य उद्देश्य ईद छे कि किसान भाई बहन की आय में वृद्धि हुई सक न आर्थिक रूप से सहायता मिली सक। इना वर्ष 2026 का हमारे राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष का रूप में भी मनाई रही। किसान भाई बहन की आय में वृद्धि न कृषि का लाभकारी बनाने का उद्देश्य सीज असीज कई सारी योजना न पर काम चली रहे जेका जैसा कि दुग्ध उत्पादन ख प्रोत्साहित करना का लेना गोपालन नख गौशाला न डेयरी स्थापना का लेना सहायता प्रदान कियो जाई रहे न साथ ज मत्स्य पालन ख बढ़ावो दियो जाई रहे। किसान भाई बहन की आय का नवा अवसर सृजित हो इन्हा विषय पर काम कियो जाई रहे। बहन हूँ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में ऑफलाइन आवेदन करना का लेना दस्तावेज जो छे वो लिखी लियो। एका में लगा गा आधार कार्ड समग्र आईडी बैंक पास बुक की जो छाया प्रति छे वो लगेगा। भूमि को कागज जैसा कि खसरा खनौती ऐसा जरूरी दस्तावेज लगेगा। न ई एका में भाग लेना का लेना अपना पास का अपना क्षेत्र का जो पटवारी छे या कृषि विभाग को जो कार्यालय छे या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाइने न संपर्क करी सकोज। ऑफलाइन आवेदन वहां से प्राप्त करी सकोज। न मांगी गई जो भी जानकारी छे ओकमा स्पष्ट रूप से भरो जैसा कि नाम पतो आधार नंबर समग्र आईडी भूमि को कागज खसरा खतौनी को कागज मोबाइल नंबर आधार नंबर भी ऊ दीजो जो कि आधार कार्ड से जुड़ेल होए। ये सब जानकारी स्पष्ट रूप से आवेदन पत्र में भरा न कार्यालय में या जो पटवारी छे उनका पास में जमा करी न पावती ले लेवा। उनका द्वारा SAARA पोर्टल पर आपको दस्तावेज को सत्यापन किया जाएगा। SAARA जो छे वो किसान कल्याण योजना जो छे वो पोर्टल छे। तो एकामा जाइन न आप मोबाइल नंबर का सहायता सी घर पर जाइन न भी एकामा जो भी SAAR पोर्टल में जाइन न अपना आवेदन की जो स्थिति छे वो देखी सकोज। और अधिक जानकारी का लेना अपना पास का जो भी राजस्व विभाग को कार्यालय छे वहाँ जाइन न संपर्क करी सकोज या मध्य प्रदेश राजस्व विभाग को जो हेल्पलाइन नंबर छे ओका में संपर्क करी सकोज। तो हेल्पलाइन नंबर नोट करी लो 0755270822 0755270822 बेबन होन अपनी बात ना अरु चलगा आगा अपन एक वार्ता सुनी लेवांज जेको विषय छे वृक्षारोपण न वार्ताकार छे प्रगतिशील कृषक भाई कमलेश पारे हरदासी। तो अपन सुना ई वार्ता।
1: मैं कमलेश पारे हरदा से। आज हमारे देश की चुनौती बढ़ता तापक्रम और नदियों का जलस्तर कम होना एक चुनौती बन के हमारे सामने आई है। हमने देखा कि हमारे पूर्वजों के जमाने से बहती हुई नदियाँ विलुप्त हो गई है। अब सारा भार हमारी बड़ी नदियों पर आ गया है और वे नदियाँ भी या तो प्रदूषित हो गई है या उनका जलस्तर घट गया है। दूसरा हमारा तापक्रम, उस तापक्रम को भी हम लोगों ने हमारे प्रयासों के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। इन सब के लिए हमें एकमात्र सर्ववैज्ञानिक इसका हल है पौधारोपण। तो पौधारोपण करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग ऐसे पौधों का चुनाव करें जो पौधे 3 या 5 वर्ष के हो। कारण यह है कि ऐसे पौधे प्रकृति से अपना अनुकूलन बना लेते हैं और ऐसे पौधों का जीवित रहना बहुत यानी ये मानिए आप लोग कि अवश्य हो जाता है। ऐसे पौधे यानी पेड़ बन ही जाते हैं। एक छोटा सा पौधा यदि हम मिट्टी में लगाते हैं तो वर्षा काल में आसपास की जितनी खरपतवार आएगी उसको निंदाई गुड़ाई तो हम कर पाए या न कर पाए, लेकिन वो खरपतवार क्या होता है उस पौधों को नष्ट खुद ही खा जाती है, खत्म कर देती है। लेकिन ये 3 से 5 वर्ष का जो हमारा पौधा होगा ये बहुत जल्दी पेड़ बनेगा। आप लोग उसको पेड़ के रूप में बहुत जल्दी देख पाएंगे। साथ में जब हम पौधा लगाते हैं तो इसके साथ में हमको एक सपोर्टिंग लकड़ी बांस की या कुछ भी इसको लगाइए, इसको उसको रस्सी से बांध दीजिए इस पौधे के साथ। अभी ट्री गार्ड के बारे में यदि कहूँ तो ट्री गार्ड काफी महंगा होता है।

0: लेकिन देवघाट के लिए सॉल्यूशन उसका भी है कि हम लोग कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो गाय या बकरी नहीं खाती, जैसे कि करंजी है, बड़ा गुलमोहर है या पदम है, तो ये बकरियां नहीं खाती है और ऐसे पौधे बहुत जल्दी पेड़ बन जाते हैं। तो हम पौधारोपण की दिशा में ऐसे पौधों का चुनाव करें, ऐसे पौधों को लगाएं, खाली स्थानों पर लगाएं जहाँ पर जगह हमें दिखती है, पानी का साधन हो, गर्मी में पानी दे सकते। तो बहुत कोई कठिन काम नहीं है ये, और करना सभी से मेरा निवेदन है कि वर्षा काल में जरूर से जरूर पौधारोपण करें। धन्यवाद।
1: अभी अपन वार्ता सुनी रहा था वृक्षारोपण विषय पर, न बहुत अच्छी जानकारी मिली अपन नख, न जानकारी दे रहा था प्रगतिशील कृषक भाई कमलेश पारे जो कि हरदासी थे। वैभनहून कार्यक्रम में अपन वृक्षारोपण से जुड़ेल जो अभी इतनी अच्छी जानकारी सुनी, तो एकासी जुड़ेल एक अपन लोकगीत भी सुनी लेवांच, जेका गाई रही हेमलता उपाध्याय ने साथी।

0: पैबिनोन जल संरक्षण, वर्षा जल को संरक्षण, अपना पर्यावरण को संरक्षण न वृक्षारोपण अपनी भावी पीढ़ी का लेना घणो जरूरी है। ये बात तो अपन का मालूम है न पैबिनोन, आपका मालूम है कि हम समय समय पर आप लोग न का लेना नवी नवी जानकारी न नवा नवा विषय लेने ना आवाज, ताकि हमारा किसान भाई बहन न उनका से लाभ ले सक। तो उनाज क्रम में आज अपन एक अरु जानकारी सुनांगा, किसान भाई बहन न का उपभोक्ता अधिकार काई छे, न नकली बीज से किना प्रकार से बची सकज। तो इना विषय पर जानकारी दे रही पूर्वी पगारे जो कि अधिवक्ता छे इंदौर सी, तो अपन सुना ई वार्ता।
1: नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता पूर्वी पगारे आप सभी का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम सभी किसान भाई बहनों के लिए एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करेंगे, किसान के उपभोक्ता अधिकार और नकली बीज से कैसे बचें। साथियों, खेती पूरी तरह बीज पर निर्भर होती है। अगर बीज अच्छा हो तो मेहनत रंग लाती है, लेकिन अगर बीज खराब या नकली निकला तो पूरे सीजन की मेहनत और खर्च दोनों पर पानी फिर जाता है। कई बार किसान भाई बहन अनजाने में ऐसे बीज ले आते हैं जो असली दिखते हैं, लेकिन बाद में खेत में जाकर पता चलता है कि बीज के अनुकरण ही नहीं दिया गया था, पौधे कमजोर निकल गए। इसलिए आज हम समझेंगे कि नकली बीज क्या होते हैं, उसे कैसे पहचाना जाए और नुकसान होने पर किसान क्या कर सकता है। क्योंकि याद रखिए, कानून हर किसान को सुरक्षा देता है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि नकली बीज क्या होते हैं। नकली बीज वह होते हैं जिनमें कंपनी का नाम गलत हो, लाइसेंस या बैच नंबर ना हो, अनुकरण क्षमता झूठी लिखी गई हो, या पुराने स्टॉक को नए पैक में भरकर बेच दिया गया हो। देखने में पैक सुंदर और नया लगे पर अंदर का माल खराब हो, तो वह किसान को बहुत बड़ा नुकसान देता है। ऐसे बीजों को कानून के तहत नकली माना गया है। ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है पहचान की। नकली बीज से बचने का पहला तरीका यही है कि बीज हमेशा सील बंद पैकेट में ले। पैकेट पर कंपनी का नाम, लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, पैकिंग और एक्सपायरी तिथि, अनुकरण प्रतिशत और कीमत, ये सब साफ साफ लिखा होना चाहिए। अगर पैकेट पर ये जानकारी गायब है, धुंधली है या उलझी हुई है तो सावधान हो जाएं। और सबसे जरूरी, बीज खरीदते समय बिल अवश्य लें। खुला बीज या बिना बिल का बीज हमेशा जोखिम भरा होता है। कई बार किसान भाई जल्दी में खुला या बहुत सस्ता बीज ले आते हैं, लेकिन आगे चलकर वही सस्ता बीज पूरे खेत में भारी नुकसान कर देता है। अब अगर नकली या खराब बीज खेत में डाला जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अनुकरण कम हो जाता है, पौधे कमजोर पड़ जाते हैं, फसल आधी रह जाती है, कई बार तो पूरे खेत में दोबारा बुनवाई करनी पड़ती है। इससे पैसे, समय और मेहनत सब बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात याद रखने की ये है कि किसान सिर्फ उत्पादक नहीं बल्कि उपभोक्ता भी है, और इसीलिए किसान को उपभोक्ता कानून के तहत पूरा संरक्षण मिलता है। बीज नियंत्रण आदेश 1983 के

0: अनुसार किसी भी कंपनी या विक्रेता को घटिया या नकली बीज बेचने की अनुमति नहीं है। किसान को सही गुणवत्ता वाला बीज पाने का अधिकार है, पूरी जानकारी पाने का अधिकार है, बीज खराब निकले तो शिकायत करने का भी अधिकार है और नुकसान होने पर मुआवजा पाने का भी अधिकार है। अगर कंपनी या डीलर गलती करता है तो किसान को उसकी भरपाई मिलनी ही चाहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, अगर बीज खराब निकल जाए तो किसान क्या करे? पहला कदम है खरीद का बिल और पैकेट संभाल कर रखें। बिल आपके अधिकार की चाबी है। दूसरा, जैसे ही खेत में खराबी दिखे, जैसे कम अनुकरण, असमान पौधा या पौधों का सूखना, तुरंत फोटो और वीडियो बनाएं। ये सबूत बाद में बहुत काम आते हैं। तीसरा, अपने क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकार उप संचालक कृषि या कृषक विज्ञान केंद्र को तुरंत जानकारी, वे आपके खेत का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। चौथा, बीज का नमूना राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है, यह रिपोर्ट आपके केस को मजबूत बनाती है। पांचवा, यदि बीज दोषपूर्ण साबित हो जाए तो किसान कंपनी से मुआवजा मांग सकता है। यह मुआवजा नई बुनवाई, श्रम, खाद दवाई या अनुमानित उपज के नुकसान सबका हो सकता है। और छठा, यदि कंपनी या विक्रेता सहयोग न करें तो किसान उपभोक्ता फोरम, कृषि विभाग या राज्य बीज नियंत्रण कार्यालय में शिकायत कर सकता है। इसमें वकील रखना भी जरूरी नहीं, किसान स्वयं भी आवेदन दे सकता है। साथियों, नकली बीज से बचने के लिए छोटी छोटी सावधानियां हमेशा याद रखनी चाहिए। बीज सिर्फ लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ही लें, बहुत सस्ते अनब्रांडेड बीज से बचें, नई किस्म में कृषि विभाग की सलाह से ही अपनाएं और हर हाल में बिल और खाली पैकेट पहले ही फाइल में रखें। याद रखिए, सावधानी आपकी सुरक्षा है और कानून आपके साथ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नकली बीज सिर्फ जमीन को नहीं बल्कि किसान की मेहनत और उम्मीदों को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सही जानकारी, सही साक्ष्य और सही कार्रवाई, ये तीनों चीजें किसान को मजबूत बनाती है और न्याय दिलाती है। सरकार और कानून दोनों किसानों के अधिकार की रक्षा करते हैं, बस जरूरत है जागरूकता की। मैं हूं अधिवक्ता पूर्वी पगारे। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।
1: किसान भाईना का उपभोक्ता अधिकार कई छे ने नकली बीज से एक किसकिना प्रकार से बची सकच, इन्हा विषय पर अभी अपन वार्ता सुनी रहा था न जानकारी दे रही थी पूर्वी पगारे अधिवक्ता इंदौर से। नभाइबन होन कार्यक्रम में समय छे एक अरु लोकगीत सुनना को, तो अपन सुनाज ई लोकगीत जेखा गाई रहा रतन दास बैरागी ने साथी।

भाई बहनों, माँ नर्मदा जी की स्तुति अपन इतना अच्छा लोकगीत का साथ में सुनी जेखा गाई रहा था रतन दास बैरागी ने साथी। भाई बहनों, अपन देखी रहे आज की वर्तमान में प्रदेश में व्यापक मात्रा में वर्षा नहीं हुई, एका कारण सभी जगह पर सूखा की स्थिति निर्मित हुई गई। ऐसी परिस्थिति में कई सारा किसान भाई बहन की खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहे, फसल न की अपेक्षित बढ़वार भी नहीं हुई पाई रही है। तो कदी एक सप्ताह तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो फसल का अरु अधिक नुकसान हो सकज। तो ऐसी परिस्थिति में कृषि वैज्ञानिक न की सलाह का आधार पर कुछ संसाधन अपनाई न फसल का नुकसान होने से अपन बचाई सकांज। जैसा कि सबसे पहले तो असी व्यवस्था खेत में करा जेका सी भूमि की नमी का लंबा समय तक संरक्षित किया जा सक। कई किसान भाई बहन फसल बोने का साथ ज ई प्रक्रिया करी लेज। भूमि में उपलब्ध नमी का संरक्षण का लेना मल्चिंग सबसे बेहतर विकल्प छे। जैविक संसाधन न की सहायता से मल्चिंग की जा सकज। भाई बहन, फसल में मल्चिंग को अर्थ छे कि मिट्टी की नमी न तापमान का नियंत्रित करने का लेना प्राकृतिक या कृत्रिम संसाधन नसी ढकनू। एका लेना जैविक या प्राकृतिक मल्च, पुआल, सूखी घास, पत्ती न फसल का अवशेष, लकड़ी को बुरादो या लकड़ी का टुकड़ा मिलाई ने न मल्च तैयार किया जा सकज। एको उपयोग पूरा खेत में समान रूप से एक साथ करा। ई धीरे धीरे सड़ी न मिट्टी का प्राकृतिक खाद न ह्यूमस भी प्रदान कर देगा जेका सी भूमि की जो नमी छे न जल धारण क्षमता छे उ बढ़ेगा। अपना खेत में खरीफ फसल की सुरक्षा का लेना कृत्रिम मल्च को उपयोग भी किया जा सकज। बैबन होन, एक अलावा मिट्टी का कंपोस्ट, गोबर की खाद या केंचुआ खाद का मिट्टी में मिलाई न भी माटी की जल धारण क्षमता का अपन बचाई सकाज। बैबन होन, माटी में नमी संरक्षण का लेना वाष्पीकरण का कम करनू न पानी का बहाव का रोकनू आवश्यक छे। एका में खेत की मेड़ बंदी करी देवा जेका सी संतुलित जुताई भी करी देवा। कहने को मतलब छे कि खेत की नमी का खेत में रुकी जाए ऐसी व्यवस्था करा। एका साथ ज गर्मी का तनाव से बचाना का लेना खड़ी फसल में पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट 1-2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाई न छिड़काव करी सकोज। पोटाश पौधा का अंदर पानी की जो मात्रा छे ओका संतुलित करज। सबसे जरूरी बात छे कि पूरा खेत सी खर पतवार नख निंदाई गुड़ाई का माध्यम से हटाई देवा, क्योंकि जो अनावश्यक पौधा छे वो भूमि सी पोषक तत्व न पानी का खींची लेज जेका सी मुख्य फसल का भारी नुकसान हुई सकज। अभी का समय में ये जरूरी छे। निकाला गया खरपतवार का जैविक मल्च का रूप में अपन उपयोग करी सकाज। कम बारिश में फसल का बचाव का लेना सबसे अंतिम विकल्प छे सिंचाई। टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई प्रणाली को उपयोग करना सी एकासी पानी की बचत भी होएगा न टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीक को उपयोग करा। भाई बहनों, टपक सिंचाई में पानी न पोषक तत्व का बूंद बूंद करीने न पौधा तक पहुँचायो जाए जेकासी जो टपक सिंचाई छे एका में 70-95% तक पानी की बचत हुई सकज। न फव्वारा सिंचाई भी आधुनिक

भवन होन हरिहरेश्वर पोद्दार ने साथी नसी ये अपन लोकगीत सुनियो एक साथ कार्यक्रम को समय पूरा हो गयो तो आज्ञा देव आपकी बहन प्रेरणा पहारे का राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान श्रोता कार्यक्रम खेती गृहस्थी मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
3: नमस्कार श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसरो की दशकों की उपलब्धियों के साथ अब प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमताओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की अर्थव्यवस्था, नवाचार और आत्मनिर्भरता को किस दिशा में ले जा रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। डॉक्टर काले, आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद।
3: इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम से जुड़कर उन्हें बधाई दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
5: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। स्काईरूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया।
3: डॉक्टर काले, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसके तेजी से उभरने की प्रमुख वजह क्या है।
4: जब से इसरो ने काम चालू किया था, तब से एक देखा था कि सभी काम जो है उसकी जो संस्था है, जो सेंटर से, वहां नहीं हो सकता है। कुछ तो काम जो है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है, वो सब जो अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां होना चाहिए। और इसी से लेकर हमारे जो रॉकेट्स है, लॉन्च व्हीकल्स है, उसके जो बड़े जो सामान होते हैं वो सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं। और ये जब अपने इंडस्ट्री में बनते थे तो वो भी देखा था कि बहुत सारे उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सिस्टम्स लगते हैं, मैकेनिकल जो होता है, वो सब काम इंडस्ट्री में तो होता ही है, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्री ने भी इसमें हाथ भर लगाने के लिए प्रयत्न किए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा लॉन्च व्हीकल जो है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया और उसका कल प्रक्षेपण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और वो अंतरिक्ष में उसके कक्षा में जाकर स्थित हुआ है। तो पूरे लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए जो भी कुछ इंडस्ट्री लगती है, जो भी कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है, वो सभी काम ये प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम यानी पहले से लेकर अंत तक सब जो काम है वो बाहर हो सके। और मुझे खातरी है कि ये काम इस तरीके से करने के लिए सिर्फ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं, मगर बाकी सब इंडस्ट्री जो है इसके लिए काम करने वाली उसका भी उसमें हाथ भर होता है और इसको ही हम स्पेस स्टार्टअप की इकोसिस्टम कह सकते हैं।
3: जी, आपने अभी स्काईरूट एरोस्पेस

0: के विक्रम 1 प्रक्षेपण का उल्लेख किया है और ये अभी भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या इस सफलता को हम मान सकते हैं कि इससे भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी?
1: ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है और इससे प्रेरणा लेकर और भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। मुझे खातरी है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो भी इसमें आगे जाकर भाग ले सकते हैं। एक बहुत पहले मैंने यहाँ देखा था कि पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहाँ के सब विद्यार्थियों ने मिलकर एक उपग्रह भी बनाया था। ऐसे जो उपक्रम होते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है और खातरी मिलती है कि जो काम चालू किया था वो आगे भी अच्छी तरह से चालू रह सकेगा।
0: जी, और हमने देखा है जैसे पिछले कुछ समय में जो हमारी अंतरिक्ष नीति है देश की, उसमें कई तरह के सुधार आए हैं जिनसे स्टार्टअप्स के लिए ये वातावरण तैयार हुआ है और वो अच्छा काम भी करके दिखा रहे हैं। क्या जो इस तरह के सुधार हैं, जो नीतिगत सुधार हैं, वो हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने में सहायक साबित होंगे?
1: इस तरीके की जो नीति है उसे हम आगे जाकर अगर जो हमारे देश के लिए नहीं लेकिन और भी देशों के लिए उपग्रह बना सकते हैं, उनके लिए रॉकेट्स बना सकते हैं, उनके उपग्रह जो वो बनाते हैं वो हम अपने यहाँ के लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके उनको अंतरिक्ष में भी भेज सकते हैं। मुझे खातरी है कि अभी जो प्रेरणा मिलेगी लोगों को तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे।
0: जी डॉक्टर काले, ये आज भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट निर्माण, पृथ्वी अवलोकन, संचार, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आपको इनमें सबसे अधिक संभावनाएं किस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं?
1: एक तो मुझे लगता है कि जो इसरो ने चालू किया था कि पहले SLV तैयार किया, उसके बाद में ASLV तैयार किया, PSLV तैयार किया, मगर ये सब एक एक करके बहुत बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल हो गए। तो उसके बाद अगर जो कोई छोटा उपग्रह है उसके जो लॉन्च करना है तो उसके लिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है इसरो ने। अगर ऐसे लॉन्च व्हीकल जो है, जो छोटे लॉन्च व्हीकल है जिनका उपयोग बहुत जल्दी से हो सकता है, ऐसे लॉन्च व्हीकल हम अपने देश के लिए नहीं लेकिन बाकी सब देशों के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बना सकते हैं और उसमें ही मुझे लगता है कि हमें और प्रगति होगी।
0: जी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो अब तक जैसा भी हमारे यहाँ चल रहा था, अगर कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रम या उससे जुड़ा हुआ जो कुछ क्रियाकलाप था वो इसरो तक सीमित था। अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि अब निजी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, सब इसमें शामिल हैं, सबके लिए रास्ते खुल गए हैं। हम अगर भविष्य की बात करें, निकट भविष्य की, अगर एक दशक की या उससे कुछ अधिक, तो इस बदलाव से जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है क्या उनको गति मिलेगी, उनको तेजी मिलेगी?
1: प्राइवेट इंडस्ट्री ने अभी जो करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे आगे जाकर जो भी कुछ सामान बना सकते हैं उसका टेस्टिंग करना जो है उसके लिए अभी भी इसरो की मदद लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी कुछ टेस्टिंग करना है वो भी अगर जो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आगे जाकर कर सकेगी तो इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार होगा। और ऐसे टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलकर जो कर सकेंगे तो और भी अच्छा होगा।
0: जी, और अक्सर कहा जाता है कि आने वाले समय में स्पेस डेटा एक नई अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तो अगर हम कुछ क्षेत्रों पर गौर करें, जैसे कृषि क्षेत्र है या डिजास्टर मैनेजमेंट है या शहरों की योजना बनाने, शहरी नियोजन है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, इनमें ये जो चार क्षेत्र हैं इनमें स्पेस डेटा से कैसे हमें सहायता मिल सकती है?
1: डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हम जो बात करें तो जब भी चाहे तब अगर जो उपग्रह को जो लॉन्च करना होगा इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री का ये छोटा उपग्रह बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें बहुत आगे जाकर बहुत ही काम कर सकते हैं। अगर जो शहरी व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्थापना करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपग्रह जो मिल सके तो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
0: जी, और बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ कृषि भी, तो क्या खेतीबाड़ी में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है?
1: हाँ, हो सकता है। जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट से ऐसे सैटेलाइट जो हम बना सकेंगे और भी ज्यादा तो उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि हर रोज अगर जो कोई हमें जो इमेज मिल सके कोई भी खेती क्षेत्र की तो उससे हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है और वो जानकारी जो है वो सब अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन तक जो पहुंच सके तो बहुत अच्छा होता है। और ये पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जरूरत है वो भी अच्छी तरह से आगे जाकर बना सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री।

0: और उसका उपयोग करना जो है वो भी वो कर सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर काले, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां रही हैं, भू राजनीतिक कई जगह तनाव रहे हैं, कई जगह सैनिक कार्रवाई चल रही है पूरी दुनिया में, ऐसे में सैटेलाइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, इसकी भूमिका पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
0: ऐसे जो सैटेलाइट्स है जो हमें इसके लिए काम में ला सकते हैं, तो ये सैटेलाइट जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे सैटेलाइट्स, छोटे जो सैटेलाइट्स है, बड़े भी सैटेलाइट्स है, ऐसे हम बना सकते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री का जो सहभाग आगे लेकर जो कर सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ सैटेलाइट्स बड़े बनाने से ये काम नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत ही सारे और भी तरीके के उपग्रह की जरूरत होती है और ये उपग्रह लॉन्च भी करना जल्दी से होता है, तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ही सहभाग होगा।
1: जी, और भारत अभी वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे की ओर अग्रसर है भी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और हमारे सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं?
0: इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि सबको अभी पता है कि भारत ये कर सकता है, लेकिन उनको जो जल्दी से कुछ करना होगा तो हम कर सकेंगे कि नहीं, इस पर ये लोगों का विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होगा। जो भी कुछ काम कर सकते हैं वो अच्छा करना है, टाइम पे करना है, और जो उसके लिए जो कुछ फंडिंग लगेगा वो भी हम मिला सकते हैं, अगर इसके लिए अच्छी तरह से ये काम करना होगा और जो टाइम सर करना होगा।
1: जी, हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि निवेश की भी जरूरत होती है, अनुसंधान भी चाहिए और उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग भी जरूरी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत को अभी और क्या कदम उठाने चाहिए?
0: एक तो मैंने भी इतने सालों से देखा है कि रिसर्च के लिए जो फंडिंग लगता है वो फंडिंग कमती हो रहा है, जो अपने यहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक जाकर पहुंचना चाहिए, अगर जब वहां तक जो ये पहुंच सके अच्छी तरह से तो ये इनोवेशन का काम और भी अच्छी तरह से आगे चल सकेगा।
1: जी,
0: इसके लिए जो भी कुछ रिसर्च फंडिंग है इसरो की है, दूसरे डिपार्टमेंट की भी है, डिफेंस की भी है, तो उन्हें अपने यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनके यहाँ जाकर अच्छी तरह से काम, यूनिवर्सिटी में जो हो सके तो उसके लिए विद्यार्थी भी मिल सकते हैं, काम करने के लिए लोग भी मिल सकते हैं, और ये लोगों को जो प्रेरणा मिले तो वो आगे जाकर ये जो स्पेस इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही हाथ भार लगा सकते हैं।
1: जी, और दुनिया में हम लगातार देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में गतिविधियां तो काफी बढ़ गई हैं, कई देश इसमें बहुत सक्रिय हैं, इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी नई चुनौतियां दिख रही हैं स्पेस में, जैसे कचरा बढ़ गया है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ रही हैं और रेगुलेशंस से जुड़े हुए भी कई चैलेंजेस हैं। तो अभी हम भारतीय स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होंगे आने वाले दिनों में?
0: उनके लिए एक तो आगे जाकर जो देखना है कि हमें जो दूसरे के देशों के लिए हम कुछ बना सकते हैं तो वो अच्छी तरह से बनाना है, ये तो सही है, मगर उनके रूल्स और रेगुलेशंस को का भी पूरा पालन होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि अपने देश के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसका तो पालन ये करेंगे ही, लेकिन वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनका अच्छी तरह से समझ पहुँचना चाहिए। और इसके लिए अगर जो यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ जो ऐसे कुछ प्रोग्राम हो कि कौन से देश में कौन से तरीके रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटरनेशनल स्टडीज जिसे कह सकते हैं उसका उपयोग करके हमारे स्टार्टअप्स और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैसी तस्वीर देखते हैं? क्या भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्पेस इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है?
0: हाँ, बन सकता है, मैंने अभी जैसे कहा, तो ये इसके लिए जो भी कुछ करना है काम उसके लिए रिसर्च लेबोरेटरीज चाहिए और जगह चाहिए, और ये जगह जो है वो एक आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज तक जो पहुंच सके तो ये अच्छी तरह से काम आगे हो सकता है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी सुना, भारत का उभरता स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद काले जी, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा।

0: इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रस्तुति है आकाशवाणी छिंदवाड़ा की।

0: विकास की।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, देश की तरक्की का रास्ता हमारे गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है। ग्रामीण भारत की समृद्धि हमारे राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुमूलन, वित्तीय समावेशन और स्थायी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को, विशेषकर महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। कहा जाता है कि जब आप एक व्यक्ति को सशक्त करते हैं तो केवल एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन जब आप ग्रामीण भारत की महिला शक्ति को सशक्त करते हैं तो पूरा समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गाँव की महिलाओं में, उनके परिवारों में किस तरह का सकारात्मक बदलाव ला रहा है और इस योजना की कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं रेखा हिरवार, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला छिंदवाड़ा।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वसहायता समूह के माध्यम से उन्हें संगठित करना और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात उनके पसंद के अनुसार आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
3: इसमें स्वरोजगार शुरू करने के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाता है और युवाओं को भी जोड़ा जाता है क्या?
2: हाँ, इस योजना में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको, अगर वो दीदी कोई आजीविका के माध्यम से कोई गतिविधि करना चाहती है तो उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। जिला स्तर पर हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम CTC कहते हैं। ये हमारा तामिया में है और ये CTC को हमारी जो CLF है वो CLF ही उसको संचालित करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की लाइवलीहुड से संबंधित, उनके सशक्तिकरण से संबंधित, लेखा संधारण और विभिन्न प्रकार की उनको गतिविधियों से संबंधित उनको वहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। और जैसा कि आपने प्रश्न पूछा मुझसे कि स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए क्या है, तो ग्राम के जो हमारे बेरोजगार युवा युवतियां हैं जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में रहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसा हमारा कि एक

0: चार्जशीट है हमारा जिला लेवल पे और सेंट्रल बैंक की, उनके स्वरोजगार के लिए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेडों में ट्रेनिंग होती है, ब्यूटी पार्लर हो गया और क्या बोलते हैं मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, और उनका लघु उद्यमिता से संबंधित जैविक सब्जी उत्पादन, विभिन्न प्रकार के ऐसे विषयों से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग के बाद में वो अपने स्वरोजगार को स्थापित कर देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विकासखंड स्तर पे भी विभिन्न प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कंपनियां आती हैं और उनका साक्षात्कार होता है, वो युवाओं का चयन करके और उनको भी प्लेसमेंट दिया जाता है और वो अच्छे से मतलब कंपनियों में जाके अभी अपना नौकरी करते हैं।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम संगठन भी काम कर रहे हैं, तो इनकी क्या भूमिका है?
0: ये ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत में हमारे जो विलेज हैं, विलेज लेवल पे भी हमारे ग्राम संगठन बने हुए हैं। इस ग्राम संगठन में कम से कम 3 SHG और अधिकतम 20 SHG ये हैं जो संगठित रूप से ये कार्य करते हैं। इस ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है। इसमें समूह की जो दीदियां बहनें हैं वो अपने अनुभवों को आदान प्रदान करती हैं और सीखती हैं।
1: इस मिशन में डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन बैंकिंग को भी महत्व दिया जा रहा है क्या?
0: हाँ, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको हम लोग वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, और जो भी उनका जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो दीदियां अपना मतलब चेक के माध्यम से ही पेमेंट करती हैं, और चेक के माध्यम से या RTGS हो गया, या फिर जैसे कि विभिन्न प्रकार के हमारी दीदियां स्वरोजगार कर रही हैं, आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हैं, जो अपने पेमेंट लेती हैं वो दीदियां, तो वो भी उसमें भी QR कोड के माध्यम से ही पेमेंट करती है। तो पूर्णतः ये हम लोग डिजिटल राशियां उपलब्ध करा दी जाती है, चाहे RF हो, चाहे CIF हो, CCL हो, और इनको भी आजीविका गतिविधि से जोड़ने का अवसर हमारे द्वारा प्रदान किया जाता है।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत में गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की आधारशिला बन गया है। इसमें औपचारिक ऋण, कौशल और बाजार के अवसरों तक पहुंच का विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सुदूर ग्रामीण अंचलों में गरीब परिवारों को संगठित कर रहा है, उन्हें बैंकों से जोड़ रहा है और आजीविका के स्थायी साधन प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। इस मिशन के अंतर्गत महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं, उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल लेन देन, कौशल विकास और प्रशिक्षणों द्वारा स्वावलंबन को अपना रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं अजय कांत तिवारी, शाखा प्रबंधक, महाराष्ट्र बैंक, छिंदवाड़ा।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पूरा एक ग्रुप बनता है जिसमें महिलाओं को जिस भी कार्य के लिए वो चाहती हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग हो गया, पशुपालन हो गया, और भी प्रकार के लोन जो ग्राम में और छोटे कस्बों में जो वो कर सकती हैं, जैसे कि आपकी टोकरी बुनना हो गया, इस तरह के कई कार्य जो हो सकते हैं जिसके लिए हम उनको ऋण प्रदान करते हैं। पहले क्या करते हैं कि उनसे एक हमको कुछ दस्तावेज उनसे मांगते हैं, जैसे कि उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है उनका NURLM में, वहां से हमको एक बैंक सखी होती है, बैंक सखी के माध्यम से हमको जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक में जमा होते हैं। उसमें मुख्य रूप से उनका पंजीयन जो हुआ है वो हो गया, उसमें मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं, जैसे कि आपका अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गए और कोषाध्यक्ष हो गया। इन सब का हम आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते हैं, इसका हम वेरिफिकेशन करते हैं और उसकी मीटिंग का एक हम मजमून लेते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कुल कितनी महिलाएं हैं जो कि इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके आधार पर हम जितने भी इनके जो संगठन के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जैसे अध्यक्ष हो गया, आपका सचिव हो गया और कोषाध्यक्ष हो गया, इनके जो ऑफिस इन्होंने यहाँ बताया है वहां जाते हैं, वहां उसको सत्यापित करते हैं। उसके अलावा इनके घरों का सत्यापन होता है और जहां ये मुख्य रूप से अपना रोजगार या जो भी ये व्यवसाय कर रहे हैं वहां जाकर भी हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम जाकर के हर 2-3 महीने के अंतर पर उन जगहों पर जहां हमने पहली बार सत्यापन किया है फिर जाकर के उसको वेरीफाई करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो आपके संगठन की महिलाएं हैं वो कहां कहां कार्य कर रही हैं, और फिर हम वहां वहां जाकर भी उसको सत्यापन करते हैं कि ये यहां पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास बैंक सखी जो महिलाएं हैं जो कि इन सब का हमें दस्तावेज देती हैं, जो इनके बारे में हमें बताती हैं कि ऐसे ऐसे ये आ रहे हैं वो हैं, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी भारत सरकार की जो ये स्कीम है इसके थ्रू लाभान्वित हों और अपना उन्नयन करें।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के समेकित विकास और जीवन स्तर में गुणात्मक सुधारों के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन के अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर रहा है। स्थायी आजीविका के अवसरों ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को नई दिशा दी है, इससे गाँव में निवास करने वाली महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन अब स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी हो रहे हैं। महिला

0: सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए इस मिशन ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध किया है बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और गौरव को भी एक नई पहचान दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कार्य करने वाली इन हितग्राही महिलाओं से हमने बात की और इनसे इनके अनुभवों को जान।
1: रजनी डहरिया भाना देई, शारदा स्व सहायता समूह। ये अपना जो NRLM है, आजीविका मिशन जनपद, वहाँ से जुड़ी हूँ। हमारे ये श्री कपिल पटवा सर हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया है। पूरा समस्त स्टाफ बहुत अच्छा है वहाँ का भी। 12-15-10 दीदियों को जोड़ना है, तो पहले ये फील्ड वर्क की मैंने, ये अपन को समूह में जोड़ना है करके पहले पूछ रही थी कि दीदिया क्या फायदा मिलेगा। तो मेरी, आपको फायदा मिलेगा, आप इसमें जुड़िए। 100-100 रुपए आप लोग को हर महीने जमा करना पड़ेगा और 3 महीने के बाद फिर अपन को RF की राशि, CIF की राशि और 6 महीने बाद अपना बैंक से लोन हो जाएगा और बैंक में खाता खुलेगा इसका, समूह का। सब दीदियों ने लिए हैं, तो कुछ कुछ में लगाई हैं दीदिया लोग ने। मैंने भी अपना जो रोजगार है उसमें लगा ली पैसा भी। दीदियाँ कुछ जरूरत है कृषि में, पशुपालन में, दुकान में, उसमें व्यय करती हैं दीदिया लोग। फायदा तो काफी, आर्थिक स्थिति जो थी हम वो सुधरी। जैसे अपन जैसे काम कर रहे हैं, पहले अपन को ये इसका लाभ नहीं मिलता था, पैसे जैसे पेमेंट से काम कर रहे हैं तो इसका अपन को राशि मिलने लगी है। दीदियाँ काम कर रही हैं, पढ़ी लिखी, जो सभी को राशि मिलने लगी। और अपने जो सर आए हैं, सर के आने से काफी परिवर्तन हुआ है अपने आजीविका मिशन में, पहले नहीं था। बकायदा राशि मिल रही है उनको, तो दीदिया लोग आत्मनिर्भर बन गई है, सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी है। जब दीदिया लोग जुड़ती है तो प्रोत्साहित होती है जुड़ने के लिए। काफी दीदिया लोग जुड़ गई और बहुत सारे नए समूह बन रहे हैं नदे में भी, गाँव का विकास होगा
2: जी। मेरा नाम संगीता यादव है, ग्राम कुंडा, तहसील चौरी, जिला छिंदवाड़ा। हम लोग दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर। स्व सहायता से समूह से जुड़े हैं, उससे लोन लेके उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे स्व सहायता समूह का नाम सागर, हम 11 बहने हैं। स्व सहायता समूह बनाने के लिए हमारी नोडल मैम है एक, अनिमा मिंज, 2018 में आई हुई थी यहाँ। गाँव में फील्ड करने आई तो हमसे संपर्क हुआ उनका कि ऐसा ऐसा है, आप जुड़ो, समूह खुलाओ खाता। तो फिर हम लोग ने खुलाए तो हमको काफी अच्छा बेनिफिट मिला था। हम हर साल उससे फिर लोन लेते जा रहे हैं। हमारी इसमें ज्यादा बहने जो है दुकानें वाली हैं, किसी का बुक डिपो है, किसी का फिर जनरल स्टोर है, किसी किराना दुकान है, एक दो जो है पान ठेला वाली भी है हमारी इसमें। सभी को जरूरत पड़ती तो लेते हैं, हर साल ले रहे हैं हम लोग। समूह बनाने में कठिनाई नहीं आती, जैसे अपने लोन ले लिए, अपन अध्यक्ष सचिव है तो अपने सदस्य को अपन ही कंट्रोल करके चलना पड़ता है कि भाई 2 दिन पहले उनको बताओ कि अपनी किस्त आ गई है। दिक्कत कुछ नहीं है, बस सदस्य अच्छे रहना चाहिए, प्रोग्रेस भी हो रहा, आपस में चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे मुद्रा लोन आया अभी, इसको चाहिए तो वो अलग से ले सकता है अपना CCL लोन के बावजूद भी। समूह से जुड़े, समूह से अपन लेन देन करें, फिर अपना अच्छा रोल काल रहा तो अपन को लोन मिलता है हर साल, अपना बिजनेस में प्रोग्रेस करें।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए द्वार खोलने और विकास को एक नई गति देने का सुनियोजित प्रयास है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्ति तक की यात्रा ने ग्रामीण महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, इससे उन्हें एक नया आत्मविश्वास मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज ग्रामीण समुदायों में समावेशी विकास और बेहतर जीवन स्तर का एक सशक्त वाहक बन गया है। तो आइए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा, संपादन अनिल सनोडिया का था, प्रस्तुति सहयोग गीतांजलि गीत और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की और संयोजन था अल्पना गोलेंद्र का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्रेम रोग फिल्म के इस गीत से। जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। संतोष आनंद की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

प्रेम रोग। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के युगल स्वर में। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

उद्भव, मनोहर शेट्टी, ईशान और साथियों का युगल स्वर। आनंद बख्शी की शब्द रचना, जतिन

0: उद्भव मनोहर शेट्टी ईशा श्वेता पंडित और साथियों के युगल सर में। अभी आपने सुना मोहब्बतें फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमरीका ने जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्वभर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेन्द्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
3: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
1: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में

0: कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परम्पराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
1: We should help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य

0: कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयरज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर है। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमरीका

0: World Cup tonight, and in men's cricket, hosts England set 388 runs target for India in the third and the final ODI at Lord's. And that's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हमराज फिल्म के इस गीत से।

0: साहिर रिधियानवी की शब्द रचना, रवि का संगीत, महेंद्र कपूर और आशा भोसले को अभी आपने सुना फिल्म हमराज में।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं दो वक्त की रोटी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
1: ये आकाशवाणी है। लोकसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस क्रम में आज प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा संसद के समक्ष मुद्दे। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पनवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। मौसम की फुहारों के बीच दिल्ली के लुटियन जोन में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ एक सत्र नहीं, ये लोकतंत्र की धड़कनों का मौसम है, जहां हर आवाज मायने रखती है, हर सवाल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक देता है और हर जवाब देश की दिशा तय करता है। संसद का मॉनसून सत्र जहां एक ओर सरकार अपने एजेंडे के साथ तैयार है कानून सुधार और नए फैसलों की रफ्तार लेकर, तो वहीं विपक्ष सवालों की धार, मुद्दों की आग और जनता की आवाज बनकर खड़ा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे में हम खोलेंगे इस सत्र की हर परत। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व सांसद सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं सांसद सुखदेव भगत, CPIM के तेवरों के साथ हमसे जुड़े हैं सांसद अमरा राम और आम आदमी पार्टी की धारदार आवाज बनकर शामिल हो रहे हैं प्रवक्ता अनमोल पवार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जफर जी, आपसे शुरुआत करते हैं, चूंकि आप सत्ता पक्ष की तरफ से यहां पर मौजूद हैं, समझना चाहेंगे कि संसद का जो मॉनसून सत्र है, सरकार इसमें किस रणनीति के साथ जा रही है और कौन कौन से मुख्य एजेंडे हैं आपकी तरफ से इस सत्र के लिए?
3: देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और एनडीए गवर्नमेंट का सवाल है, हमारे कोशिश ये रहती है कि जो लोगों से जुड़े हुए, देश से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हों जिसको एक लेजिस्लेटिव कानून बनाना चाहिए और उससे देश का फायदा और जनता का फायदा हो, ऐसे मुद्दे लेकर हम पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं। इसलिए हर बार कोई ना कोई चीज होती है जिससे सीधा नाता जो है जनता का होता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और खासकर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो बहुत डिसरप्टिव अप्रोच रखती हैं बार बार और चाहती हैं कि किसी तरह भी कोई बिल पास ना हो पाए। लेकिन हमारा जाहिर है अपील होगा अपोजिशन पार्टी से कि देखिए, सरकार चाहती है कि जो लोगों का एस्पिरेशन है, जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, महिलाओं का एस्पिरेशन, उसका समर्थन प्राप्त हो सभी लोगों से। उसी तरह से अगर डिलिमिटेशन की बात हो तो उसमें भी समर्थन प्राप्त हो, जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने इस वक्त नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी है, अपनी पार्टियां बना ली है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड है कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम इस तरह के लेजिस्लेशन को एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे। लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से। और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करे और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है। और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा उसको

0: प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी ही नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इसलिए उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करेंगे।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि पैथॉन की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है, नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, नीट हमारे लिए इश्यू है, बेरोजगारी हमारे लिए इश्यू है और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये स्थिति हो। आपने देखा होगा विकास की जो बात करें, कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है। और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों को रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं और हम ये समझते हैं। और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: CPIM से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
3: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त किए हैं, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो

0: आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई वो उठाएं और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटे बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की वो तमाम वापिस ले। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया। तो ये तमाम मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं, वो नहीं भर रहे हैं और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे हैं।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है। मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
2: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे ये लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने FIR रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने FIR रजिस्टर की। एक फर्जी FIR, एक फर्जी SIT का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे, E20 भरवाना चाहे, उसे ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा ये हंगामा करेंगे, ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे। यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब, आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
3: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देशहित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे, और जो लोग हैं थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरे तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे खुचे लोग वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है।

0: देशहित में है, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
1: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते हैं तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इजराइल जाते हो, ईरान वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कर रहा, सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है। और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है। और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं हुआ और SIT आपने गठन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है, उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है, जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लें, ये कौन क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
1: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
3: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं, जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दे हैं? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पर होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुनाने का, महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते, जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया ये शर्तें जोड़ने की कहां जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
1: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
4: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन।

0: कृष्णा अडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
1: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
2: देखिये, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे। और पूरे टाइम हमने 12-13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या उस डिसरप्शन होता है और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पर असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है। परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है और जो देश की अर्थव्यवस्था, जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व्स है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं और उन लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
1: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार

0: अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
1: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें हैं। डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूँ जो हमारे पीएसयूज थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहाँ पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहाँ पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहाँ पे हो। मैं आज भी मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष ही बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसा समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए। एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेकर चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेकर चले। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
0: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए। और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, नीट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकार एक पेपर नहीं करा पा रही उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है। और लोगों के मुद्दे हैं उस पे जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
0: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या संदेश होगा?
3: देखिए, मैं जो ऑपोजिशन पार्टीज है उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए, ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है। और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनको जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
0: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।
6: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
7: भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि

0: ईश्वर का शास्त्रीय गायन, श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
1: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर हेल्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ renowned vocalist Musiri Subramanya Iyer. Initially, she learnt music from her mother, Srimati Sushila Ramaswamy. Further tutelage was from renowned musician Trichy Sri S. Ganesan. After completing music senior certificate course from Thrissur Sri Rama Varma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
0: आज के कार्यक्रम में श्रीमती बालामणि ईश्वर के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का शुभारंभ संत त्यागराज की रचना ब्रोव भारमा से कर रही हैं। राग बहुदारी पर आधारित ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट्स कॉन्सर्ट श्रीमती बालामणि ईश्वर इज अकम्पनीड बाय श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। द कॉन्सर्ट बिगिन्स विद ब्रोव बारमा कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा इन राग बहुदारी सेट टू आदिताल।

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

आदिवासी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती परूर एमके अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। लीजिए अब प्रस्तुत है करहर प्रिया राग और मिश्र चापताल में संत त्यागराज की रचना पक्कल निलपड़ी। इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी इज अकॉम्पनीड बाय परूर श्रीमती एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। लिसन नाउ टू पक्कल निलपटी, कंपोज्ड बाय सेंट त्यागराजा इन रा करहर प्रिया सेट टू मिश्र चापुताल।

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद। सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: दैट वाज अ तनि आवर्तनम परफॉर्म बाय श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Shrimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi, set to Tal Adi.

रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इंद रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा, यू जस्ट हर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकॉम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी मदुरई, दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के

0: नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 7 लोग लापता हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने 1 करोड़ मूल्य का 1,700 मीट्रिक टन से अधिक अवैध रूप से खनन, भंडारण या परिवहन किया गया कोयला जब्त किया है। यह जब्ती पिछले 3 हफ्तों में CISF की सुरक्षा में चल रहे कोयला क्षेत्रों में गहन अभियानों के दौरान की गई। इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और एक निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 267 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, the government today convened an all-party meeting at Parliament House Annex. The meeting was chaired by Defence Minister Rajnath Singh. Over 50 leaders from 40 political parties attended the meeting. Just after the meeting began, opposition parties staged a symbolic walkout from the meeting over the participation of Nationalist Citizens Party of India, NCPI. The NCPI is a registered party that has participated in the West Bengal Assembly elections, and recently several rebel Trinamool Congress MPs have joined it. However, after registering their protest, the opposition members attended the meeting. Speaking to media after the meeting, Mr. Kiran Rijiju urged all political parties to ensure the smooth functioning of parliament and engaging in constructive discussions on key issues.
3: There are various demands by various political parties for discussion. We have said that let parliament function smoothly. Exactly what are the issues to be discussed, that has to be decided in the business advisory committee.
2: Talking to media, TMC MP Mahua Moitra said that the entire opposition, including Congress, Samajwadi Party, DMK, JMM and Aam Aadmi Party, walked out from the meeting. She also alleged that NCPI is not a recognized parliamentary party. Lok Sabha Speaker Om Birla called on the Business Advisory Committee meeting ahead of the monsoon session of Parliament. During the meeting, members representing the government as well as various political parties exchanged views on the legislative and other businesses proposed to be taken up during the session. Addressing the meeting, Mr. Birla emphasized the importance of constructive deliberations, meaningful participation and adherence to the highest parliamentary traditions. President Draupadi Murmu embarked on a three-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania today. The visit to the three European countries is expected to provide fresh momentum to India's bilateral ties with the three countries, with a focus on expanding cooperation in trade, investment, technology, innovation, education and people-to-people ties. The Union Ministry of Road Transport and Highways will develop over 160-kilometre long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha's coast at a cost of over 8,000 crore rupees. The ministry said the project will transform Odisha's coastal region by improving road infrastructure and boosting tourism and economic activity along with spiritual journeys. The Delhi High Court today refused to intervene in activist Sonam Wangchuk's treatment at Safdarjung Hospital, saying the government's decision to move him from Jantar Mantar to the hospital could not be termed arbitrary. Justice Mini Pushkar Nair said no immediate order was needed to shift Wangchuk to a private facility, while noting that doctors were monitoring his condition and had provided treatment with his consent. The court was hearing a plea by Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, seeking his transfer to a private hospital. Delhi police has clarified that no permission has been sought or granted for any protest march and procession in New Delhi district in view of Parliament session beginning tomorrow. In a social media post, the police said Section 163 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita is in force in the area, hence protest marches, processions, demonstrations and assemblies of five or more persons are strictly prohibited in the area except Jantar Mantar. In Jammu and Kashmir, at least 11 people were killed and 7 others went missing as torrential rains triggered landslides and flash floods in the twin border districts of Rajouri and Poonch early this morning. In men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, India were 278 for 2 in 41 overs when reports last came in. Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup as defending champions Argentina take on Spain in New Jersey tonight. The match kicks off 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं, अब संपन्न होती है हमारी ये सभा। कल प्रातःकालीन सभा में इसी मीटर पर 5:51 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।